हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज, इसके साथ ही दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के श्रावण माह की 16वीं तिथि, तदनुसार 7 अगस्त 2026। सवेरे के 5:57 होने को है। हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। सवेरे के 6 बजने को है, कुछ ही देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि 7 अगस्त 1905 को भारत के स्वाधीनता संग्राम के हिस्से के रूप में स्वदेशी आंदोलन का शुभारंभ किया गया था।
2: 7 अगस्त 1905 को देश की आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, जन जन जुड़ गया था। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया। मैं आज आग्रह करता हूँ 7 अगस्त हैंडलूम डे, हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है।
1: श्री मोदी ने लोगों को बुनकर परिवारों और अपने हाथों से कपड़े बनाने वाले कारीगरों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया।
2: हैंडलूम डे मनाने का मतलब है कि हर गरीब परिवार, बुनकर परिवार, जो अपने हाथों से अपने छोटी छोटी घर में लूम पर कपड़े बनाते हैं, और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके जरूर दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं, हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध कर।
1: 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर वस्त्र मंत्रालय आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मंत्रालय के अनुसार इस समारोह का मुख्य आकर्षण वर्ष 2025 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार

0: आधार प्रदान करना होगा। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपरा पर आधारित 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में 2 प्रकाशन अर्थ रूट और मध्य भारत में ऑल डाई से रंगे जाने वाले हथकरघा थ्रेड वस्त्रों और हथकरघा पुरस्कार पुस्तक 2025 का भी अनावरण किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बेहारा चरियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी। देश ने उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वाधान में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को इस सफल मिशन पर बधाई दी है। पत्तन पोत और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत की समुद्री सुरक्षा संरचना के प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का आह्वान किया है। नई दिल्ली में 2रे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के बढ़ते बंदरगाह नेटवर्क और वैश्विक व्यापार में बढ़ती भूमिका के लिए ऐसे सुरक्षा तंत्रों की आवश्यकता है जो लचीले, एकीकृत और उभरते साइबर और भू राजनीतिक खतरों का मुकाबला करने में सक्षम हों। केंद्र सरकार ने गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनर्समायोजन अधिनियम 2025 लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे गोवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है। भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार यह अधिनियम कल से प्रभावी हो गया है। इस कदम का स्वागत करते हुए गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने इसे एक वायदे का पूरा होने जैसा बताया। झारखंड में नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरुद्ध रांची में विरोध प्रदर्शन का आज 14वां दिन है। राजधानी रांची में 6 प्रदर्शनकारियों की भूख हड़ताल जारी है। छात्र नेताओं का दावा है कि उन्हें कल शाम तक राज्य सरकार की ओर से बातचीत का कोई नियंत्रण नहीं मिला है। विरोध प्रदर्शन का असर कल झारखंड विधानसभा में भी देखा गया, जहां विपक्षी विधायकों ने मानसून सत्र के पहले दिन ही नारेबाजी की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार आंदोलनकारियों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से होगा, जबकि अश्मिता चालिहा का सामना जापान की हिना केची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमिर चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है चिंतन।
2: जब से ये धरती है तब से ही फूल इस धरा को महका रहे हैं। मनुष्य के अस्तित्व से भी पहले इस धरती पर पानी और वनस्पति ने ही अपने सौंदर्य को बिखेरा होगा। दूर दूर तक फैली हुई घाटियां हरियाली की चादर ओढ़े अपने सतरंगी रूप में जब हमारे सामने होती है तब हमें यकीन ही नहीं होता कि ईश्वर कितना मेहरबान है। और प्रकृति की इस छटा में 4 चांद लगाते हैं वो पुष्प जो अपनी रंगीनियत से धरती की हरियाली को श्रृंगारित करते हैं। फूल और उनके पराग, उनका रस तितलियों और भंवरों के लिए ही होता है। कितने ही कीट पतंगों का जीवन फूलों पर निर्भर है। एक फूल पर तितली का मंडराना हमें एक अलग ही आनंद देता है। एक फूल का अपने पेड़ पर खिलना ठीक वैसा ही है जैसे किसी माँ की गोद में उसका शिशु खिलखिला रहा हो। एक फूल का खिलना हमें उम्मीद से भर देता है। जब फूल खिलखिलाते हैं तब जीवन के सभी दुख हम भूल जाते हैं। फूलों का खिलना हमें सकारात्मकता से भर देता है और फिर ओस की बूंदों को अपने आप में समेटे जब गुलाब अपनी पूरी रंगीनियत के साथ मुस्कुराता है तब हमें उसकी तपस्या को भी समझना चाहिए। फूल अपने लिए कुछ भी नहीं रखता। अपनी खूबसूरती और सुगंध वो हमेशा दूसरों पर न्यौछावर करता है। इसमें एक बड़ा संदेश हम सबके लिए भी है कि हमारी अच्छाइयाँ मनुष्यता के लिए हों। हमारे आंगन के बगीचे और गमलों में मुस्कुराते फूलों को देखिए। वो हमसे यही कह रहे हैं कि आप भी मुस्कुराइए। आपकी मुस्कुराहट किसी के लिए औषधि का काम करती है। निस्वार्थ रहिए और अपनी खुशियां दूसरों पर लुटाते रहिए एक फूल की तरह।

अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

श्रोताओं, भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से।

श्रोताओं, भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से। वंदना कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए ये देशगान।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। लीजिए, प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान। आज इसमें सुनिए कड़ी संख्या 143। गायक कलाकार हैं भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह।

राजा दशरथ ने कैकेयी को कई प्रकार से समझाया, अनुनय विनय की कि वो विवेक से सोच समझकर दूसरा वर मांगे, क्योंकि राम के बिना उनका जीवन नहीं रह पाएगा। किंतु राजा के कोमल वचन कैकेयी की क्रोधाग्नि में मात्र आहुति का काम कर रहे हैं। रानी की एक ही टेक है, आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहां आपकी माया नहीं चलेगी। या तो जो वर मैंने मांगा है वो दे, नहीं तो ना ही करके अपयश के भागी बने। सवेरा होते ही यदि राम मुनिवेश धारण करके वन को नहीं जाते तो हे राजन, निश्चय जानिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। इतना कहकर कैकेयी ऐसे उठ खड़ी हुई जैसे क्रोध की नदी उमड़ी हो। दो वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का हठ उस नदी की तीव्र धारा है, मंथरा की प्रेरणा भंवर है, और क्रोध रूपी वो नदी राजा दशरथ को मूल रूप से ढहाती हुई विपत्ति के समुद्र की ओर ले चली है। राजा ने समझ लिया कि स्त्री के रूप में मृत्यु उनके सिर पर नाच रही है। उन्होंने कैकेयी के चरण पकड़कर विनती की कि वो सूर्यकुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी न बने, वो उनका मस्तक मांग ले जो वो शीघ्र दे देंगे, राम के विरह में उन्हें न मारें। किंतु राजा की गुहार व्यर्थ हुई। उन्होंने जान लिया कि रोग असाध्य है। अत्यंत आर्तवाणी से हा

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार थे भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह, संगीतकार थे सतीश भाटिया। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम रूपरेखा।
1: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
2: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल
3: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।
0: श्रोताओं, कार्यक्रम रूपरेखा में प्रस्तुत है जानकारी हमारे आज प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों और उनके प्रसारण समय के बारे में। आज सवेरे 11:10 पर आप सुनेंगे 12वें हथकरघा दिवस पर माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम का सजीव प्रसारण। अब से कुछ ही देर बाद यानी 6:45 पर करसारी बात में आप सुनेंगे वार्ता आय का नया स्रोत टींगरी मशरूम। सवेरे 9:15 पर हेलो जयपुर में आप सुनेंगे हमारा हेल्थ सेगमेंट। डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फ्रीको सर्जरी सेंटर हेल्थ इश्यूज, आज इसमें चर्चा होगी पीठ दर्द, स्पाइनल कोड और कार्पल टनल सिंड्रोम के कारण उपचार के विषय में। हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञ मेहमान होंगे अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सचिन गुप्ता। दिन में 12:10 पर आप सुनेंगे आदिवासी लोक संगीत। हमारे आज के कलाकार होंगे विष्णु।

0: मीना पार्टी। ग्रामीण महिलाएं अपना कार्यक्रम पणिहारी सुनेंगी दिन में 1:30 पर। आज बणतल होगी राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर। स्वदेशी अपनावा सुख पावा, ये बातचीत होगी राधेश्याम सिंह तंवर से। साथ ही भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर गीत गोस्वामी से एक बातचीत भी इस कार्यक्रम में होगी। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुन सकते हैं दिन में 3:30 पर। शाम 4:00 लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे प्रीति चौहान के गाए लोकगीत। युवा श्रोता अपना कार्यक्रम युववाणी सुनेंगे शाम 5:00। ग्रामीण श्रोता ग्राम भारती कार्यक्रम में शाम 7:00 सुनेंगे बातचीत कुटीर उद्योगों का महत्व, ये बातचीत होगी अस्मिता जाट से। साथ ही इस कार्यक्रम में होंगे लोकगीत, बाजार भाव एवं मौसम की जानकारी। शाम 7:30 पर किसान भाई बहनों के लिए होगा कार्यक्रम खेती बाड़ी। आज बातचीत होगी छत पर बागवानी कैसे करें इस विषय पर रेशमा यादव से। संसद समीक्षा आप सुन सकते हैं रात्रि 8:00। रात्रि 8:30 का समय रहेगा प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन का। और रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे करंट अफेयर्स। संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही के संपादित अंश आप सुन सकते हैं रात्रि 10:00। तो श्रोताओं कार्यक्रम रूपरेखा में ये थी जानकारी हमारे आज प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों और उनके प्रसारण समय के बारे में। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे कर सारी बात।
1: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
2: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल
3: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।
0: कर सारी बात में लीजिए सुनिए वार्ता, आय का नया स्रोत टिंगरी मशरूम।
4: किसान भाई बना राम राम। किसान भाई आज अपा बात कर स्या स्वरोजगार को साधन ढींगरी मशरूम की खेती। शाकाहारी लोगों के आहार में प्रोटीन की पूर्ति के लिए मशरूम बहुत ही उपयुक्त है। मशरूम में शुष्क भार के आधार पर 25-35% प्रोटीन पाई जावे है। शरीर के लिए आवश्यक 2 अमीनो अम्ल लाइसिन और ट्रिप्टोफेन भी मशरूम में अधिक पाया जाए है। गुणात्मक प्रोटीन के अलावा मशरूम में विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स पाया जाए ही। मशरूम में वसा बहुत कम और पोटेशियम सोडियम को अनुपात बहुत अधिक रहवे है। अतः उच्च रक्तचाप रोगी और मोटा व्यक्ति के लिए यह बहुत ही उपयोगी आहार है। मशरूम में स्टार्च अनुपस्थित और शर्करा बहुत कम मात्रा में पाई जावे है, अतः मधुमेह रोगियों के लिए ये अत्यंत उपयोगी है। कोलेस्ट्रॉल मुक्त कम वसा और अधिक लिनोलिक अम्ल होबा के कारण मशरूम हृदय रोगियों के लिए एक आदर्श आहार है। ढींगरी मशरूम आयस्टर मशरूम ने सामान्यतः पा ढींगरी मशरूम कहवा हाँ। ई को आकार सीप नुमा होबा के कारण इन्हें आयस्टर मशरूम कहवा। दूसरे छत्रका की भांति इको शीर्ष गोल टोपीनुमा और छत्रक दंड से अलग नहीं होवे है, बल्कि यो दंड ऊपर जाकर हथेली की तरह फैल जाए है। ढींगरी मशरूम तेजी से बढ़वार करबा वाली और अत्यंत स्वादिष्ट कवक है। इन्हें छाया में सुखाकर लंबे समय तक सुरक्षित राखियो जा सके है। इकी खेती छायादार जगह यानी कमरा या झोंपड़ी में सामान्य जानकारी लेकर

आसानी से की जा सके। सामग्री: गेहूँ, जौ या चावल को भूसो, मशरूम बीज, पॉलीथीन की थैलियाँ, रबर बैंड, लकड़ी अथवा लोहे की बनी रैक, पॉलीथीन की शीट, फुट स्प्रेयर, प्लास्टिक को ड्रम 200 लीटर क्षमता को, बीज तोलबा के लिए तुला यानी ताकड़ी और बाल्टी या सामग्री की आवश्यकता है। सुरक्षित छायादार स्थान जी हाँ, कि हवादार कमरों, बरामदों और झोंपड़ी। उत्पादन कक्ष: कच्चो घर या बांस की झोंपड़ी, इनमें बांस, सरकंडा, धान की पुआल, ज्वार बाजरे की पुआल, स्थानीय घास यूँ झोंपड़ी बनाई जाए ही। यह झोंपड़ियों को आकार 1820 गुणा 1020 मीटर और ऊंचाई 405 मीटर रखनी चाहिए। उत्पादन कक्ष हवादार और रोशनी युक्त होना चाहिए। इसके लिए पूर्व पश्चिम में रोशनदान होना चाहिए। दरवाजा खिड़की उत्तर दक्षिण में होना चाहिए। झोंपड़ी के अंदर बांस का ढांचा बनाना चाहिए, जिन पर मशरूम बीज मिला हुआ पॉलीथीन बैग रखे जाए ही। झोंपड़ी के ऊपर हरी बेल भी चढ़ा सका, जिससे उत्पादन कक्ष को तापमान उचित बने रहे। बरसात से पहली झोंपड़ी की छत ने पॉलीथीन की चादर से ढक देना चाहिए, जिससे उत्पादन कक्ष में बरसात को पानी को नहीं जा सके। रेखा को निर्माण की प्रकार से करना चाहिए। मशरूम उत्पादन के लिए रेखा ने बनाना बहुत जरूरी है। रेखा की सहायता से 405 गुना अधिक मशरूम को उत्पादन हो सके। रैक बनावे के लिए सबसे पहले ढांचो बनाना पड़ेगा। ढांचो बांस की मोटी बल्लियां से तैयार किया जा सके है। ढांचा की चौड़ाई 1/4 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर रखनी चाहिए। इसके बीच 4/5 रैक बनाई जा सके। सबसे पहली नीचे से 6/7 इंच ऊपर और दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी के बीच 24/30 इंच की दूरी पर रखनी चाहिए। ढांचे में रैक प्लास्टिक की डोरी या निवार द्वारा बुनेड़ी होनी चाहिए, जी के ऊपर थैलियां रखी जा सके। भूसे को उपचार: भूसे में उपस्थित अवांछित फफूंद का बीजाणु, कीटाणु, जीवाणु इत्यादि अलग करबा के लिए इन्हें गर्म पानी से उपचारित करना चाहिए। गर्म पानी से उपचार: भूसे ने 10-12 घंटा तक साफ शुद्ध पानी में भिगोकर रखना चाहिए। बी के बाद पानी इनसे निकाल कर उबलता हुआ पानी में 1 घंटा तक रखना चाहिए। ई के बाद भूसे ने पानी से निकाल कर ढलान वाली जगह पर या जालीदार स्टैंड पर अतिरिक्त पानी निकालबा के लिए छोड़ देना चाहिए। रसायन उपचार: एक ड्रम में 100 लीटर पानी लेकर बी में 7 ग्राम कार्बेंडिजिम पाउडर और 120 मिलीलीटर फार्मेलिन मिलानी चाहिए। रसायन मिलेड़े पानी में 20 किलोग्राम भूसो भिगोकर ड्रम ने ढक देना चाहिए। 24 घंटा बाद भूसे ने पानी से निकालकर साफ सुथरा फर्श पर रखकर अतिरिक्त पानी निकाल देना चाहिए। गेहूँ भूसे में नमी परीक्षण: नमी की उचित मात्रा को पतो करबा के लिए भूसे ने हाथ से दबाना पर पानी बूंद के रूप में न निकले और केवल हाथ गीलो रह जाए तो भूसे में नमी की उचित मात्रा मौजूद है। भूसे में नमी की मात्रा उचित रखबा के बाद बिजाई की जाए है। जी स्थान पर बिजाई करनी हो बठे अच्छी तरह से सफाई करनी चाहिए। बिजाई से पूर्व 2% फार्मलिन से छिड़काव करके 48 घंटा तान उस स्थान ने बंद रखना चाहिए। एक लंबी पॉलीथीन शीट जी की लंबाई 8/10 मीटर और चौड़ाई 3/4 मीटर हो, बिने बिछा कर उपचारित भूसा पर डालनी चाहिए। बीज की दर: बीज की दर वातावरण के तापमान पर निर्भर करे है। यदि तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से कम होवे तो बीज की दर 3% और यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस या ज़्यादा होवे तो बीज की दर 2% गीले भूसे के वजन के हिसाब से रखनी चाहिए। बीज ने मिलानो और भराई: भूसे के वजन के हिसाब से बीज ने तोलकर बीजेड़े भूसे में भली भांति मिला देना चाहिए। बीज मिलेड़े भूसे ने पॉलीथीन की थैलियां में 2/3 भाग पर भर देना चाहिए। हल्का हाथ से भूसे ने दबाकर थैलियां को मुंह सूतली से बांध देना चाहिए। हवा के आगमन के लिए थैलियां में

0: 2 × 3 मिलीलीटर आकार का 8 × 10 छेद 5 सेंटीमीटर दूरी पर कर देना चाहिए। नीचे का दोनों किनारा थोड़ा थोड़ा काट देना चाहिए, जिस क्योंकि यदि भूसे में कुछ अतिरिक्त पानी होगो तो वो बाहर निकल जाएगा। परतदार विधि, ई विधि में बीज ने परत के रूप में मिलाया जाए है। जद भूसे ने थैला में भरनो होवे तब बीज की पहली परत 4 इंच पर, दूसरी 8 इंच पर और तीसरी 12 इंच पर बीज ने हाथ से फैला कर डालो जाए है। सबसे पहली भूसे की 3 इंच की परत लगाई जाए है। भूसे ने थैला में दबा दबा कर भरनो चाहे। बिजाई के बाद थैला को मुँह सूतली से बांध देना चाहे।
1: श्रोताओं, कर सारी बात में अभी आप सुन रहे थे वार्ता आय का नया स्रोत ढींगरी मशरूम। इसका प्रसारण आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से किया गया।
2: अदबी दुनिया की अजीम शख्सियात और उनके कारनामों से आपको रूशनास कराना, हल्काए इल्म व अदब की सरगर्मियों से हर वक्त बाखबर करना, मुशायरों के जरिए शोराए कराम के फिक्र फन की बुलंदियों को छूना, अलावा अजीम मुल्की और बैन अक्वामी मामलात, सियासी नजरियात, माशियात और सकाफत पर मुदल्लल मुबाहिसे और इजहार ख्याल, साथ ही अवामी मफादात की तबलीग व तशहीर, जिसका मकसद है वो है आपका अपना DD उर्दू चैनल।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। सवेरे के 6:55 होने को है। कुछ ही देर में आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। अद्य राष्ट्रिय हस्ततन्तु दिवसः उत्साहेन आनन्देन च आचरन्त्विति प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना नागरिकाः प्रार्थिताः। एकस्मिन् चलचित्रीय सन्देशे श्रीमोदी अवदत् यत् 25वें वर्षे अगस्त मासस्य सप्तमदिनाङ्के भारतस्य स्वातन्त्र्यसङ्घर्षस्य भागरूपेण स्वदेशीय आन्दोलनस्य आरम्भः अभवत्। सर्वक्षेत्राणां जनाश्च एकीभूय ब्रिटिश शासनं विरुध्य ऐतिहासिकं संघर्षं कृतवन्तः। प्रधानमन्त्री जनान् स्वहस्तैः वस्त्राणि निर्मातृभ्यः निर्धनतन्तुवायकुटुम्बेभ्यः शिल्पिभ्यश्च साहाय्यं कर्तुं प्रोत्साहितवान्।
2: मैं आज आग्रह करता हूं 7 अगस्त हैंडलूम डे होता है। हमने उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, उसका एक वीडियो बनाएं और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो।
1: केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन ह्यः स्वच्छ ऊर्जायाः ग्रामीण अर्थव्यवस्थायाश्च वर्धनार्थं प्रायः 25,000 करोड़ रूप्यकाणां परिव्ययुतां राष्ट्रिय जैव ऊर्जना योजनां गोवर्धनमिति अनुमोदितम्। नवदिल्ल्यां प्रसारमाध्यमैः सह वार्तालापं कुर्वन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् इयं योजना अस्मात् वर्षादारभ्य 35-36 अधिक 2000 वर्षपर्यन्तं प्रवर्तयिष्यते। श्री वैष्णवः अवदत् यत् आर्थिक कार्यस्य मन्त्रिसभा समित्या अपि असमराज्ये राष्ट्रिय राजमार्ग 15 इत्यस्य पार्श्वे गुवाहाटीतः तेजपुरपर्यन्तं पंक्तिचतुष्टययुतस्य राजमार्गस्य निर्माणम् अनुमोदितम्। मन्त्रिमण्डलस्य गोवर्धन योजनायाः अनुमोदनविषये प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सामाजिक प्रसार माध्यमे उक्तं यत् स्वच्छ ऊर्जायै ग्रामीण समृद्ध्यै देशस्य सामूहिक स्वप्नस्य स्वावलम्बनाय च अयं निर्णयः महत्वपूर्णः पदक्षेपः अस्तीति।

0: आइए सुनते हैं वार्ता बापू की खादी की अवधारणा। वार्ताकार हैं डॉक्टर संगीता शर्मा।
1: खादी का जो कार्यक्रम था वो गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के मुख्य कार्यक्रम के रूप में अपनाया। अब ये खादी की अवधारणा क्या थी, क्यों आज हम इस पर बात करना चाहते हैं, मैं आपको इतिहास के गलियारों में ले जाना चाहूंगी। हम सभी जानते हैं कि 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए। साउथ अफ्रीका में वो एक बड़े सफल आंदोलन का भारतीयों के अधिकारों के लिए सफल नेतृत्व कर चुके थे, संचालन कर चुके थे। पर जब वो भारत आते हैं तो उनके समक्ष एक चुनौती है। यहाँ भी वो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ना चाहते हैं, स्वतंत्रता संघर्ष का हिस्सा बनना चाहते हैं, पर भारतीयों को संबोधित कैसे करें? 30 करोड़ की आबादी है, 7 लाख गांव में भारतीय फैले हुए हैं, 100 से भी अधिक भाषाएं बोलने वाले हैं और उसके अतिरिक्त अलग अलग नस्ल, संस्कृति, पंथ, वर्ग, जातियों और जनजातियों में बंटे हुए। क्या भाषा अपनाएं, कितनी दूर तक यात्रा करें सभी भारतीयों तक पहुंचने के लिए, और अक्सर जैसा सब नायक या नेता करते हैं कि वो संप्रेषण के लिए, लोगों को लामबंद करने के लिए, संगठन करने के लिए प्रतीकों का चयन करते हैं, और गांधी ने भी प्रतीकों का चयन किया। और इस दृष्टि से देखा जाए तो गांधी एक जादूगर से कम नहीं थे। जैसा कि उनकी पोती मनुबहन गांधी ने एक बार कहा था, गांधी का मगज गजब काम करे छे। और मुझे लगता है कि जब वो खादी को चुनते हैं तो उनका मगज सबसे तेज काम कर रहा है, उनकी बुद्धि सबसे तेज काम कर रही है। और उन्होंने संवाद स्थापित करने के लिए चुना खादी या खद्दर को। खादी क्या है? एक हाथ का बुना मोटा कपड़ा, वो खद्दर जो भारत के नितांत गरीब तबके का पहनावा था। और इसको आजकल की खादी के जैसा ना समझिए, क्योंकि उस समय की खादी इतनी महीन रेशमी नहीं होती थी, वो बिल्कुल मोटी और खुरदरी होती थी। और मुझे लगता है कि दुनिया भर में

किसी भी नेता द्वारा अपनाए गए सबसे शक्तिशाली प्रतीकों में से एक उभरा खादी। जैसा कि नेहरू ने कहा, खादी आजादी की पोशाक बनी। अंग्रेजी में जैसा उन्होंने कहा, लिवरी ऑफ फ्रीडम। अब गांधी खादी को ही क्यों चुनते हैं? प्रतीक कोई भी हो सकता है, इतने सारे धर्म हैं, धर्म का कोई प्रतीक हो सकता है। गांधी ऐसा प्रतीक चुनना चाहते थे जिससे प्रत्येक भारतीय जुड़ पाए, चाहे वो अमीर है या गरीब है, पुरुष है या स्त्री है, किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है। वो ऐसा प्रतीक चाहते थे जो सबको एकता के सूत्र में बांधे, बांटे नहीं। धार्मिक प्रतीक चुनते ही अब दूसरे धर्म के लोगों को विलग कर देते हैं, तो इसलिए गांधी खादी को एकत्व के प्रतीक के रूप में चुनते हैं। ये एकता का प्रतीक बनता है। और गांधी का ये मानना था कि सभी वर्ग, सभी धर्म, पुरुष या स्त्री, ग्रामीण या शहरी, सभी लोग खादी स्वयं बनाएं, चरखा चलाएं, जिससे कि ना कोई वर्ग आधारित भेद रहे, ना कोई धर्म आधारित भेद रहे। और खादी पहनते ही, खादी बनाते ही, चरखा चलाते ही, चाहे वो व्यक्ति कितना ही संभ्रांत है, किसी भी धर्म का है, वो गांव के उस गरीब से गरीब व्यक्ति के साथ स्वतः ही जुड़ जाता है, सायास अनायास ही जुड़ जाता है। खादी सिर्फ विद्रोह और विरोध का प्रतीक नहीं था, खादी गांधी के लिए आत्मनिर्भरता का, आत्मविश्वास का और आत्मसम्मान का प्रतीक था। जैसे ही कोई व्यक्ति खादी अपनाता है, वो ब्रिटिश वस्त्र को नकार देता है। तो इसका ना केवल एक नैतिक आयाम है कि हम अपने आत्मसम्मान के लिए अपनी वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं, पर इसका एक प्रभाव पड़ा ब्रिटिश वस्त्र उद्योग पर भी। और हम देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930-31 में जो वस्त्र आयात है लंदन से, वो भारी मात्रा में घट गया था। तो निश्चित रूप से एक प्रतीक के रूप में भी, एक कार्यक्रम के रूप में भी इसका जो प्रभाव था वो बहुत व्यापक और विस्तृत रहा। खादी अपने साथ एक मूल्यों की व्यवस्था भी लाता है। जब व्यक्ति खादी अपनाता है तो सर्वप्रथम वो बलिदान या त्याग के मूल्य से जुड़ता है। देखिए, बहुत सरल नहीं है कि आप बढ़िया विदेशी वस्त्र त्याग कर खादी को अपनाएं, खद्दर जैसी खादी। तो ये पीड़ा का, त्याग का प्रतीक बना, ये अनुशासन का प्रतीक बना। देखिए, रोज गांधी अपेक्षा कर रहे हैं कि व्यक्ति आधा घंटा एक घंटा चरखा चलाए, और इस प्रकार का शारीरिक श्रम करने से मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं कि व्यक्ति में एक आध्यात्मिक शक्ति आती है और एक अनुशासन आता है। ये आत्मविश्वास का प्रतीक बना कि हम अपना कपड़ा स्वयं बना सकते हैं, ये सादगी का प्रतीक बना। और इस प्रकार एक मूल्यों की एक पूरा संग्रह लेकर आता है खादी का कार्यक्रम। और खादी सबसे महत्वपूर्ण, देखिए, दो प्रकार के पहनावों को चुनौती देता है। मेरा ये मानना है कि उस समय दो जो वेशभूषाएं थी, दो जो पहनावे थे जिनको सम्मान मिलता था, एक तो राजसी पोशाकें थी, देशी रियासतों के जो राजा हैं उनके वस्त्र हैं, बेशकीमती शानो शौकत वाले रत्न जड़ित कपड़े। दूसरे हैं ब्रिटिश प्रशासकों के वस्त्र, जो कि फैशन परस्त हैं, सजीले हैं। और ये दोनों प्रकार के जो पहनावे हैं वो किस तरह के मूल्यों का संप्रेषण कर रहे हैं? विलासिता, ऐश्वर्य, शक्ति, अहंकार। गांधी एक ऐसा वस्त्र लाते हैं, एक ऐसा पहनावा लाते हैं जो कि बिल्कुल सादगीपूर्ण है, और अब वो सम्मान का प्रतीक भी बनता है। अब कोई खादी पहनने वाले व्यक्ति को यूं नहीं कहेगा कि अरे ये तो गरीब है इसलिए खादी पहन रहा है, किंतु खादी प्रतिष्ठा, सम्मान, आत्मविश्वास, त्याग, इन सब मूल्यों का प्रतीक बनता है। और इस प्रकार गांधी जो है ये क्रांति लाते हैं। किस प्रकार वो स्थापित सम्मान के प्रतिमान को बिल्कुल उलट देते हैं जब वो खादी को सम्मान का पहनावा बना देते हैं। इसी प्रकार खादी का एक और बड़ा महत्व रहा। जैसे ही व्यक्ति खादी धारण करता है, उसकी ओर से घोषणा हो जाती है कि वो स्वतंत्रता संघर्ष में भागीदार है, कि वो गांधी की टीम में है। उस समय देखिए सोशल मीडिया नहीं है, व्हाट्सएप नहीं है, ट्विटर नहीं है, जिसके द्वारा आप अपनी निष्ठाओं की घोषणा करते हैं कि मैं इस दल का हूं, इस विचारधारा का हूं, इस समूह का हूं, इस पेशे का हूं। पर खादी पहनते ही एक व्यापक घोषणा हो जाती थी प्रतिबद्धता की। ये था खादी से जुड़े मूल्य। अब मैं बात करूंगी

0: कितना लोकप्रिय है? तो उनका जवाब बड़ा सरल था, उन्होंने कहा कुछ नहीं, गांधी के दो प्रतीक खादी और चरखा, गांधी को आने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो गांधी एक तरह से पूरे जन समूह को संबोधित कर रहे हैं केवल अपने इन दो प्रतीकों के माध्यम से। इसमें और भी जो ज्यादा रोचक पक्ष है वो ये कि कैसे राजपूताना राज्य के शासकों में खादी का जो प्रतीक है वो किस प्रकार उनके वर्चस्व को, उनकी शक्ति को चुनौती देता है। कैसे एक बड़ा साधारण सा प्रतीक है, गरीबों का पहनावा है, पर जैसे ही यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी खादी पहनते हैं, शासक जो हैं बड़े आतंकित होकर उस पूरी प्रक्रिया को देखते हैं। मैं उदाहरण देना चाहूंगी कि जो अलवर के राजा थे महाराजा जयसिंह, वो गांधी टोपी और पोशाक को देखकर बहुत परेशान हो जाते थे और उन्होंने वहां के स्वतंत्रता सेनानियों को बकायदा चेतावनी भेजी और उन्होंने कथित तौर पर यह तर्क दिया कि वही जो स्थानीय रीति रिवाज हैं उनके अनुसार सफेद टोपी और पोशाक जो है वो शोक का प्रतीक है और इसलिए हमें इस तरह के वस्त्रों से, इस तरह की टोपी से हमें बचना चाहिए। इसी प्रकार सिरोही में भी राज्य द्वारा खादी पहनने पर लगभग प्रतिबंध लगा दिया गया। बांसवाड़ा में भी लोग भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे खादी पहनते थे, उनके खादी पोशाक के कारण उनसे बात करने से डरते थे। ऐसा बहुत से देशी रियासतों में हुआ जहां खादी को बहुत ही भय के दृष्टि से देखने लगे देशी नरेश। एक बात मैं अंत में जोड़ना चाहूंगी, जो स्त्रियों की भागीदारी रही खादी के कार्यक्रम में और खादी के आंदोलन में, पुरुष अक्सर या तो हिरासत में होते थे या निष्कासित कर दिए जाते थे, तो जो खादी का कार्यक्रम है उसका जो झंडा ऊंचा रखा, उसका जो बैनर ऊंचा रखा वो स्त्रियों ने रखा। और मैं यहाँ ये जोड़ना चाहूंगी कि स्त्रियां जब खादी को अपनाती थी ये उनकी ओर से एक बहुत ही गहरा व्यक्तिगत बलिदान था, क्योंकि स्त्रियां वैसे भी उनसे अपेक्षा भी की जाती है कि वो गहने और अच्छे रंगीले वस्त्र पहने, पर जब वो खादी को अपनाती थी तो अपने शौक का त्याग करती थी, बल्कि तानों को भी सुनती थी, सामाजिक आक्रोश का भी सामना करती थी। ऐसी बहुत सी स्त्रियां थी जिनको इस प्रकार का आक्रोश सहना पड़ा, रतन देवी शास्त्री, शांता द्विवेदी, जमुना लाल बजाज की पत्नी इत्यादि। सोहन लाल द्विवेदी की कविता है, उसकी कुछ पंक्तियों के साथ इस वार्ता का मैं अंत करना चाहूंगी। उन्होंने लिखा, खादी के धागे धागे में अपनेपन का अभिमान भरा, माता का इसमें मान भरा, अन्याय का अपमान भरा।
1: अभी आपने सुनी वार्ता बापू की खादी की अवधारणा विषय पर। वार्ताकार थे डॉक्टर संगीता शर्मा।

नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश। अदब

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत।
1: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है।
0: फिल्म संगीत में सबसे पहला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण और आशा भोसले की आवाजों में, बोल है समीर के, संगीत जतन ललित का है।
2: अपनी आंखें बंद करो संजना, बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

सोनू निगम की आवाज़ में आपने सुना संघर्ष फिल्म का गाना। बोल थे समीर के, संगीत जतन ललित का था। श्रोताओं, फिल्म संगीत इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से।

ये गाना हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म शिकारी से, जिसे गाया है कुमार सानू ने। बोल हैं समीर के, संगीत आदेश श्रीवास्तव का है।

श्रोताओं, फिल्म संगीत में लीजिए अब सुनिए कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में अलबेला फिल्म का गाना। बोल है समीर के संगीत, जतिन ललित का है।

बप्पी लहरी के संगीत निर्देशन में आपने सुना अफसाना प्यार का इस फिल्म का गाना। बोल थे अनजान के और इस गाने को गाया था आशा भोसले और उदित नारायण ने। श्रोताओं, फिल्म संगीत इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से।

लीजिए अब सुनिए साधना सरगम और उदित नारायण की आवाज़ों में क्यों हो गया ना इस फिल्म का गाना। बोल हैं जावेद अख्तर के, संगीत शंकर एहसान लॉय का है।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओं, फिल्म संगीत में लीजिए अब सुनिए अभिजीत और अलका याग्निक की आवाजों में बादशाह फिल्म का गाना बोल है समीर के संगीत अनु मलिक का है।

अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज़ों में आपने सुना बादशाह फिल्म का गाना। इसके साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। सवेरे के 8 बजने को है। कुछ ही देर में आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे। समाचार 8 बजे हिंदी में, 8:15 पर अंग्रेजी में और 8:30 पर उर्दू में होंगे।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने गोवा में अनुसूचित जनजाति समुदाय को राजनीतिक आरक्षण देने से जुड़े अधिनियम की अधिसूचना जारी की। लोकसभा ने यूपीआई लेन देन पर बैंकों को शुल्क लगाने की अनुमति देने के लिए सरकार को अधिकृत करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर देशवासियों से हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने राज्य सरकार से बातचीत के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म आधारित नागरिकता पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से दो कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनः समायोजन अधिनियम 2025 लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इससे गोवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है।
5: भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार यह अधिनियम 6 अगस्त 2026 से प्रभावी हो गया है। इससे राज्य की अनुसूचित जनजाति समुदायों की लंबे समय से प्रलंबित मांग पूरी हुई है और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्समायोजन तथा सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि यह अधिनियम अनुसूचित जनजाति समुदायों को लंबे समय से अपेक्षित न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डॉ. सावंत ने इस कानून को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सबका साथ सबका विकास की भावना को प्रतिबिंबित करता है। महेश सोप्रेक, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
4: लोकसभा ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। इसके अंतर्गत

0: सरकार को बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान साधनों के माध्यम से किए गए भुगतानों पर शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है।
1: सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल भुगतान सेवाओं पर मामूली शुल्क लगाना है। साथ ही बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं PSP और डिजिटल भुगतान प्रणाली को संचालित करने वाली भुगतान और संरचना फर्मों के लिए एक स्थायी राजस्व मॉडल सुनिश्चित करना है। सदन द्वारा पारित संशोधन में उस मौजूदा कानून प्रावधान को हटाने का प्रयास किया गया है जो बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों पर व्यापारी छूट दर MDR वसूलने से रोकता है। वहीं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर NEFT के माध्यम से किए गए रियल टाइम भुगतानों पर पहले से ही ऐसा शुल्क लगता है। UPI लेन देन अब तक ऐसे शुल्कों से मुक्त रहे हैं। भुगतान तथा निपटान प्रणाली अधिनियम में प्रस्तावित परिवर्तन कराधान पर व्यापक कानून का हिस्सा है जिसे मंगलवार को सदन में पेश किया गया। सदन की कार्यवाही के पहले स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर लोकसभा में विधेयक पारित किया गया। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: पत्तन पोत और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने देश की समुद्री सुरक्षा व्यवस्था में प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का आह्वान किया है। नई दिल्ली में दूसरे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश के बढ़ते बंदरगाह नेटवर्क और वैश्विक व्यापार में बढ़ती भूमिका के लिए ऐसे सुरक्षा तंत्रों की आवश्यकता है जो लचीले, एकीकृत और उभरते साइबर तथा भू राजनीतिक खतरों का मुकाबला करने में सक्षम हों। उन्होंने कहा कि सुरक्षा को ध्यान में रखकर सरकार कई अहम कदम उठा रही है।
2: देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और उसी के आधारित अगले दिनों पर हम ऐसा एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल ब्यूरो ऑफ नेशनल पोर्ट सिक्योरिटी गठन करेंगे जिससे जनता की अपेक्षा के मुताबिक हम अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभा पाए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 साल में हम जो तरक्की की है आज दुनिया ने देखी है। Ports, industry, maritime expert together on one platform.
0: देश ने उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल Agni-4 का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वावधान में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को इस सफल मिशन पर बधाई दी है। झारखंड में नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरुद्ध रांची में विरोध प्रदर्शन का आज 14वां दिन है। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने इस मुद्दे को सुलझाने में राज्य सरकार से बातचीत करने के लिए 11 सदस्यीय दल का गठन किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में चल रहा आंदोलन एक महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुका है।
3: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का आंदोलन आज 14वें दिन भी जारी है। राजधानी रांची में 6 छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कल शाम आंदोलनरत छात्रों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से फ्लैशलाइट मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। इसके बाद रांची सदर के SDM रजत कुमार और ADM धनंजय कुमार ने धरना स्थल पहुंचकर छात्रों से मुलाकात की। छात्र नेताओं का कहना है कि कल शाम तक राज्य सरकार की ओर से वार्ता का कोई औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला था। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बातचीत के लिए दरवाजे खुलने के बयान के बाद छात्रों ने सरकार से वार्ता के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का गठन किया है। इस मुद्दे को लेकर विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन विपक्षी NDA विधायकों ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन कर CBI जांच की मांग की। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि यदि 13 अगस्त तक राज्य सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तो वो भी छात्रों की भूख हड़ताल में शामिल होंगे। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। इस अवसर पर वस्त्र मंत्रालय आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। एक रिपोर्ट।
4: इस समारोह का मुख्य आकर्षण वर्ष 2025 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार होगा। कुल 22 बुनकरों को उनके शिल्प कला, नवाचार और भारत की हथकरघा परंपराओं को संरक्षित करने में योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपरा पर आधारित 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए जाएंगे। 2 प्रकाशन अर्थ और रूट तथा मध्य भारत में ऑल डाई से रंगे जाने वाले हथकरघा थ्रेड वस्त्रों और हथकरघा पुरस्कार पुस्तक 2025 का भी अनावरण किया जाएगा। इस अवसर पर पारंपरिक कानी बुनाई और वॉल हैंगिंग बुनाई की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 1905 को शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 2015 में इसकी शुरुआत के बाद से शिल्पकला, कौशल और देश के हथकरघा बुनकरों के समर्पण का उत्सव मनाने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। एक वीडियो संदेश साझा करते हुए श्री मोदी ने लोगों को बुनकर परिवारों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया। श्री मोदी ने देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पाद खरीदने और इससे संबंधित एक वीडियो बनाकर साझा करने का आग्रह किया।
5: मैं आज आग्रह करता हूं, 7 अगस्त हैंडलूम डे होता है, हमने उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, उसका एक वीडियो बनाएं और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें, ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता को सीमित करने और केवल बच्चे को जन्म देने के उद्देश्य से अमेरिका जाने वाले पर्यटकों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन अमेरिकी आव्रजन प्रणाली के दुरुपयोगों पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है। एक रिपोर्ट।
6: व्हाइट हाउस के अनुसार आदेश में विदेशी नागरिकों के उन बच्चों की श्रेणियों की पहचान की गई है जो अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त ऐतिहासिक अपवादों के तहत जन्मजात नागरिकता के पात्र नहीं होंगे, जबकि दूसरा आदेश देश और गृह सुरक्षा विभागों को जन्म पर्यटन को समाप्त करने का निर्देश देता है, जिसमें विदेशी नागरिक मुख्य रूप से अपने बच्चों के लिए नागरिकता प्राप्त करने के उद्देश्य से अमरीका की यात्रा करते हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरलम, माहे, उड़ीसा और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी दिन के दौरान तेज वर्षा हो सकती है। असम में इस साल बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 97 हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार करगोलाघाट और उदालगुरी जिलों में बाढ़ से एक एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। राज्य में अब तक 480 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जबकि हजारों लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। शिवसागर, गोलाघाट, चोरहाट और सरायदेव जैसे सर्वाधिक प्रभावित जिलों में बाढ़ की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। बाढ़ के बाद की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य शिविरों और चिकित्सा सेवाओं को तेज कर दिया है। जल जनित बीमारियों की रोकथाम और प्रभावित लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से होगा। अश्मिता चालिया का सामना जापान की हिना अकेची से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
8: धन्यवाद प्रियंका। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में लागू नहीं हो सकती क्रीमी लेयर प्रणाली। सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के हलफनामे को नवभारत टाइम्स सहित अधिकांश अखबारों ने प्रमुखता दी है। मंत्रिमंडल के फैसलों पर भी अखबारों की नजर है। हिंदुस्तान ने लिखा है बायोगैस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गोबरधन योजना को मंजूरी। सीएनजी और पीएनजी में क्रमिक तरीके से 5% तक बायोगैस को मिलाया जाएगा। दैनिक भास्कर की सुर्खी है देश में डीप फेक कंटेंट से निपटने के लिए नए आईटी नियम लागू। अब 36 नहीं 3 घंटे में हटाना होगा एआई से बना फर्जी वीडियो। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है बीमा दावा निपटान में देरी पर 2% ब्याज के साथ दावे की रकम दी जाएगी। दावे की प्रक्रिया पारदर्शी, आसान और जवाबदेह बनाने के लिए कई अहम बदलाव किए गए। जेंजी हमारी पीढ़ी से अधिक ईमानदार, उनकी बात सुननी चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान को अमर

0: प्रशिक्षण कार्यक्रम फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स पूरा कर ये उपलब्धि हासिल की।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने गोवा में अनुसूचित जनजाति समुदाय को राजनीतिक आरक्षण देने से जुड़े अधिनियम की अधिसूचना जारी की। लोकसभा ने यूपीआई लेनदेन पर बैंकों को शुल्क लगाने की अनुमति देने के लिए सरकार को अधिकृत करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर देशवासियों से हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने राज्य सरकार से बातचीत के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म आधारित नागरिकता पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस: सेंटर नोटिफाइज एक्ट पेविंग वे फॉर रिजर्वेशन फॉर एसटी कम्युनिटी इन गोवा असेंबली। लोकसभा पासेस बिल टू ऑथराइज गवर्नमेंट टू परमिट बैंक्स टू लेवी चार्जेस ऑन यूपीआई ट्रांजैक्शंस। Prime Minister Narendra Modi calls upon people to celebrate National Handloom Day today, showcasing India's rich and diverse handloom heritage and promote handloom products. Protesting Jharkhand students form 11-member team to hold talks with state government. US President Donald Trump signs 2 executive orders aimed at restricting birthright citizenship and curbing birth tourism. And in badminton, Tanvi Sharma to face compatriot Rakshita Ramraj in the women's singles quarterfinal of Korea Masters in Assam today. The Centre has notified the implementation of the readjustment of the representation of scheduled tribes in assembly constituencies of the State of Goa Act 2025, paving the way for reservation of assembly seats for scheduled tribes in Goa. We have more details from a correspondent.
3: According to the notification published in the Gazette of India, the Act came into force from 6th August 2026, fulfilling a long-pending demand of the state's tribal communities and enabling the process of constituency readjustment and reservation. Welcoming the development, Goa Chief Minister Dr. Pramod Sawant described it as a promise fulfilled. In a social media post, he said the Act marks a decisive step towards ensuring long-overdue justice and political representation for the scheduled tribe. Dr. Sawant thanked Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah for making the legislation a reality, saying it reflects the spirit of Sabka Saath, Sabka Vikas. Mahesh Sopre, Akashwani News, Panji.
2: Lok Sabha has passed a bill to amend the Payment and Settlement Systems Act 2007, authorizing the government to permit banks and other service providers to levy charges on payments made through the Unified Payments Interface UPI and other notified electronic payment modes. The government's approach aims to levy small charge on digital payment services for consumers and small businesses while ensuring a sustainable revenue model for banks, payment service providers, PSPs, and payment infrastructure firms that drive the digital payments ecosystem. The amendment passed by the House seeks to remove the existing legal provision that prevents banks and payment service providers from charging merchant discount rate, MDR, on notified electronic payment modes. While real-time payments made through RTGS and NEFT already attract service charges, UPI transactions have so far remained exempt from such fees. Prime Minister Narendra Modi has urged every citizen to celebrate National Handloom Day today with enthusiasm and joy. Sharing a video message, Mr. Modi said that on August 7, 1905, the Swadeshi movement was launched as part of India's struggle for independence, and people from all walks of life united and fought a historic battle against the British rule. He encouraged people to support poor weaving families and artisans who create fabrics with their own hands. Further, Prime Minister highlighted the importance of strengthening these small and economically disadvantaged weaving families to build a self-reliant country.
4: मैं आज आग्रह करता हूं 7 अगस्त हैंडलूम डे, हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। और हैंडलूम डे मनाने का मतलब है बुनकर

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। मरकज ने गोवा असेंबली में दर्ज फहरिस्त कबाइल की खातिर रिजर्वेशन की राह हमवार करने के लिए कानून नोटिफाई किया है। लोकसभा ने यूपीआई लेन देन पर बैंकों को चार्ज लगाने की इजाजत देने के लिए सरकार को अख्तियार देने वाला बिल मंजूर कर लिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लोगों पर जोर दिया है कि वो भारत की मालामाल और मुतनव्वे हथकरघा विरासत के इजहार और हथकरघा मसनूआत को फरोग देने के लिए आज हथकरघा का कौमी दिन मनाएं। झारखंड में एहतजाज कर रहे तलबा ने रियासती हुकूमत के साथ बातचीत के लिए 11 रुकनी टीम तश्कील दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए हैं जिनका मकसद पैदायशी शहरियत के हक और बर्थ टूरिज्म पर रोक लगाना है। और बैडमिंटन में आज आसान में कोरिया मास्टर्स के खवातीन सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में तन्वी शर्मा का मुकाबला हमवतन खिलाड़ी रक्षिता रामराज से होगा। अब खबरें तफसील से। मरकज ने रियासत के असेंबली हलकों में दर्ज फहरिस्त कबाइल की नुमाइंदगी को असरेनो तरतीब देने से मुतालिक गोवा एक्ट 2025 के निफास को नोटिफाई किया है, जिससे गोवा में दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए असेंबली सीटों में रिजर्वेशन की राह हमवार हो गई है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: भारतीय गजट में शाये करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक 6 अगस्त 2026 से ये कानून नाफिज होगा, जिससे रियासत की कबायली बिरादरियों की देरीना मांग पूरी होगी और हलके की असर नौ तरतीब और रिजर्वेशन के अमल को यकीनी बनाया जा सकेगा। इस इकदाम का खैर मकदम करते हुए गोवा के वजीर आला डॉक्टर प्रमोद सावंत ने इसे पूरा किया गया वादा करार दिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि ये एक्ट दर्ज फहरिस्त कबायल बिरादरियों के लिए देरीना इंसाफ और सियासी नुमाइंदगी को यकीनी बनाने की जानिब एक फैसला कुन कदम है। डॉक्टर सावंत ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का इस कानून को हकीकत बनाने के लिए शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इससे सबका साथ सबका विकास की अक्कासी होती है। पणजी से महेश चौबड़े की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: लोकसभा ने अदायगी और तस्फिया निज़ाम से मुतालिक एक्ट 2007 में तरमीम के लिए एक बिल को मंजूरी दी है। इस तरमीम के तहत हुकूमत को बैंकों और दीगर अदायगी खिदमात फराहम करने वाले इदारों को यूपीआई और दीगर नोटिफाइड इलेक्ट्रॉनिक अदायगी के जराए पर फीस या सर्विस चार्ज वसूल करने की इजाज़त देने का इख्तियार दिया गया है। हुकूमत के इस इकदाम का मकसद सारिफीन और छोटे कारोबार पर मामूली सर्विस चार्ज आयद करते हुए बैंकों, अदायगी फराहम करने वाले इदारों और डिजिटल अदायगी के बुनियादी ढांचे से वाबस्ता इदारों के लिए पायदार आमदनी का एक निज़ाम कायम करना है, ताकि डिजिटल अदायगी के निज़ाम को मजबूत किया जा सके। लोकसभा से मंजूर होने वाले इस तरमीमी बिल का मकसद मौजूदा कानूनी शक को ख़त्म करना है, जो बैंकों और अदायगी के खिदमात फराहम करने वाले इदारों को यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक अदायगी के जराए पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR वसूल करने से रोकती है। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में वाकई मरबूत आजमाइशी मरकज से दरमियानी दूरी तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिज़ाइल Agni-4 का कामयाब तजुर्बा किया। वजारत दिफा ने कहा है कि इस आजमाइशी परवाज में मिज़ाइल के तमाम कामकाज और तकनीकी पैमाने दुरुस्त साबित हुए। ये आजमाइश स्ट्रेटेजिक फोर्स

0: की पेशगोई की है। आज शिमाल मशरक के हिस्सों दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार जजायर, गंगा के तराई वाले मगरबी बंगाल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी औसत से शदीद बारिश का इम्कान है। इस साल आसाम में सैलाब के सबब मजमूई हलाकतों की तादाद बढ़कर 97 हो गई है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक रियासत के 15 अजला में 168,000 से ज्यादा अफराद मुतासर हैं। 480 से ज्यादा गांव सैलाब से मुतासर हैं, जबकि हजारों अफराद इमदादी कैंपों में रह रहे हैं और इमदाद तकसीम करने वाले मराकज से मदद हासिल कर रहे हैं। सैलाब के बाद कार्रवाई के एक हिस्से के तौर पर हुकूमत ने सेहत की देखभाल से मुतालिक कैंप लगाने में तेजी पैदा कर दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दो एग्जीक्यूटिव अहकाम पर दस्तखत किए हैं, जिनका मकसद पैदाइश की बुनियाद पर शहरियत को महदूद करना और बर्थ टूरिज्म पर रोक लगाना है। ओवल ऑफिस में गुफ्तगू करते हुए जनाब ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मायूसी का इजहार करते हुए इसे एक अफसोसनाक फैसला करार दिया। उन्होंने कहा कि उनकी इंतजामिया अमरीका के इमिग्रेशन निज़ाम की मुबैना गलत इस्तेमाल के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर रही है। व्हाइट हाउस के मुताबिक पहले एग्जीक्यूटिव हुक्मनामे में ऐसे गैर मुल्की शहरियों के बच्चों की मुख्तलिफ अकसाम की निशानदेही की गई है जो सुप्रीम कोर्ट की तस्लीमशुदा इस्तिस्नाई सूरतों के तहत पैदाइश की बुनियाद पर अमरीका की शहरियत के अहल नहीं होंगे। दूसरे एग्जीक्यूटिव हुक्मनामे में महकमा खारजा और दाखिली सलामती के महकमे को हिदायत दी गई है कि वो बर्थ टूरिज्म का खात्मा करे। बर्थ टूरिज्म का मतलब वो अमल है जिसमें गैर मुल्की शहरी अपने बच्चों को अमरीकी शहरियत दिलवाने के मकसद से अमरीका का सफर करते हैं। मगरबी बंगाल सरकार पहली मरतबा मरकजी हुकूमत की हर घर तिरंगा मुहिम में बाजाबता तौर पर शिरकत करने के लिए तैयार है। वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने कल यौम आज़ादी की तकरीबात से मुतालिक मुख्तलिफ प्रोग्रामों का ऐलान किया, जिनमें रियासत भर में 70,00,000 कौमी परचम तकसीम करने का मंसूबा भी शामिल है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत हर घर तिरंगा मुहिम में मुल्क मुकद्दम और हुब्बुल वतनी के नज़रिए को बुनियाद बनाकर शामिल हो रही है। भारत और सिंगापुर ने जामे स्ट्रेटेजिक साझेदारी के रोडमैप के तहत तय किए गए 8 शोबों में दोतरफा तआवुन की पेशरफ्त का जायजा लिया। भारत और सिंगापुर की वजारत खारजा सतह की मुशावरत का 19वां दौर कल नई दिल्ली में मुनक्किद हुआ। इस मीटिंग की मुश्तरका सदारत वजारत खारजा में मशरकी उमूर के सेक्रेटरी रुदेंद्र टंडन और सिंगापुर की वजारत खारजा में पॉलिसी के मुस्तकिल सेक्रेटरी लू गो ने की। तरफैन ने इलाकाई और आलमी हालात वाकयात पर तबादला ख्याल किया और इस बात का इरादा किया कि मुश्तरका चैलेंजों से निपटने के लिए आसियान समेत बैन अल-अक़वामी और इलाकाई फोर्म्स में करीबी तआवुन और बाहमी राब्ता निहायत अहम है। बैडमिंटन में आज आसान में कोरिया मास्टर्स के ख्वातीन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में भारत की तन्वी शर्मा का मुकाबला उनकी हमवतन खिलाड़ी रक्षिता रामराज से होगा। तन्वी ने प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी हमवतन खिलाड़ी श्रेयांशी वलीशेट्टी को हराया था, जबकि रक्षिता जापान की मनामी सुइजू को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंची हैं। इस दौरान अश्मिता चालिहा एक दूसरे ख्वातीन सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जापान की आला दर्जे की खिलाड़ी हिना अकेची का सामना करेंगी। ख्वातीन एशिया कप 2026 के सबसे अहम मुकाबले में 5 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत का सामना रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने 28 अगस्त से दुबई में होने वाले ख्वातीन टी20 एशिया कप 2026 की तारीखों का ऐलान किया है। 28 अगस्त को पहला मैच थाईलैंड और हांगकांग के दरमियान होगा, जबकि फाइनल मैच 13 सितंबर को खेला जाएगा। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया अर्जुमन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार इनकलाब की शह सुर्खी है, पार्लियामेंट में जारी तातुल खत्म करने की कोशिशें तेज। इस्मत दरी केस में साफी तरुण तेजपाल को 10 साल कैद की सजा, ये खबर भी अखबारात में नुमाया है। अखबार प्रताप ने RBI के जरिए पॉलिसी सूद की शरह 5.25% पर बरकरार रखने से मुतालिक खबर को अहमियत के साथ शाया किया है। इसके अलावा अखबारात ने दिल्ली NCR में बारिश से मुतालिक खबर को भी सफ़े अव्वल पर जगह दी है। अखबारात की अहम बैन अल-अक़वामी खबरें इस तरह है, आबनाए हुरमुज पर ईरान और ओमान के दरमियान इत्तेफाक, वादों पर अमल करने के अमरीका के मुस्बत इशारे, अमरीकी सदर वजीर दिफा पर सख्त बरहम,

जब प्यार किसी से होता है, इस फिल्म का गाना अभी आपने सुना कुमार सानू और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। श्रोताओं, फिल्म संगीत इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से।

0: अनुराधा पौडवाल और सोनू निगम की आवाजों में आपने सुना तुम बिन फिल्म का गाना। इसके साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से बोल रहे हैं। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप हमारे केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। 12वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करेंगी। जयपुर में आयोजित ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक में भारत ने ब्रिक्स इंक्यूबेटर नेटवर्क और ब्रिक्स स्टार्टअप इनोवेशन फंड के गठन का प्रस्ताव रखा। प्रदेश में आगामी नगरीय निकाय चुनावों की तैयारियों के तहत मतदाता सूचियों के गहन सत्यापन का काम शुरू हुआ और राज्य में मॉनसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी। आज बारां, बूंदी, झालावाड़, कोटा और टोंक के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। देश आज 12वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मना रहा है। इस अवसर पर पारंपरिक बुनकरों के कौशल और देश की समृद्ध हथकरघा विरासत का सम्मान किया जा रहा है। आज ही के दिन 1905 में देश के स्वाधीनता संग्राम के हिस्से के रूप में स्वदेशी आंदोलन का शुभारंभ किया गया था और समाज के हर वर्ग के लोगों ने एकजुट होकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी। इस अवसर पर आज वस्त्र मंत्रालय द्वारा राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र सभागार में सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में बाड़मेर जिले के सेड़वा के बुनकर बरीगा राम को सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आमजन से बुनकर परिवारों और अपने हाथों से कपड़े बनाने वाले कलाकारों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया।
2: मैं आज आग्रह करता हूँ, 7 अगस्त हैंडलूम डे होता है, हमने उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, उसका एक वीडियो बनाए और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें, ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो।
1: जयपुर में भी बुनकर सेवा केंद्र की ओर से राज्य के हथकरघा उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है। जवाहर कला केंद्र में 9 अगस्त तक चलने वाले इस आयोजन में हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों के स्टॉल लगाए गए हैं। आयोजन का उद्देश्य हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देना और बुनकरों को प्रोत्साहित करना है। इस अवसर पर करौली जिले की खादी और हथकरघा परंपरा को भी याद किया जा रहा है। हमारे करौली संवाददाता ने बताया कि इस कला ने स्वतंत्रता आंदोलन से ग्रामीण आजीविका तक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वर्ष 1928 में करौली के स्वतंत्रता सेनानी चिरंजीलाल शर्मा ने महात्मा गांधी को स्थानीय हथकरघे से निर्मित खादी वस्त्र भेंट किए थे, जिसकी गांधी जी ने सराहना की थी। जिले में दशकों से बुनकर परिवार चरखे और हथकरघे के माध्यम से आजीविका चला रहे हैं, लेकिन मशीनीकरण, आधुनिक तकनीक और बदलते बाजार के कारण यह पारंपरिक उद्योग अब सीमित होता जा रहा है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहित करने और स्वदेशी उत्पादों के

0: के अधिकाधिक उपयोग का संदेश दिया जा रहा है। बांकी बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
1: ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की 16वीं बैठक आज जयपुर में होगी। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल करेंगे। बैठक में ब्रिक्स देशों के व्यापार मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा आर्थिक सहयोग से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इससे पहले कल ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक जयपुर में आयोजित हुई। बैठक के दौरान भारत ने ब्रिक्स इंक्यूबेटर नेटवर्क और ब्रिक्स स्टार्टअप इनोवेशन फंड का भी प्रस्ताव रखा। बैठक में ब्रिक्स देशों के उद्योग मंत्रियों ने एमएसएमई, फोटोवोल्टिक उद्योग, स्टार्टअप और लॉजिस्टिक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र को अपनाया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का उद्देश्य व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देना और सदस्य देशों के बीच विश्वास मजबूत करना है। लोकसभा ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में संशोधन संबंधी विधेयक पारित कर दिया है। इस संशोधन के बाद सरकार को यूपीआई और अन्य अधिसूचित डिजिटल भुगतान माध्यमों पर आवश्यकतानुसार शुल्क लगाने का अधिकार मिलेगा। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य डिजिटल भुगतान सेवाओं के लिए टिकाऊ राजस्व व्यवस्था तैयार करना और बैंकों तथा भुगतान सेवा प्रदाताओं को मजबूत करना है। संशोधन के तहत यूपीआई जैसे इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर नहीं लेने संबंधी मौजूदा कानूनी प्रावधान को हटाया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में आगामी नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों के तहत मतदाता सूचियों के गहन सत्यापन का अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत सभी जिलों में मतदाता सूचियों को त्रुटि रहित बनाने के लिए नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन का काम जारी है। जयपुर के उप जिला निर्वाचन अधिकारी मेघराज मीणा ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य ऐसी मतदाता सूची तैयार करना है जिससे चुनाव के दौरान मतदाताओं को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो और निर्वाचन प्रक्रिया निष्पक्ष तथा सुचारू रूप से संपन्न हो सके। जैसलमेर जिले में भी चुनाव स्वतंत्र, शांतिपूर्ण और पारदर्शी वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने कल एक बैठक ली जिसमें निर्वाचन कार्य से जुड़े सभी प्रकोष्ठों की कार्य प्रगति, जिम्मेदारियों, संसाधनों की उपलब्धता, विभागीय समन्वय तथा आगामी कार्य योजना की विस्तृत समीक्षा की गई। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह आज जयपुर के राधा गोविंद राजकीय महाविद्यालय में युवा मतदाताओं से संवाद करेंगे। आगामी नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों के मद्देनजर आयोजित इस कार्यक्रम में वे लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी, मतदाता जागरूकता और मतदान के महत्व पर विचार साझा करेंगे। ये राज्य का पहला अवसर होगा जब राज्य निर्वाचन आयुक्त किसी महाविद्यालय में विद्यार्थियों के साथ सीधा संवाद करेंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आज बांसवाड़ा के गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में आयोजित संगोष्ठी में भाग ले रहे हैं। इस संगोष्ठी में नशा मुक्त वागड़, स्वस्थ युवा, सशक्त जनजाति और विकसित भारत पर चर्चा की जा रही है। इससे पहले राज्यपाल ने कल डूंगरपुर जिले के आदिवासी गांव देवलखास में विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत युवाओं को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। और अब मौसम। प्रदेश में मॉनसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। कई स्थानों पर कल रात से शुरू हुआ बारिश का दौर रुक रुक कर सुबह तक जारी है। सवाईमाधोपुर में सुबह से ही बूंदाबांदी हो रही है। राजधानी जयपुर में भी कुछ इलाकों में रिमझिम बरसात हुई। भरतपुर के नदबई, वैर, रूपवास, रुदावल और उज्जैन में बरसात से कई निचले इलाकों में पानी भर गया। उधर बंद बारेठा के कैचमेंट एरिया में बरसात से जल स्तर बढ़ गया है। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जल स्तर बढ़ने पर बांध के गेट खोले जा सकते हैं। उधर शिवालिक की पहाड़ियों में लगातार हो रही बारिश से हनुमानगढ़ की घग्गर नदी में पानी की आवक तेज हो गई है। इससे हनुमानगढ़ के धान उत्पादक किसानों में खुशी की लहर है। वहीं कोटपुतली, बहरोड, नीमराणा, बांसूर और विराटनगर में बरसात से मौसम सुहावना हो गया है। मौसम विभाग ने आज बारां, बूंदी, झालावाड़, कोटा और टोंक जिलों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दक्षिणी जिलों और कुछ पश्चिमी हिस्सों को छोड़कर बाकी पूरे राज्य में बारिश का येलो अलर्ट है। उपमुख्यमंत्री और महिला और बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि महिलाओं और बच्चों के विकास के क्षेत्र में

0: राजस्थान की प्रगति देश भर में उल्लेखनीय बनी हुई है। उन्होंने कल जयपुर में विभागीय अधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की, साथ ही बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन पर भी जानकारी ली। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं और बच्चों के पोषण तथा संपूर्ण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, 12वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करेंगी। जयपुर में आयोजित ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक में भारत ने ब्रिक्स इंक्यूबेटर नेटवर्क और ब्रिक्स स्टार्टअप इनोवेशन फंड के गठन का प्रस्ताव रखा। प्रदेश में आगामी नगरीय निकाय चुनावों की तैयारियों के तहत मतदाता सूचियों के गहन सत्यापन का काम शुरू हुआ और राज्य में मॉनसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी। आज 12 बूंदी, झालावाड़, कोटा और टोंक के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्स, FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्स, इसके साथ ही दूरदर्शन के DTH चैनल पर

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
4: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
5: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाएं समाधान।
6: कृपया ध्यान दें, पता है जन विश्वास अधिनियम 2026 के द्वारा रेलवे अधिनियम 1989 की कई धाराओं में बदलाव किया गया है।
7: हाँ, अब ट्रेन में बिना टिकट या अनाधिकृत टिकट धूम्रपान जैसे अपराधों पर जुर्माना राशि बढ़ाई गई है।
6: अब रेल परिसर या ट्रेन में धूम्रपान करते पाए जाने पर नए अधिनियम में 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
7: जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसके द्वारा 2000 से 5000 रुपए तक का आर्थिक दंड दिया जा सकता है।
6: ये जन विश्वास अधिनियम ट्रेन में यात्रियों को सुरक्षित, संरक्षित और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने और रेल प्रशासन पर आपका भरोसा कायम रखने के लिए बनाया गया है।
7: उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
8: अरे लल्लू की अम्मा, अरे कहाँ हो भाई? अरे जल्दी से खाना लगा दो, बहुत जोर से भूख लगी है।
9: खाना तो एकदम तैयार है, बस तुम हाथ मुंह धो लो, मैं अभी लगाई देती हूँ।
8: अरे भगवान, खेत में पानी देते देते हाथ तो बिल्कुल अच्छी तरह से धुल गए, ये देखो बिल्कुल साफ है मेरे हाथ।
9: फिर भी लल्लू के बाबू, खाना खाने से पहले आपको साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोने चाहिए।
8: वो भला क्यों?
9: साबुन से हाथ धोने पर हाथों पर चिपके सारे कीटाणु धुल जाते हैं और हम कई बीमारियों से बच जाते हैं।
8: अरे वाह लल्लू की माँ, अरे आज तो तू बड़े ज्ञान की बातें कर रही भाई, कहाँ से सीख कर आई ये सब बातें?
9: कल ग्राम सभा में डॉक्टर साहब भी सब बता रहे थे और लल्लू के बापू, मुझे भी ये बात ठीक लगती है कि हमें खाना खाने से पहले और शौच जाने के बाद साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोने चाहिए।
10: देखिए, सही तरीके से हाथ धोना जरूरी है। कई लोग हाथ धोने के नाम पर केवल उंगलियों के पोर धो लेते हैं और सोचते हैं कि हाथ धुल गया। हाथ तभी साफ होते हैं जब उन्हें साबुन से अच्छी तरह मल मल कर साफ पानी से धोया जाए। अक्सर देखा जाता है कि बच्चे हाथ धोने के बाद अपनी शर्ट या पैंट से हाथ पोंछ लेते हैं और घर की महिलाएं साड़ी के पल्लू से हाथ पोंछ लेती हैं। यदि ऐसे हाथ पोंछा जाए तो हाथ धोने का कोई फायदा ही नहीं है। धोने के बाद हाथ साफ कपड़े से पोंछे जाने चाहिए।

टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।

0: नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग. आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन. हेलो जयपुर में आप हैं अनीता शर्मा के साथ. दोस्तों, हर सुबह अपने साथ एक नई उम्मीद, नई ऊर्जा और कुछ बेहतर करने का अवसर लेकर के आती है. लेकिन इन सभी खुशियों का आधार है हमारा अच्छा स्वास्थ्य, क्योंकि जब तन स्वस्थ हो और मन प्रसन्न, तभी जिंदगी के हर रंग का आनंद लिया जा सकता है. तो आप स्वस्थ रहें, इसलिए एवरी फ्राइडे हेलो जयपुर में हम आपके लिए लेकर के आते हैं आपकी हेल्थ से जुड़ा खास सेगमेंट, हेल्थ इश्यूज. तो आइए करते हैं शुरुआत.
1: डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फीको सर्जरी सेंटर हेल्थ इश्यूज के प्रायोजक हैं. डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फीको सर्जरी सेंटर, टॉक रोड, टॉक फाटक, गांधीनगर, जयपुर.
2: क्या आप चश्मा हटवाना चाहते हैं? क्या आप बिना टांके, बिना पट्टी के सूक्ष्मतम चीरे द्वारा मोतियाबिंद का सफल इलाज करवाना चाहते हैं और आँखों से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं? तो आइए डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फीको सर्जरी सेंटर पर, जहां यूएसए एफडीए अप्रूव्ड विजुमैक्स फेमेटो सेकंड लेजर द्वारा 5 मिनट में सफलतापूर्वक चश्मा हटाया जाता है.
3: डॉक्टर वीरेंद्र दिल्ली एम्स के प्रख्यात गोल्ड मेडलिस्ट हैं. संपर्क करें डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फीको सर्जरी सेंटर, टोंक रोड, टोंक फाटक, गांधीनगर, जयपुर. कॉल करें 9829017147. तकनीक की जानकारी बारीकी से ले, तभी इलाज करवाएं, क्योंकि आपकी आंखें हमारे लिए अनमोल हैं.
0: दोस्तों, कहा जाता है कि यदि शरीर की नींव मजबूत हो तो जीवन की रफ्तार भी बनी रहती है, और हमारे शरीर की यही मजबूत नींव है रीढ़ की हड्डी. लेकिन आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली में रीढ़ से जुड़ी समस्याएं, लगातार रहने वाला पीठ दर्द, हाथों में झुंझुनू या सुन्नपन जैसी परेशानियां हर उम्र के लोगों के लिए चिंता का विषय बनती जा रही हैं. तो इन्हीं महत्वपूर्ण विषयों पर आज हेल्थ इश्यूज में करेंगे चर्चा. रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्याएं और उनके समाधान जानेंगे, कि किन संकेतों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और कब साधारण दर्द किसी गंभीर समस्या का संकेत बन सकता है, और क्या है इससे बचाव और उपचार के प्रभावी विकल्प. इन सब पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट डॉक्टर सचिन गुप्ता को. नमस्कार सर.
4: नमस्कार.
0: बहुत बहुत स्वागत है सर आपका. तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे ही समझना चाहेंगे कि हमारे स्पाइन का जो स्ट्रक्चर है वो कितना इम्पॉर्टेंट है और कैसे हमारे शरीर को ये सपोर्ट करता है. और जैसे बहुत बार हम देखते हैं कि अगर गर्दन में समस्या है तो कंधे में भी दर्द आएगा, और अगर लोअर बैक में दर्द है तो वो टांगों तक भी जाता है.

0: किस तरह से ये प्रक्रिया आपस में जुड़ी हुई है?
1: जी अनीता जी, जैसा कि आपने अभी बताया, जिसका नाम ही रीढ़ की हड्डी है, तो इसके ऊपर कितनी कहावतें हैं, कितने लोकोक्तियां बनी हुई हैं कि रीढ़ की हड्डी मतलब किसी भी, जैसे एक बड़े मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का एक मेन जो स्ट्रक्चर है, जो ब्लॉक है सपोर्ट करने के लिए, वो हमारे शरीर के लिए रीढ़ की हड्डी है
0: जी।
1: रीढ़ की हड्डी लगभग 33 अलग अलग हड्डियों से मिलकर पूरी रीढ़ की हड्डी बनती है, जिसमें कि सर्वाइकल स्पाइन, डोर्सल स्पाइन, लंबो सैक्रल स्पाइन जिसको हम बोलते हैं, तो इस तरीके से इसके हिस्से होते हैं। और ब्रेन से जो भी नीचे की बॉडी का, अपने सिर के नीचे जो भी बॉडी का कनेक्शन है, वो इस रीढ़ की हड्डी के थ्रू होता है। तो इसके थ्रू अपनी मेन जो स्पाइनल कॉर्ड, मेरु रज्जू जिसको बोलते हैं, और सारी नसें इसी के थ्रू, रीढ़ की हड्डी के थ्रू जाती हैं, और पूरा शरीर का कंट्रोल जो है वो इसी के थ्रू होता है। तो ये एक तरीके से एक वाकई रीढ़ की हड्डी है जो पूरे शरीर को संभालती है, और पूरे शरीर में जो भी ब्रेन के सिग्नल्स हैं वो इसी के थ्रू जाते हैं
0: जी। डॉक्टर साहब, पहले जो रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई जो समस्याएं होती थी, उन्हें उम्र से जोड़कर देखा जाता था कि बढ़ती हुई उम्र है, बड़ी उम्र है, तो शायद इस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी। लेकिन आज के समय की जब हम बात करते हैं, तो बड़े ही नहीं, बच्चे या किशोर भी, कोई भी इस समस्या से अछूते नहीं हैं। कौन से कारक या फैक्टर्स आप बताना चाहेंगे जो इन समस्याओं के लिए जिम्मेदार हैं?
1: जी अनीता जी, आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है, और कई सारे दुश्मन हैं इस रीढ़ की हड्डी के आजकल। तो सबसे पहला जो मैं दुश्मन मानता हूँ जो रीढ़ की हड्डी का है, वो है पोस्चर, या जिस तरीके से हम इसको यूज़ कर रहे हैं, इसको किस तरीके से हम बैठते हैं। तो लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, डेस्क जॉब एक बहुत बड़ा इसका रीज़न है, मोबाइल स्क्रीन्स, बॉडी वेट, तो ये कुछ कारण हैं। पोस्चर एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि किस पोस्चर में हम बैठते हैं। बहुत लोगों का फॉल्टी पोस्चर होता है और वो परमानेंट रीढ़ की प्रॉब्लम से ग्रसित रहते हैं। तो उम्र एकमात्र कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं जो रीढ़ की हड्डी की तकलीफ को बढ़ाते हैं। तो जैसा मैंने बताया, बॉडी वेट एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो भी ओबीज लोग होते हैं, ओवरवेट लोग होते हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी पर लोड ज़्यादा रहता है और रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम रहती है। इसके अलावा एक्सरसाइज ना करना, फिजिकल एक्टिविटी ना करना, तो इस तरीके से बहुत सारे रीजंस हैं जो रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम्स को बढ़ाते हैं
0: जी। तो जैसा कि आपने बताया, पोस्चर, गलत पोस्चर में अगर व्यक्ति बैठता है या सोता भी है, तो ये भी उसको इफेक्ट करती है, और लॉन्ग सिटिंग आवर्स बहुत बार होते हैं लोगों के, तो ये सब चीज़ें उस चीज़ को इफेक्ट करती हैं। तो ये तो लाइफस्टाइल से जुड़े हुए जो फैक्टर्स आपने बताए, इसके अलावा क्या कोई बीमारियाँ भी हैं जो इसको प्रभावित करती हैं?
1: जी, बहुत सारी बीमारियां हैं। सबसे बीमारी नहीं बोलूँगा मैं, सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है एज। अगेन, एज बढ़ने के साथ साथ जैसे सारी हड्डियां कमज़ोर होती हैं, मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम कमज़ोर होता है, ऐसे ही रीढ़ की हड्डी भी कमज़ोर होती हैं, और उनके अंदर दर्द रह सकता है। बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो रीढ़ की हड्डी को तकलीफ दे सकती हैं। टीबी की बीमारी रीढ़ की हड्डी में हो सकती है, ट्यूमर्स हो सकते हैं, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, गठिया, तो बहुत तरीके की ऐसी बीमारियां हैं जिसकी वजह से भी रीढ़ की हड्डी में तकलीफ रह सकती है।
0: जी, अलग अलग बीमारियां आपने बताई। डॉक्टर साहब, रीढ़ की जब बात होती है, अलग अलग जैसे भाग हैं इसके, आपने बताया अलग अलग समस्याएं हैं, जो एक कॉमन सिम्टम जो है जो प्रेजेंट करता है वो है बैक पेन। और जब दर्द की शुरुआत होती है तो अक्सर लोग पेन किलर ले लेते हैं और इसे डिले करते रहते हैं। कारण क्या होते हैं बैक पेन के, और कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो आप बताना चाहेंगे जो रेड फ्लैग्स हैं, बिल्कुल भी अवॉइड ना करें और एक विशेषज्ञ से संपर्क ज़रूर कर लें?
1: जी देखिए, बैक पेन एक बहुत कॉमन समस्या है। बैक पेन पूरी दुनिया के अंदर सबसे कॉमन प्रॉब्लम मानी गई है, जिसकी वजह से आदमी किसी भी एक्सपर्ट को कंसल्ट करता है
0: जी।
1: तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। 80% ऑफ टाइम्स बैक पेन सिंपल बैक एक होता है, मस्कुलर पेन होता है, जो किसी भी घरेलू नुस्खों से या साधारण एक दो पेन किलर लेने से रिजॉल्व हो सकता है। कुछ रेड फ्लैग्स हैं, कुछ अलार्मिंग सिचुएशंस हैं जिनको इग्नोर ना करें, और उसमें एक्सपर्ट की इमीडिएट आपको ओपिनियन लेनी चाहिए, जिसमें बैक पेन के साथ अगर एसोसिएटेड लिम्स का पेन है, जैसे पैरों में दर्द जा रहा है, पैरों में झंझनाहट है, कोई कमजोरी पैरों में महसूस हो रही है, आपको यूरिन में कोई प्रॉब्लम लग रही है, मोशन में कोई प्रॉब्लम लग रही है, तो इमीडिएटली कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा सीवियर पेन है, अनबियरेबल पेन है, रेस्ट पेन है, रात में भी आप सो नहीं पा रहे हैं, उसमें भी दर्द हो रहा है, साथ में एसोसिएटेड कोई

0: बीमारी है, फीवर है, फीवर आ रहा है पेन के साथ, तो ये कुछ ऐसे वो हैं रेड फ्लैग्स हैं जिसमें इमीडिएटली एक्सपर्ट को सलाह लेनी
1: जी,
0: चाहिए।
1: क्योंकि जनरली डॉक्टर साहब ये होता है बैक पेन होता है, लोग पेन रिलीविंग स्प्रेज कर लेंगे या कुछ पेन किलर खा लेंगे और इसे डिले करते रहते हैं, अवॉइड करते रहते हैं, और जब तक समस्या शायद ज़्यादा बढ़ जाती है।
0: जी
1: जी, तो श्रोताओं, हेलो जयपुर में आप सुन रहे हैं हमारा हेल्थ सेगमेंट, डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर हेल्थ इश्यूज़। आज इसमें हम चर्चा कर रहे हैं रीढ़ और कलाई की हड्डी से जुड़ी समस्याओं और उनके उपचार के विषय में। हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञ मेहमान हैं डॉक्टर सचिन गुप्ता, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट। यहाँ एक छोटे से अंतराल के लिए हम रुकते हैं, वापस आकर इसी विषय पर चर्चा को जारी रखेंगे। आप बने रहिए आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल के साथ।
2: भाई, मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
3: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
4: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।
5: उत्तम तकनीक और अनुभवी सर्जन मिलकर देते हैं सफल परिणाम। डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर,
6: जहां मोतियाबिंद का इलाज फेंटो लेजर सर्जरी द्वारा किया जाता है, राज्य का एकमात्र स्थान।
5: डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर, टॉक फाटक, टॉक रोड, गांधीनगर, जयपुर। कॉल 2707580 और 9829017147।

0: 101.2 FM
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से हेलो जयपुर में आप सुन रहे हैं हमारा हेल्थ सेगमेंट डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर हेल्थ इश्यूज। आज इसमें हम चर्चा कर रहे हैं रीढ़ और कलाई की हड्डी से जुड़ी समस्याओं और उनके उपचार के विषय में। हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञ मेहमान हैं डॉक्टर सचिन गुप्ता, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट। तो डॉक्टर साहब, बैक पेन की हमने बात की, कमर दर्द की, जो कि आजकल बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। आजकल लोगों में, जैसे यंगस्टर्स में हम देखते हैं, यंग फीमेल्स में देखते हैं कि हाई हील्स का बहुत चलन है, तो क्या ये इसकी वजह से भी बैक पे स्ट्रेन आता है?
2: जी अनीता जी, ये बिल्कुल सच है। और हाई हील्स एक तरीके का पोस्चुरल मॉड्यूलेशन है, मॉडिफिकेशन है, और इसको ये नेचुरल पोस्चर नहीं है। तो जब भी हम हाई हील यूज़ करते हैं तो रीढ़ की हड्डी पर एक एक्स्ट्रा लोड आता है उसके बैलेंस को बनाए रखने के लिए। तो मैं यही सलाह दूंगा अपने श्रोताओं को कि हाई हील्स यूज़ भी करें तो कम समय के लिए करें, और बहुत लंबे टाइम तक हाई हील्स पहनकर खड़े रहना या चलना एडवाइजेबल नहीं है।
1: जी, तो जहाँ तक हो सके हाई हील अवॉइड करें, और दूसरा फुटवेयर भी आप बिल्कुल इसी के हिसाब से पहने ताकि कमर को सपोर्ट ही मिले और उसमें प्रॉब्लम ना आए। डॉक्टर साहब, हमारा जो स्लीपिंग पॉस्चर है, क्या ये भी इफ़ेक्ट करता है हमारी रीढ़ की हड्डी को?
2: जी, पोस्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जैसा मैंने पहले बताया। और बहुत लोगों की आदत होती है कि वो आधे लेटे आधे बैठे टाइप के पोस्चर में ऊंचे ऊंचे तकिए लगाकर घंटों घंटों तक लगातार टीवी देखते रहते हैं, बैठे रहते हैं, तो वो अगेन एक लोड है रीढ़ की हड्डी के ऊपर। और इस तरीके के पोस्चर्स अवॉइड करें, या तो पूरे लेटें या पूरे इरेक्ट पोस्चर में बैठें। और इसके अलावा जो मैट्रेस है वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो मैट्रेस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल हार्ड भी नहीं होना चाहिए। तो एक बैलेंस्ड मैट्रेस, जो कोयर फोम टाइप के मैट्रेस जो आजकल आते हैं, या फिर रुई के जो पुराने गद्दे चला करते थे, तो वो यूजुअली बेटर रहते हैं रीढ़ की हड्डी के लिए। पिलो हमेशा हम एडवाइस करते हैं कि पतला और सॉफ्ट यूज करें, बहुत ज्यादा मोटा पिलो यूज नहीं करना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, कई बार हम स्लिप डिस्क या डिस्क बल्जिंग की जो प्रॉब्लम है उसके बारे में सुनते हैं, इसके क्या कारण होते हैं, ये क्या है? और कई बार पैरों में इससे सुन्नपन भी आने लगता है, तो स्पाइनल कॉर्ड अगर प्रेस हो रही है तो किस तरह से इसका मैनेजमेंट होना चाहिए, और कब इसके विषय में चिंतित होकर एक विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए?
2: जी, स्लिप डिस्क अगेन एक बहुत कॉमन समस्या है, और रीढ़ की हड्डियों के बीच में जो सॉफ्ट पार्ट होता है उसको हम डिस्क बोलते हैं। और रिपीटेड ट्रॉमा से, क्योंकि उसके ऊपर पूरे शरीर का लोड है, रिपीटेड ट्रॉमा से, मूवमेंट से, वो कई बार डिस्क निकल जाती है, उसमें से स्लिप हो जाती है, और वो स्पाइनल कॉर्ड को या नर्व रूट्स को कंप्रेस करती है।
1: जी।
2: जब इस तरीके का चीज़ होती है तो जो पैरों में दर्द जाता है, झंझनाहट जाती है, सूनापन जा सकता है, जिसको हम कॉमन भाषा में शियाटिका भी बोलते हैं, तो वो स्लिप डिस्क की वजह से होता है। कारण इसके अनेक हैं, जरूरी नहीं है कोई कारण हो, इडियोपैथिक भी हो सकता है, बिना किसी कारण के भी स्लिप डिस्क हो सकता है। इसके अलावा अगेन बॉडी वेट ओबीज लोगों में ज़्यादा कॉमन रहता है, कोई ज़ोर से झटका लगने से, झुक के अचानक भारी वजन उठाने से, किसी भारी चीज को धक्का देने से स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो सकती है। तो स्लिप डिस्क को डायग्नोस करने के लिए डेफिनेटली एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत होती है, और इसके अलावा कुछ डायग्नोस्टिक मोडेलिटीज हैं, MRI खासतौर से इसको डायग्नोस करने के लिए कराई जाती है। और किस लेवल का स्लिप डिस्क है, कितना कंप्रेशन है, उसके आधार पर इसका आगे मैनेजमेंट डिसाइड होता है।
1: जी डॉक्टर साहब, ओबेसिटी की आपने बात की, और ये बात लगातार आती जा रही है कि अगर मोटापा है तो स्पाइन पर प्रभाव ये डालेगा। आजकल की सेडेंट्री लाइफस्टाइल की हम बात करें, खान पान कुछ ऐसा हो गया है कि बच्चों और किशोरों में हम देखते हैं कि मोटापा बढ़ता जा रहा है, किस तरह से इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए और कितना इसके विषय में चिंतित होने की ज़रूरत है?
2: देखिए, जितनी चिंता की जाए वो कम है और जितना ध्यान दिया जाए वो कम है। तो ये एक बहुत एक महामारी की तरह फैल रहा है, ख़ास तौर से चाइल्डहुड ओबेसिटी। और चाइल्डहुड ओबेसिटी हो सकता है बचपने में, जब तक इतनी प्रॉब्लम आपको नहीं करे, पर एक एज के बाद ये सभी पूरे बॉडी सिस्टम को अफेक्ट करती है। तो सारे ही रीढ़ की हड्डी हैं, घुटनों के जोड़ हैं, इसके अलावा आपका डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो सभी चीज़ों में एडवर्स इफेक्ट है ओबेसिटी का। तो बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, और बच्चों से ज़्यादा उनके पेरेंट्स को ध्यान देने की ज़रूरत है। है, तो इसमें जितना ध्यान दें, जितनी बात की जाए उतनी कम है इस विषय में।
1: जी, क्योंकि 24 आवर्स एक जो वेट है वो आपके साथ चलता रहता है और
2: जी
1: आपके घुटनों पर, स्पाइन पर, सब पर वो असर डालता है। डॉक्टर साहब, मान लीजिए किसी को चोट लगी है स्पाइन में, लेकिन खून नहीं निकल रहा, लेकिन लग रहा है कि इंजरी हुई है, तो किस तरह से एक्शन होना चाहिए उसके मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट के लिए?
2: जी स्पाइन की चोट अगेन एक बहुत कॉमन चोट है, और किसी भी तरीके के एक्सीडेंट में, स्पोर्ट्स में ये इंजरीज होती हैं। और बहुत अगर माइनर चोट है तो हो सकता है 1-2 दिन आप वेट कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर पेन ज़्यादा है तो फिर अगेन एक्सपर्ट ओपिनियन आपको लेनी चाहिए। और एक्सरे एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन है जिससे अगर कोई मेजर चोट है तो पता चलती है, और उसके बाद भी हम कुछ सस्पेक्ट करते हैं कि कोई अंदरूनी चोट है तो फिर सीटी स्कैन या MRI करा के उसको डायग्नोस किया जाता है।
1: जी, और व्यक्ति को लिफ्ट करने का सही तरीका क्या होगा?
2: देखिए ट्विस्टिंग मूवमेंट स्पाइन में किसी भी तरीके के अवॉइड, अगर कोई एक्सीडेंट है, चोट ऐसा आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि कोई गर्दन में चोट हो सकती है, रीढ़ की हड्डी में चोट हो सकती है, तो सीधा सीधा उसको लिफ्ट करना चाहिए। 2-3 लोग बिल्कुल उसको ट्विस्ट ना होने दें स्पाइन को, जिससे आगे उसमें इंजरी प्रिवेंट कर सकें। और कोई भी अगर आपके पास इस तरीके की एक्सटर्नल हेल्प उस समय है कि कॉलर अवेलेबल है या कोई पट्टे टाइप के कुछ ब्रेसेस अवेलेबल हैं जिससे उसको सीधा रखा जा सके, तो उस पर थोड़ा सा टाई करके फिर लिफ्ट करना चाहिए।
1: जी, क्योंकि बहुत बार डॉक्टर साहब एक्सीडेंट के जो केसेस होते हैं उनमें देखा जाता है कि व्यक्ति को हाथों और पैरों से पकड़कर उठाते हैं, जो कि सेकेंडरी इंजरी का भी कई बार कारण बन
2: जी
1: जाता है।
2: बिल्कुल
1: तो इस समय बड़े ध्यान रखने की ज़रूरत है कि रीढ़ को बिल्कुल सीधा रखना है।
2: जी
1: जी, तो डॉक्टर साहब, पीठ दर्द या रीढ़ की हड्डी के जो दर्द की हम बात कर रहे हैं, इसके मैनेजमेंट के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे इसका प्रबंधन किया जाता है, क्या दवाइयों और फिजियोथेरेपी से ज़्यादातर लोग ठीक हो सकते हैं?
2: जी जैसा मैंने बताया, मोर देन 80% जो स्पाइन प्रॉब्लम्स हैं वो कंजर्वेटिवली ट्रीट होती हैं। वो प्रॉपर ध्यान रखने से, प्रॉपर पोस्चर करेक्शन से, एक्सरसाइजेस से, कुछ मेडिसिन से यूजुअली क्योर हो जाती हैं। फिजियोथेरेपी इसका एक मेन, मतलब ये मान लीजिए मेन जो ट्रीटमेंट है रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम्स का, वो एक्सरसाइजेस फिजियोथेरेपी है। फिजियोथेरेपी इसमें बहुत कारगर रहती है, और जल्दी अर्ली स्टेज में ही अगर कुछ बेटर फिजियोथेरेपी करा लें, एक्सरसाइजेज रेगुलर करते रहें, तो यूजुअली एडवांस स्टेज तक ये नहीं पहुंचती है। ज़्यादा एडवांस स्टेज है, कोई प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं, तो फिर इसमें सर्जिकल मैनेजमेंट्स हैं, जो भी आजकल बहुत एडवांस ट्रीटमेंट है और बहुत तरीके की सर्जरी जिसमें होती हैं, तो एडवांस स्टेज में उनमें जाने की ज़रूरत पड़ती है।
1: जी डॉक्टर साहब, सर्जरी के बारे में भी आपसे जानेंगे, लेकिन पहले ये जानना चाहेंगे कि पहले जब बैक पेन होता था तो ये कहा जाता था कि आप फुल बेड रेस्ट लीजिए, आज के समय में ये कहा जाता है कि आप थोड़ा मूवमेंट ज़रूरी है, मूव करते रहिए बॉडी को, तो ये इसके विषय में आपसे जानना चाहेंगे क्या सही है?
2: जी देखिए, बहुत कॉमन एक कन्फ्यूज़न है लोगों के अंदर, और चूंकि साइंस एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और इसमें कंसेप्ट चेंज होते रहते हैं, तो अभी आजकल जो कंसेंसस

0: है, जो एक मत है वो ये है कि कंप्लीट बेड रेस्ट, लंबा कंप्लीट बेड रेस्ट यूजुअली एडवाइज़ नहीं किया जाता बैक प्रॉब्लम्स के लिए। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन मैक्सिमम बेड रेस्ट हम लोग एडवाइस करते हैं, और उसके बाद इमीडिएटली एक्सरसाइजेज, फिजियोथेरेपी और थोड़ा सा असिस्टेड वॉक और ये सब स्टार्ट कर दिया जाता है। तो लंबा कंप्लीट बेड रेस्ट अब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, यानी कि वो हम ये मानते हैं कि ज़्यादा बेड रेस्ट इस स्पाइन की प्रॉब्लम को और एग्रावेट करेगा, ठीक नहीं करेगा। तो थोड़ी एक्टिविटी के साथ रेस्ट एडवाइस यूजुअली करते हैं,
1: लेकिन एक विशेषज्ञ की निगरानी में ये सब चीज़ें की जानी चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: तो श्रोताओ, हेलो जयपुर में आप सुन रहे हैं हमारा हेल्थ सेगमेंट, डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फीको सर्जरी सेंटर हेल्थ इश्यूज। आज इसमें हम चर्चा कर रहे हैं रीढ़ और कलाई की हड्डी से जुड़ी समस्याओं और उनके उपचार के विषय में। हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञ मेहमान हैं डॉक्टर सचिन गुप्ता, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट। श्रोताओ, आपका भी इस विषय से संबंधित कोई सवाल है, कुछ आप इस विषय में डॉक्टर साहब से जानना चाहते हैं, तो दो फोन लाइन्स हैं जिनके जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, डॉक्टर साहब से अपना सवाल पूछ सकते हैं। पहला नंबर है 2200600, दूसरा नंबर है 2366477, जयपुर का एसटीडी कोड है 0141। या एक छोटे से अंतराल के लिए हम रुकते हैं, वापस आकर इस विषय पर चर्चा को जारी रखेंगे। आप बने रहिए आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल के साथ।
2: क्या आप चश्मा हटवाना चाहते हैं? क्या आप बिना टांके, बिना पट्टी के सूक्ष्मतम चीरे द्वारा मोतियाबिंद का सफल इलाज करवाना चाहते हैं और आंखों से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं? तो आइए डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर पर, जहां यूएसए एफडीए अप्रूव्ड विजुमैक्स फेमेटो सेकंड लेजर द्वारा 5 मिनट में सफलतापूर्वक चश्मा हटाया जाता है।
3: डॉक्टर वीरेंद्र दिल्ली एम्स के प्रख्यात गोल्ड मेडलिस्ट हैं। संपर्क करें डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर, टोंक रोड, टोंक फाटक, गांधीनगर, जयपुर। कॉल करें 9829017147। तकनीक की जानकारी बारीकी से ले, तभी इलाज करवाएं, क्योंकि आपकी आंखें हमारे लिए अनमोल हैं।
4: भाई, मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
5: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
3: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।

0: 101.2 FM।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से हेलो जयपुर में आप सुन रहे हैं हमारा हेल्थ सेगमेंट डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर हेल्थ इश्यूज। आज इसमें हम चर्चा कर रहे हैं रीढ़ और कलाई की हड्डी से जुड़ी समस्याओं और उनके उपचार के विषय में। हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञ मेहमान हैं डॉक्टर सचिन गुप्ता, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट। डॉक्टर साहब, एक श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, पहले उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो जयपुर।
2: हेलो।
1: हाँ जी, नमस्कार।
2: हाँ नमस्कार मैम, मैं निर्माण नगर से बोल रही हूँ।
1: जी नाम बताइए मैम।
2: डॉक्टर आपको भी नमस्कार। जी मैं एकता बात कर रही हूँ।
3: जी नमस्कार,
1: स्वागत है आपका।
2: नमस्कार। ये एक प्रश्न था कि जैसे लेडीज में ज्यादातर देखा जाता है कि जो टेल बोन होती है उसमें भी दर्द रहता है, डॉक्टर साहब तो उसके लिए कोई एक्सरसाइज चाहिए या कोई ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा? थोड़े टाइम बाद चला जाता है, लेकिन अगर मान लीजिए पूरे दिन खड़े रह गए या कुछ ऐसा, तो वो पूछना चाह रहे थे।
1: जी
3: जी, ये भी अगेन एक कॉमन प्रॉब्लम है, कॉक्सीडाइनिया इसको बोलते हैं, टेल बोन में जो पेन रहता है। और जैसा आपने बोला ये चला जाता है, यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग होता है और अपने आप टाइम के साथ धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, अगर चोट लगने की वजह से नहीं हुआ है तो। तो इसके अलावा कुछ इसमें सेक होता है, सिट्स बाद बोलते हैं, ऑल्टरनेट हॉट एंड कोल्ड फोमेंटेशन करते हैं, कुछ टॉपिकल दवाइयाँ लगाने की दवाइयाँ हैं वो यूज़ कर सकते हैं, कुछ एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन हैं वो यूज़ कर सकते हैं, और फिर भी अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो किसी एक्सपर्ट फिजियो या एक्सपर्ट ओपिनियन लेना बेटर रहता है।
1: जी डॉक्टर साहब, बहुत बार ये देखा जाता है लॉन्ग सिटिंग आवर्स हैं, उसके बाद आप चेयर से एकदम उठे तो पेन होता है, तो इसके बारे में चिंतित होने की ज़रूरत है?
3: नहीं, ये देखिए प्रोलॉन्ग सिटिंग के बाद स्टिफनेस आना एक नेचुरल चीज़ है, लेकिन अगेन ये कम रहे इसके लिए आप अगर बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग सिटिंग अवॉइड करेंगे, थोड़ी देर में उठ के स्ट्रेच कर लेंगे, अपने स्पाइन को स्ट्रेच कर देंगे तो ये प्रॉब्लम कम रहेगी। और थोड़ा सा जो चेयर है वो आपकी कंफर्टेबल होनी चाहिए, बैक रेस्ट के साथ पूरा टेक लेके बैठे और नीचे जो आपके पैर हैं वो टिके हुए होने चाहिए, हैंगिंग नहीं होने चाहिए।
1: जी, एक और श्रोता हमारे साथ हैं। हेलो जयपुर।
4: बहन जी, आपको डॉक्टर साहब को सहप्रेम नमस्कार, प्रकाश झंगड़ बोल रहा हूँ।
1: नमस्कार, नमस्कार प्रकाश जी, स्वागत है आपका।
4: डॉक्टर साहब, मैं ये पूछ रहा था कि हमारी फैमिली में है कि मतलब उसकी उम्र है 58 साल, और उनके ना कभी कभी तो जैसे रीढ़ की हड्डी में बिल्कुल ऊपर से और नीचे के बीच में उसका दर्द होने लग जाता है, और कभी कभी कमर के जोड़ में दर्द होने लग जाता है, एक तो ये पूछ रहा था, और अपना आप ही ठीक हो जाता है, वो दवा कुछ नहीं लेते। मैंने उनको बोला पेन किलर कभी मत लेना, और दूसरा मेरे के जो राइट साइड के जो हैंड की कलाई है ना उसमें दर्द होने लग जाता है, अपना आप ही ठीक हो जाता है, ये क्या थोड़ा बताएंगे?
1: जी प्रकाश जी।
3: जी देखिए, इस तरीके के कमर दर्द, जोड़ों के दर्द एज के साथ ऑफ एंड ऑन हो सकते हैं, और मैंने जैसे पहले भी बताया कि ज़्यादातर केसेस में ये अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, कुछ घरेलू नुस्खों से ठीक हो जाते हैं, कुछ एक्टिविटी से ठीक हो जाते हैं। और पेन किलर के बारे में आपकी ओपिनियन ठीक है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा पेन किलर्स नहीं लेने चाहिए, मिनिमम पेन किलर्स से जो काम चले इतने ही लेने चाहिए, और फिर भी अगर ऑफ एंड ऑन होता है, बहुत ज़्यादा बार बार होता है, तो फिर एक्सपर्ट ओपिनियन आपको लेनी चाहिए।
1: जी, और पेन किलर कई बार ओवर द लोग जाकर ले लेते हैं, तो वो तो बिल्कुल नहीं लेने चाहिए।
3: जी बिल्कुल, बिल्कुल।
1: जी डॉक्टर साहब, स्पाइन सर्जरी के बारे में हम जानना चाहेंगे कि इसका निर्णय किन स्थितियों में लिया जाता है, क्योंकि बहुत से लोग स्पाइन सर्जरी इसको इसलिए भी ऑप्ट नहीं करना चाहते क्योंकि और डिले करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद कुछ कॉम्प्लिकेशन इसकी वजह से ना हो जाए। तो किस तरह के एडवांसमेंट्स हुए हैं, कौन सी तकनीकें आप बताना चाहेंगे जिन्होंने स्पाइन सर्जरीज को न केवल सरल और सुगम बनाया बल्कि सभी के लिए सुरक्षित भी बना दिया है?
3: जी देखिए, स्पाइन सर्जरी सर्जिकल फील्ड के अंदर एक सबसे ज़्यादा जिसके अंदर एडवांसमेंट हुआ है, किस तरीके की सर्जरी है, और पहले इस सर्जरी को लेकर बहुत फोबिया था, बहुत डर था कि सर्जरी के बाद लकवा हो सकता है, जैसे हैं वैसे भी नहीं रहेंगे, या दो दो महीने बेड रेस्ट करना पड़ेगा। अभी जो एडवांसमेंट्स हैं उसके बाद इस तरीके की स्थिति नहीं है, बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड सर्जरीज हैं। सर्जरी से पहले के भी कुछ ट्रीटमेंट हैं आजकल, मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स हैं, कुछ इंजेक्शन ट्रीटमेंट्स हैं, पेन मैनेजमेंट ट्रीटमेंट्स हैं, जिनके थ्रू हम लोग कोशिश करते हैं कि सर्जरी की नौबत ना आए और उनसे काम हो जाए। सर्जरी की अगर ज़रूरत पड़ती है तो भी अगेन मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज हैं, एंडोस्कोपिक सर्जरीज हैं, जिसमें बहुत कम चीरे से और बहुत कम बोन हटा के स्पाइन सर्जरीज हो जाती हैं। कन्वेंशनल सर्जरीज भी बहुत एडवांस हो गई हैं। पहले हम डिस्क निकालने के लिए, जब बहुत ज़्यादा डिस्क प्रोलैप्स होता था और उसको सर्जिकली रिमूव करना पड़ता था, तो उसके लिए काफ़ी बड़ा बोन का हिस्सा रिमूव करना पड़ता था, फिर उस डिस्क को हटाते थे, उसके बाद एक महीना, डेढ़ महीना, दो महीना रेस्ट एडवाइस किया जाता था। अभी इस तरीके की स्थिति नहीं है, डिस्क रिप्लेसमेंट होने लगा है, डिस्क हटा के दूसरा डिस्क हम डालते हैं। इसके अलावा स्पाइन को फिक्स किया जाता है, जिसकी वजह से बहुत इमोबिलाइजेशन इसमें अब रिक्वायर्ड नहीं रहता है। इमीजिएटली सर्जरी के नेक्स्ट डे से ही बैठना, करवट लेना स्टार्ट यूजुअली हो जाता है और बहुत जल्दी पेशेंट मोबाइल हो जाता है। कॉम्प्लिकेशन रेट्स पहले के कंपैरिजन में बहुत कम हुई हैं, जो एडवांस सर्जिकल टेक्निक्स हैं उसकी वजह से, जो एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी वजह से। तो ओवरऑल स्पाइन सर्जरी एक बहुत एडवांस उसमें है, अभी नेविगेशन से हो रहे हैं, रोबोटिक्स भी इसके अंदर अब आ रहे हैं, तो बहुत कुछ नया इसमें चल रहा है और अब बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत स्पाइन सर्जरी के लिए नहीं है। बट अगेन सर्जरी, कोई भी सर्जरी कॉम्प्लिकेशन फ्री नहीं होती है, हर सर्जरी की कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन रेट होती है, स्पाइन सर्जरी में भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो ये जो सर्जरी का डिसीजन है स्पाइन के अंदर, वो ऐसा नहीं है कि किसी भी एक लिबरल तरीके से लिया जाए, तो डेफिनेटली एक्सपर्ट ओपिनियन लेकर सारी तरीके से संतुष्ट होने के बाद ही स्पाइन के अंदर सर्जरी का डिसीजन लिया जाता है। पर सर्जरी अब इतनी डरावनी नहीं है जितनी कि इसके इमेज है।
1: तो यानी कि जिस तरह के एडवांसमेंट्स हुए हैं उन्होंने इसको सरल, सुगम और सुरक्षित बना दिया है। अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है तो एक विशेषज्ञ की निगरानी में ओपिनियन ली जा सकती है। जी, एक और श्रोता हमारे साथ हैं। हेलो जयपुर। हेलो हेलो जयपुर। तो डॉक्टर साहब, आजकल बहुत बार लोगों की लाइफ, जैसा कि हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर टाइम उनको आप मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर काम करते हुए बीतता है, ऐसे में बहुत बार हम देखते हैं कि हाथों में, कलाई में झुंझुनी सी होती है या दर्द होने लगता है, तो ये कौन सी सिचुएशन है, क्या है ये प्रॉब्लम?
3: देखिए, जिस तरीके का सिम्टम और वो आप बता रहे हैं, ये यूजुअली कार्पल टनल सिंड्रोम हम इसको बोलते हैं। और कार्पल टनल एक स्ट्रक्चरल टनल है रिस्ट में, और मीडियन नर्व नामक एक नस इसके अंदर से जाती है, वो कंप्रेस हो जाती है और उसकी वजह से उंगलियों में झंझनाहट और दर्द होने लगता है। इसका अगेन लाइफस्टाइल रिलेटेड ही प्रॉब्लम है, और यूजुअली जिस तरीके का पोस्चर रिस्ट का रहता है, लगातार घंटों घंटों तक मोबाइल में लोग यूज़ करते रहते हैं या स्क्रीन किसी भी तरीके का यूज़ करते रहते हैं, तो उसकी वजह से ये धीरे धीरे कंप्रेस होकर वो नस इस तरीके के सिम्टम्स देने लगती है, जिसको कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। इसके अलावा कुछ कंडीशंस हैं, जैसे प्रेगनेंसी है उसके अंदर ये कॉमन है, या कुछ बीमारी हैं जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म है उसके अंदर ये कॉमन है। तो जो भी ऐसी कंडीशंस जिसके अंदर बॉडी के अंदर फ्लूड रिटेंशन होने की संभावना होती है, तो उसमें उस नस के अंदर या टनल के अंदर सूजन आने की वजह से ये कार्पल टनल सिंड्रोम होता है।
1: जी, तो इसका उपचार किस तरह से किया जाता है, इसके उपचार के लिए क्या बताते हैं?
3: देखिए, अगेन ये कई बार सेल्फ लिमिटिंग होता है, अपने आप धीरे धीरे टाइम के साथ रिलीव हो जाता है। कुछ मेडिसिन से इसमें असर आता है, कुछ नर्व स्टेबलाइजर्स देते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरीज देते हैं, उनसे कुछ ब्रेसिंग होती है कि रिस्ट को हम एक पर्टिकुलर पोजीशन पर इमोबिलाइज करते हैं कुछ टाइम के लिए, तो उससे इसके अंदर की सूजन उतरकर इसमें रिलीव आ सकता है। ज़्यादा रहता है तो फिर इंजेक्शन इसमें कभी कभी लगाने की ज़रूरत पड़ती है, स्टीरॉयड इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं जिससे रिलीव हो जाता है, और फिर भी अगर रेजिस्टेंट रहे बहुत ज़्यादा हो तो एक माइनर सर्जरी से इसको ठीक किया जा सकता है।
1: जी, एक श्रोता हमारे साथ हैं। हेलो जयपुर। हेलो जयपुर।
0: नमस्कार, प्रमोद बोल रहा हूँ।
1: नमस्कार प्रमोद जी।
0: जी, मेरा निवेदन था कि एक तो विटामिन का कितना बड़ा रोल है, जैसे B12, विटामिन डी और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। दूसरा, जो ये मालिश करने का जो है चलन, वो कितना दुष्प्रभाव पड़ता है, जैसे आप प्रिस्क्राइब भी करते हैं ऑइंटमेंट वगैरह, उसको भी मालिश की तरह वो करते हैं, प्लीज बताएं।
1: जी
3: जी, तो पहला प्रश्न आपने पूछा मल्टी विटामिन्स का रोल, तो ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है, और मल्टी विटामिन्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जिस तरीके से, और पूरे बॉडी के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ख़ास तौर से विटामिन डी और विटामिन B12, ये दोनों विटामिन्स की अगर डेफिशिएंसी रहेगी तो उसमें कमर दर्द हो सकता है, तो इसलिए विटामिन डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो भी हेल्दी अपना फूड है वो इम्पॉर्टेंट है स्पाइन हेल्थ के लिए भी। और दूसरा प्रश्न आपने पूछा कि
1: जी, इन्होंने स्टेरॉइड के बारे में पूछा था, स्टेरॉइड के इंजेक्शन दिए जाते हैं शायद, इसके बारे में पूछा था जी। तो अभी तो वो हमारे साथ है नहीं, और हो सकता है कि दोबारा वो जुड़े। डॉक्टर साहब, बहुत बार हम ये देखते हैं कि लोग एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन एक्सरसाइज कई बार गलत तरीके से कर ली जाती है, उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो कोई व्यक्ति अगर एक्सरसाइज की शुरुआत कर रहा है बैक पेन के लिए, तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
3: देखिए, सबसे पहले तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक एक्सपर्ट फिजियो से ज़रूर ओपिनियन लेनी चाहिए, और वो ज़्यादा बेटर तरीके से एक्सरसाइजेज आपको एडवाइस कर पाएंगे, जो आपकी कंडीशन को देखते हुए आपके लिए बेटर रहेगी। क्योंकि गलत तरीके से अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो वो आपकी कंडीशन को और वर्सन कर सकती है। तो एक एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ, किसी अच्छे एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति के साथ सीख कर पहले, और फिर इन एक्सरसाइजेस को करना चाहिए।
1: प्रमोद जी का एक सवाल था मालिश को लेकर के।
3: देखिए, मालिश अगेन, बहुत विग्रस मसाज हम किसी भी कंडीशन के लिए अवॉइड करने की सलाह देते हैं, और हल्के हाथ से कुछ भी ऑइंटमेंट लगाना या कोई ऑयल लगाना, उसमें कोई नुकसान यूजुअली नहीं होता है। तो विग्रस मसाज अवॉइड करें, और अगर कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन है, कोई अगर टीबी की बीमारी है या रीढ़ की हड्डी में कोई फ्रैक्चर है, तो उस स्थिति में मसाज बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए।
1: जी, तो श्रोताओ, हेलो जयपुर में आप सुन रहे हैं हमारा हेल्थ सेगमेंट, डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फीको सर्जरी सेंटर हेल्थ इश्यूज। आज इसमें हम चर्चा कर रहे हैं रीढ़ और कलाई की हड्डी से जुड़ी समस्याओं और उनके उपचार के विषय में। हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञ मेहमान हैं डॉक्टर सचिन गुप्ता, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट। यहाँ एक छोटे से अंतराल के लिए हम रुकते हैं, वापस आकर इसी विषय पर चर्चा को जारी रखेंगे। आप बने रहिए आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल के साथ।
5: उत्तम तकनीक और अनुभवी सर्जन मिलकर देते हैं सफल परिणाम। डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेकू सर्जरी सेंटर,
6: जहां मोतियाबिंद का इलाज फेंटो लेजर सर्जरी द्वारा किया जाता है, राज्य का एकमात्र स्थान।
5: डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेकू सर्जरी सेंटर, टॉक फाटक, टॉक रोड, गांधीनगर, जयपुर। कॉल 2707580 और 9829017।

0: 101.2 FM
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से हेलो जयपुर में आप सुन रहे हैं हमारा हेल्थ सेगमेंट डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर हेल्थ इश्यूज। आज इसमें हम चर्चा कर रहे हैं रीढ़ और कलाई की हड्डी से जुड़ी समस्याओं और उनके उपचार के विषय में। हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञ मेहमान हैं डॉक्टर सचिन गुप्ता, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट। डॉक्टर साहब, एक श्रोता हमारे साथ हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो जयपुर।
2: नमस्कार आपको, डॉक्टर साहब को
3: नमस्कार।
2: भूपेंद्र कुमार गुप्ता कोटा से बोल रहा हूँ।
1: जी भूपेंद्र जी,
2: ये साहब जैसे पट्टा बताते हैं बहुत सी बीमारियों में और उसको अवॉइड करते हैं लोग बाग, तो सही है क्या? और दूसरी बात, कमर में दर्द होता है तो ये उस्ताद लोगों से कुछ परामर्श लेते हैं, उसमें भी नुकसान हो सकता है क्या?
1: जी जी डॉक्टर साहब।
3: जी प्रमोद जी, एक तो शायद बेल्ट की बात कर रहे हैं ये, कि एलएस बेल्ट जो हम
2: थोड़ा पट्टा पतला पट्टा आता है।
3: जी जी, देखिए बेल्ट अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, सीवियर है, तो शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा लंबे टाइम तक किसी भी एक्सटर्नल सपोर्ट को यूज़ करना अगेन ज़्यादा नुकसान करता है फ़ायदे की जगह। तो कोई आपकी कमर में प्रॉब्लम है, आपको कोई लंबी जर्नी करनी है, तो ऐसी कंडीशंस में आप यूज़ टेम्पररीली कर सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ नहीं करनी चाहिए। दूसरा, आपने बोला कि जो देसी इलाज करते हैं, जो झटका लगवाते हैं या चणक निकलवाना कहीं बोलते हैं, इस तरीके के बहुत प्रचलन है इस तरीके के इलाजों का रीढ़ की हड्डी के लिए। पर साइंस का जहाँ तक सवाल है, एलोपैथी का जहाँ तक सवाल है, हम इस तरीके के इलाजों को सपोर्ट नहीं करते। और बहुत सारे हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो इस तरीके का इलाज करवाने के बाद और ज़्यादा ख़राब हो जाती है जिनकी कंडीशन, और फिर उनको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, जो शायद अगर वो प्रॉपरली पहले ट्रीटमेंट कराते तो ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये जो झटके लगवाने वाले इलाज हैं स्पाइन की कंडीशंस में, यूजुअली इनको अवॉइड करना चाहिए।
1: जी, कई बार इनसे फायदे की जगह नुकसान पहुंच सकता है और वो नुकसान इस तरह का होगा कि वो रिवर्स भी नहीं हो पाएगा।
3: जी
1: जी, एक और श्रोता हमारे साथ हैं। हेलो जयपुर।
4: हेलो मैम, नमस्ते।
1: नमस्कार
4: डॉक्टर साहब को भी। नमस्कार
3: जी। नमस्कार,
4: मैं मध्य प्रदेश सागर से विपिन कटारे बात कर रहा हूँ।
1: जी विपिन जी, स्वागत है।
4: जी शुक्रिया। मेरा सवाल ये था कि आजकल देखा जा रहा है, एक समस्या काफी लोगों को देखी जाती है कि कमर से लेकर पांव की उंगलियों तक एक नस में या जो हड्डी होती है उसमें दर्द होता है काफी ज्यादा, और ये लंबे समय तक ये भी समस्या चलती है और इसका इलाज नहीं मिल पाता है, कई कई बार डॉक्टर को बदलना पड़ता है। तो ये कौन सी समस्या है और इसका कारण क्या होता है?
1: जी,
3: यूजुअली ये स्लिप डिस्क होता है, जिसको आम बोलचाल की भाषा में शैटिका बोलते हैं, और वो डिस्क स्लिप होकर एक पर्टिकुलर नर्व रूट को कंप्रेस करती है और वो पेन नीचे तक ट्रेवल करता है। इसका इलाज आजकल बिल्कुल संभव है, तो प्रॉपर अगर इसको एक्सपर्ट से ओपिनियन लेंगे तो वो आपको बता पाएंगे कि कुछ इंजेक्शन से भी इसका इलाज होता है या फिर मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी से, एंडोस्कोपिक सर्जरी से भी इसका इलाज संभव है।
1: जी डॉक्टर साहब, हड्डियों की जब भी बात होती है तो क्या ये बात सच है कि हड्डियों के स्वास्थ्य की तरफ अगर बचपन से ध्यान ना दिया जाए तो आगे चलकर प्रॉब्लम हो सकती है? तो किस तरह का खान पान बचपन में ही शुरू कर दें?
3: जी अनीता जी, बिल्कुल ठीक बात है। ये हड्डियाँ एक बैंक की तरह हैं और जिनमें इनमें डिपॉजिट केवल एक पर्टिकुलर एज तक, 22, 24, 25 साल तक केवल डिपॉजिट होता है, इसके बाद इसमें कोई भी डिपॉजिट नहीं होता, सब इसके अंदर से निकलता है।
1: जी।
3: तो बचपन का जो खान पान है वो बोन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली कैल्शियम, मिनरल्स, वाइटामिन डी, वाइटामिन B12, तो जितना अच्छा खान पान बचपन में रहेगा उतनी जो बोन स्टॉक है वो बेटर रहेगा, बोन हेल्थ बेटर रहेगी और आगे आपके एक एज बढ़ने के बाद वो आपके काम आएगा।
1: जी, और विटामिन डी की जैसे आपने बात की, तो इसका महत्व सिर्फ हड्डियों के लिए ही नहीं बल्कि शरीर के और भी रोगों से रक्षा करने में माना जाता है, और कैल्शियम का जो अब्जॉर्प्शन है वो सिर्फ विटामिन डी पर निर्भर करता है। तो भारतीयों की एक बड़ी आबादी की अगर हम बात करें तो विटामिन डी की कमी से वो जूझ रहे हैं, क्या कारण है, किस तरह से इसकी पूर्ति हो सकती है नेचुरली?
3: जी नेचुरली अनीता जी, विटामिन डी हम सबको पता है कि केवल सनलाइट से मिलता है, ऑलमोस्ट पूरा कुछ फूड में, कुछ

0: कुछ खान पान में होता है, लेकिन वो बहुत मिनिमम क्वांटिटी में होता है। जो जो मेजर वाइटामिन डी है वो सनलाइट जब हमारे स्किन पर पड़ती है धूप की किरणें, तो उससे वो सिंथेसिस होता है। इंडियंस यूजुअली वाइटामिन डी डेफिशिएंट हैं, कुछ तो जेनेटिक इसके रीजंस हैं, और इसके अलावा एक मेजर रीज़न है कि सन एक्सपोजर हमारा, हम मानते ये हैं कि हमारे यहाँ बहुत धूप है और हम धूप में काम भी करते हैं, लेकिन वो प्रॉपर सन एक्सपोजर नहीं है। स्किन जब तक सन के कॉन्टैक्ट में, सूर्य के किरणों की कॉन्टैक्ट में नहीं आएगी, तब तक वाइटामिन डी नहीं बनेगा। तो जो प्रॉपर सन बाथिंग जिसको बोलते हैं, या वो अगर होगा तो वाइटामिन डी सिंथेसिस होगा। इसलिए यूजुअली इंडियंस में विटामिन डी डेफिशिएंट इंडियंस रहते हैं, और टाइम टू टाइम हम लोगों को सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं।
1: जी, एक श्रोता है हमारे साथ। हेलो जयपुर। हेलो।
2: हेलो, नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: मेरे बच्चा, मेरा बेटा है, उसके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है ना, वो L5 के अंदर S1 में बल्ज है
1: जी।
2: तो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगा कि उसका क्या इलाज है।
1: सर, आपका नाम जानना चाहेंगे हम।
2: मेरा नाम राजेश है
1: जी।
2: मैं अपने बेटे से ही बात कराता हूँ, है ना
1: जी,
2: वो बता देगा। हेलो।
1: हाँ जी, नमस्कार।
3: नमस्कार मैम, नमस्कार डॉक्टर साहब
0: जी। नमस्कार।
3: मेरा नाम सिद्धार्थ है, मैं राजा पार्क जयपुर से बोल रहा हूँ
1: जी। सिद्धार्थ,
3: और मैंने अभी रिसेंटली MRI करवाई है, उसमें L5S1 में डिस्क बल्ज आया है। तो इसका आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगे, फिजियोथेरेपी या ये अपने आप सही हो जाएगा, कुछ मेडिसिन इसकी या ऑपरेशन वगैरह?
0: देखिए, डिस्क बल्ज एक बहुत कॉमन फाइंडिंग है, और ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि ये कितना सिम्टोमेटिक है, ये क्या क्या प्रॉब्लम, इस डिस्क बल्ज आपको क्या क्या प्रॉब्लम कर रहा है। केवल लोकलाइज्ड बैकएक है इसकी वजह से, या कोई रेडिकुलर पेन है, नर्व कंप्रेस हो रही है, कॉर्ड कंप्रेस हो रही है, कोई कैनाल स्टिनोसिस वाले सिम्टम्स हैं, तो इन सब सिम्टम्स के आधार पर इसका ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। और प्राइमरीली कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है, शुरू में 2 महीने 3 महीने पूरा कंजर्वेटिव ट्रायल देने के बाद भी अगर ट्रीटमेंट सफल नहीं हो पाता है या प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ती हैं, तो फिर हम नेक्स्ट लेवल के ट्रीटमेंट पर आगे बढ़ते हैं
1: जी। तो इसके लिए पहले एक विशेषज्ञ से संपर्क कर लें, उनको आप पूरी अपनी रिपोर्ट्स दिखा दें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। श्रोताओं, हेलो जयपुर में आप सुन रहे हैं हमारा हेल्थ सेगमेंट, डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फीको सर्जरी सेंटर हेल्थ इश्यूज़। आज इसमें हम चर्चा कर रहे हैं रीढ़ और कलाई की हड्डी से जुड़ी समस्याओं और उनके उपचार के विषय में। हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञ मेहमान हैं डॉक्टर सचिन गुप्ता, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट। यहाँ एक छोटे से अंतराल के लिए हम रुकते हैं, वापस आकर इस विषय पर चर्चा को जारी रखेंगे। आप बने रहिए आकाशवाणी जयपुर अजमेर के अमीर चैनल के साथ।
4: डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फीको सर्जरी सेंटर, राज्य का एकमात्र स्थान जहां मोतियाबिंद का इलाज फेंटो लेजर सर्जरी द्वारा किया जाता है, अब जयपुर में संभव।
5: उत्तम तकनीक और अनुभवी सर्जन मिलकर देते हैं सफल परिणाम।
4: डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फीको सर्जरी सेंटर, टॉक फाटक, टॉक रोड, गांधीनगर, जयपुर। कॉल 2707580 और 9829017147।

0: 101.2 FM
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से हेलो जयपुर में आप सुन रहे हैं हमारा हेल्थ सेगमेंट डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर हेल्थ इश्यूज। आज इसमें हम चर्चा कर रहे हैं रीढ़ और कलाई की हड्डी से जुड़ी समस्याओं और उनके उपचार के विषय में। हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञ मेहमान हैं डॉक्टर सचिन गुप्ता, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट। डॉक्टर साहब एक श्रोता और हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो जयपुर।
2: हेलो मैम, नमस्कार।
1: नमस्कार
2: साहब को भी नमस्कार।
3: जी नमस्कार
2: सर। मैं कह रहा था कि हमारे घर से है ना जो बाथरूम में मतलब गिर गई थी कमर के बल, तो उसमें दर्द होता है तो उसका 2-3 बार ट्रीटमेंट करा लिया, एक्सरे भी करा लिया, कोई मतलब टूट फाट नहीं हुई। बाकी वो ये बताते हैं डॉक्टर साहब कि मांस फट गया मतलब जी। तो उसके लिए 2-3 बार दवाई ले ली पर आराम नहीं मिल रहा है, और वैसे सीधे खड़े रह के चलती है ना तो वैसे दर्द नहीं होता है, और बाकी नीचे झुक के काम करती है ना तब दर्द होता है
1: जी। आप अपना नाम भी बताइए।
2: नवल किशोर दौसा से बोल रहा हूँ मैं मैम।
1: जी नवल किशोर जी।
3: जी नवल किशोर जी, ये एक यूजुअल बैकएक जैसा मेरे को लग रहा है, और जो झुकने पर बहुत कॉमन है फीमेल्स में, झुक के कोई काम करने पर रीढ़ की हड्डी में दर्द का महसूस होना। तो आप कोई विशेषज्ञ से सलाह लेकर एक प्रॉपर फिजियोथेरेपी सेशन अगर इनका कुछ दिन का कराएंगे तो मुझे लगता है कि लाभ मिलना चाहिए, और फिर भी अगर प्रॉब्लम रहती है तो आगे इसको और इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत रहेगी, जैसे MRI वगैरह कराने की।
1: जी जैसा कि डॉक्टर साहब इन्होंने बोला कि मांस फट गया है, तो ऐसे में क्या होना चाहिए?
3: देखिए ये एक लेमेन टर्म है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी कोई भी होती है या स्ट्रेच हो गया, मस्कुलर पेन जिसको हम बोलते हैं तो उसको मांस फटना बोल देते हैं। तो यूजुअली ये एक रिलेटिव रेस्ट, एक थोड़े से रेस्ट और फिर कुछ फॉलोड बाय सम एक्सरसाइजेज एंड फिजियोथेरेपी से ये यूजुअली ठीक हो जाता है
1: जी। तो डॉक्टर साहब अब प्रोग्राम का समय बिल्कुल समाप्ति की तरफ है। आज आप आकाशवाणी जयपुर के स्टूडियो में पधारे और आपने इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं। लेकिन चलते चलते क्या एक खास मैसेज सभी श्रोताओं के लिए आपका रहेगा, किस तरह से हड्डियों को मजबूत बना के रखा जाए, उन्हें बिल्कुल स्वस्थ रखा जाए?
3: जी देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अपने खान पान का ध्यान रखें, रीढ़ की हड्डी का ध्यान, बिल्कुल ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और ये तभी आपके शरीर को संभालेगी जब आप इसको इसकी केयर करेंगे। तो जिस तरीके से आप किसी भी महंगे गैजेट की, अपने अच्छे मोबाइल की केयर करते हैं, उस पर कवर लगाते हैं, उस पर उसकी उसको साफ़ सुथरा रखते हैं, इसी तरीके से रीढ़ की हड्डी की भी अच्छी केयर करें, अच्छा प्रॉपर न्यूट्रिशन लें, एक्सरसाइजेज करें, स्ट्रेंथ उसकी प्रॉपर रखें, तो ये आपको भी संभाल कर रखेगी
1: जी।
3: थैंक यू
1: सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो श्रोताओं ये थे हमारे साथ डॉक्टर सचिन गुप्ता, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट, जो हमें दे रहे थे रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्याओं और उनके समाधान के विषय में। तो दोस्तों याद रखिए, स्वस्थ रीढ़ और स्वस्थ शरीर ही सक्रिय और खुशहाल जीवन की पहचान है। तो किसी भी समस्या को नज़रअंदाज ना करें, समय पर विशेषज्ञ की सलाह लें और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं। हम आपको बता दें इसके प्रस्तुतकर्ता थे महेंद्र कुमार मीणा, और अब अनीता शर्मा को भी दीजिए इस सेगमेंट से अनुमति। नमस्कार।
4: डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर हेल्थ इश्यूज के प्रायोजक थे डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर, टोंक रोड, टोंक फाटक, गांधीनगर, जयपुर।
5: क्या आप चश्मा हटवाना चाहते हैं? क्या आप बिना टांके, बिना पट्टी के सूक्ष्मतम चीरे द्वारा मोतियाबिंद का सफल इलाज करवाना चाहते हैं और आँखों से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं? तो आइए डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर पर, जहां USA FDA अप्रूव्ड विजुमैक्स फेमेटो सेकंड लेजर द्वारा 5 मिनट में सफलतापूर्वक चश्मा हटाया जाता है।
6: डॉक्टर वीरेंद्र दिल्ली एम्स के प्रख्यात गोल्ड मेडलिस्ट हैं। संपर्क करें डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर, टोंक रोड, टोंक फाटक, गांधीनगर, जयपुर। कॉल करें 9829017147। तकनीक की जानकारी बारीकी से ले तभी इलाज करवाएं, क्योंकि आपकी आंखें हमारे लिए अनमोल हैं।
7: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
8: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
9: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाएं समाधान।
0: कृपया ध्यान दें, पता है जन विश्वास अधिनियम 2026 के द्वारा रेलवे अधिनियम 1989 की कई धाराओं में बदलाव किया गया है।
10: हाँ, अब ट्रेन में बिना टिकट या अनाधिकृत टिकट धूम्रपान जैसे अपराधों पर जुर्माना राशि बढ़ाई गई है।
0: अब रेल परिसर या ट्रेन में धूम्रपान करते पाए जाने पर नए अधिनियम में 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
10: जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसके द्वारा 2000 से 5000 रुपए तक का आर्थिक दंड दिया जा सकता है।
0: ये जन विश्वास अधिनियम ट्रेन में यात्रियों को सुरक्षित, संरक्षित और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने और रेल प्रशासन पर आपका भरोसा कायम रखने के लिए बनाया गया है।
10: उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से हेलो जयपुर आप सुन रहे हैं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है और कल रात से जो रुक रुक कर बारिश हुई, इसने मौसम को और भी खुशनुमा बना दिया। सुबह की ठंडी हवाएं, भीगी हुई सड़कें और मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू मन को एक अलग ही सुकून का एहसास करवा रही हैं और ऐसे में वीकेंड की आहट इस खूबसूरत मौसम को और भी खास बना देती है। पूरे सप्ताह की व्यस्तता के बाद ये वो समय है थोड़ा ठहरने का, अपनों के साथ कुछ पल बिताने का और खुद के लिए भी थोड़ा वक्त निकालने का। और साथ ही आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भी है। ये दिन उन कुशल बुनकरों और शिल्पकारों को समर्पित है जिनके हाथों की कला हमारी संस्कृति, परंपराओं और विरासत को पीढ़ी दर पीढ़ी संजोए हुए है। ऐसे में इस अवसर पर स्थानीय हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को अपनाकर हम उनकी कला और मेहनत को सम्मान दे सकते हैं। तो इस सुहाने मौसम का आनंद लीजिए, अपनों के साथ कुछ खूबसूरत पल बिताइए और अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी याद रखिए, क्योंकि आखिर जिंदगी की असली खूबसूरती इन्हीं छोटे छोटे सुखद पलों में छुपी होती है।

0: कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की आवाज़ों में आपने सुना 1942 अ लव स्टोरी इस फिल्म का गाना। हेलो जयपुर, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से। सवेरे के 10:10 होने को है, कुछ ही देर में आप विश्व दर्पण सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत और सिंगापुर ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी की कार्य योजना के अंतर्गत 8 क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म आधारित नागरिकता पर अंकुश लगाने के लिए 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। न्यू मेक्सिको की अदालत ने मेटा को अपने प्लेटफॉर्मों द्वारा युवाओं को पहुंचाए गए नुकसान की भरपाई के लिए 56.70 करोड़ अमेरिकी डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया। शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका में ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्स खिताब जीता। और अश्मिता चालिहा ने कोरियाई मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत और सिंगापुर ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी की रूपरेखा के अंतर्गत 8 क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भारत सिंगापुर विदेश कार्यालय परामर्श का 19वां दौर कल नई दिल्ली में आयोजित किया गया।
2: बैठक की सह अध्यक्षता भारत के पूर्व विदेशों के प्रभारी सचिव रुदेन्द्र टंडन और सिंगापुर के विदेश मंत्रालय के स्थायी सचिव ल्यूक गोह ने की। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिंगापुर यात्रा के दौरान भारत सिंगापुर संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक उन्नत किया गया। व्यापक रणनीतिक साझेदारी की रूपरेखा पिछले वर्ष सितंबर में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। इस रोडमैप में आर्थिक सहयोग, कौशल विकास, डिजिटल तकनीक, पर्यावरण संरक्षण, संपर्क व्यवस्था और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने की योजना शामिल है। विश्व दर्पण के लिए सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: देश ने उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वावधान में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को इस सफल मिशन पर बधाई दी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने देश की समुद्री सुरक्षा व्यवस्था में प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का आह्वान किया है। नई दिल्ली में दूसरे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश के बढ़ते बंदरगाह नेटवर्क और वैश्विक व्यापार में बढ़ती भूमिका के लिए ऐसे सुरक्षा तंत्रों की आवश्यकता है जो लचीले, एकीकृत और उभरते साइबर तथा भू राजनीतिक खतरों का मुकाबला करने में सक्षम हों। उन्होंने कहा कि सुरक्षा को ध्यान में रखकर सरकार कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
3: देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और उसी के आधारित अगले दिनों पर हम ऐसा एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल ब्यूरो ऑफ नेशनल पोर्ट सिक्योरिटी गठन करेंगे, जिससे जनता की अपेक्षा के मुताबिक हम अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभा पाए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 साल में हम जो तरक्की की है आज दुनिया ने देखी है। पोर्ट्स इंडस्ट्री मैरिटाइम एक्सपर्ट टुगेदर ऑन वन प्लेटफॉर्म।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म नागरिकता को सीमित करने और केवल बच्चे को जन्म देने के उद्देश्य से अमेरिका जाने वाले पर्यटकों पर अंकुश लगाने के लिए 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन अमेरिकी आव्रजन प्रणाली के दुरुपयोगों पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है।
4: व्हाइट हाउस के अनुसार आदेश में विदेशी नागरिकों के उन बच्चों की श्रेणियों की पहचान की गई है जो अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त ऐतिहासिक अपवादों के तहत जन्मजात नागरिकता के पात्र नहीं होंगे, जबकि दूसरा आदेश देश और गृह सुरक्षा विभागों को जन्म पर्यटन को समाप्त

0: टिक नहीं सकता। राष्ट्रपति ट्रंप ने मीडिया से बातचीत में ईरान में किए गए अपने इस महत्वपूर्ण अभियान का बचाव किया और तर्क दिया कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना वैश्विक सुरक्षा के लिए आवश्यक है। अमेरिका ईरान समझौते की संभावना पर श्री ट्रंप ने कहा कि बातचीत जारी है और प्रगति हो रही है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। न्यू मेक्सिको की एक अदालत ने इंस्टाग्राम और फेसबुक की मूल कंपनी मेटा को उनके प्लेटफॉर्म से युवाओं को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 56 करोड़ 70 लाख अमरीकी डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट।
1: ये मार्च में कंपनी द्वारा हारे गए एक ऐतिहासिक मुकदमे का दूसरा चरण है। न्यायाधीश ब्रायन बिटशाइड ने फैसला सुनाया था कि कुल धनराशि में से 42 करोड़ अमेरिकी डॉलर युवाओं के उपचार सेवाओं के लिए उपयोग किए जाएंगे, जबकि शेष राशि अगले 5 वर्षों में जागरूकता और रोकथाम कार्यक्रमों, स्क्रीनिंग सेवाओं और अन्य संबंधित खर्चों के लिए उपयोग की जाएगी। अभियोजकों ने न्यायाधीश से मेटा में मूलभूत बदलाव लागू करने का अनुरोध किया था, जिनका उद्देश्य व्यस्तकारी सुविधाओं पर लगाम लगाना, आयु सत्यापन में सुधार करना और कड़ी निगरानी के माध्यम से बाल यौन शोषण को रोकना था। विश्व दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: चीन में जातीय एकता कानून लागू किए जाने के विरोध में तिब्बती युवा कांग्रेस द्वारा धर्मशाला में शुरू की गई भूख हड़ताल आज 20वें दिन में प्रवेश कर गई। ये विरोध चीन के जातीय एकता कानून के खिलाफ है, जो प्रदर्शनकारियों के अनुसार तिब्बतियों सहित अल्पसंख्यक समुदायों की पहचान और अधिकारों के लिए खतरा है। निर्वासित तिब्बती संसद के 3 सदस्यों ने भी आंदोलन के प्रति एकजुटता व्यक्त करते हुए धर्मशाला में भूख हड़ताल में भाग लिया। 19 जुलाई से तिब्बती युवा कांग्रेस तिब्बतियों की आवाज़ को बुलंद करने और तिब्बत के बारे में सच्चाई को व्यापक अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाने के लिए एक वैश्विक विरोध अभियान चला रही है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इबोला मामलों की संख्या 4000 से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार इबोला के कुल मामलों की संख्या 4053 तक पहुंच गई है, जिसमें 1850 मौतें भी शामिल है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने कहा है कि कांगो में इबोला के प्रकोप से 330 बच्चों की मौत हो गई है। ब्राजील की फेडरल पुलिस ने 2024 में हुई विमान दुर्घटना के मामले में वोपास के 16 मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों पर औपचारिक रूप से आरोप लगाए हैं। इस हादसे में विमान में सवार सभी 62 लोगों की मौत हो गई थी। जांचकर्ताओं ने एयरलाइन पर गड़बड़ी, लापरवाही और जरूरी काम न करने का आरोप लगाया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्स का खिताब जीत लिया है। 20 वर्षीय प्रज्ञानंदा ने अंतिम दौर से पहले वाले दौर में उज़्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर जावोखिर सिंदोरोव के साथ ड्रॉ खेलकर चैंपियनशिप अपने नाम की। उन्होंने टूर्नामेंट में 35 में से 23 अंक हासिल किए। प्रज्ञानंदा ने 5 दिवसीय प्रतियोगिता में शुरू से अंत तक बढ़त बनाए रखी। अश्मिता चालीहा कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। अश्मिता ने क्वार्टर फाइनल में जापान की हिना अकेची को 20-22, 21-15, 21-19 से हराया। एक अन्य क्वार्टर फाइनल में तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से जारी है। पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल में पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा की जोड़ी का मुकाबला मलेशिया की जोड़ी से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और सिंगापुर ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी कार्य योजना के अंतर्गत 8 क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म आधारित नागरिकता पर अंकुश लगाने के लिए 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। न्यू मेक्सिको की अदालत ने मेटा को अपने प्लेटफॉर्मों द्वारा युवाओं को पहुंचाए गए नुकसान की भरपाई के लिए 56 करोड़ 70 लाख अमरीकी डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया। शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका में ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्स खिताब जीता और अश्मिता चालीहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलो हर्ट्ज़, FM बैंड 101.2 मेगा

बर्ड्स, इसके साथ ही दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। जयपुर अजमेर के अलावा आप हमारे कार्यक्रम आकाशवाणी डूंगरपुर नाथद्वारा, करौली, भरतपुर, झुंझुनू, अनूपगढ़ और कोटपुतली केंद्रों से भी सुन रहे हैं। साथ ही आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट newsonair.com पर भी लाइव सुन सकते हैं।

0: 101.2 FM।
1: हेलो जयपुर में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 7 अगस्त और आज बर्थडे है भारतीय संगीत जगत की उस मधुर आवाज का जिन्होंने अपनी गायकी से न जाने कितने गीतों को अमर बना दिया। एक ऐसी आवाज जिसमें शास्त्रीय संगीत की गहराई है, भक्ति का भाव है और फिल्मी गीतों की मिठास भी। हम बात कर रहे हैं सुरों के साधक पद्मश्री सम्मानित गायक सुरेश वाडकर जी की। अगले कुछ मिनटों में हम जानेंगे उनकी इंस्पायरिंग म्यूजिकल जर्नी के बारे में, बचपन से लेकर बॉलीवुड तक का सफर, अनफॉरगेटेबल सॉन्ग्स, अवार्ड्स और कुछ बेहद इंटरेस्टिंग बातें। तो चलिए शुरू करते हैं सुरों के इस खूबसूरत से सफर को।

दोस्तों, कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो सीधे रूह को छू जाती हैं, और सुरेश वाडकर जी की आवाज़ भी कुछ ऐसी ही है। हेलो जयपुर, आप सुन रहे हैं 101.2 एफएम पर। आज गायक सुरेश वाडकर साहब का जन्मदिन है, और हेलो जयपुर में आज हम जान रहे हैं उनकी ज़िंदगी और गायकी के खूबसूरत सफ़र के बारे में, और आपको सुनवा रहे हैं उन्हीं के गाए कुछ चुनिंदा नगमे। दोस्तों, 7 अगस्त 1955 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जन्म हुआ सुरेश वाडकर साहब का,

और बचपन से ही इन्हें संगीत के प्रति बहुत लगाव था और परिवार ने भी इसमें पूरा सहयोग दिया। बहुत कम उम्र में उन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लेनी शुरू कर दी। उनके गुरु पंडित जियालाल वसंत ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें संगीत की गहराइयों से परिचित कराया और महज 13 साल की उम्र में उन्होंने प्रयाग संगीत समिति की प्रतिष्ठित प्रभाकर परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। और ये उपलब्धि इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है कि इसके बाद व्यक्ति संगीत का शिक्षक भी बन सकता है। दोस्तों, संगीत के प्रति उनकी लगन का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने आगे चलकर मुंबई के आर्य विद्या मंदिर में संगीत शिक्षक के रूप में भी काम किया। यानी पहले वो संगीत के शिक्षक बने और फिर देश के लोकप्रिय प्लेबैक सिंगर।

0: सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर की आवाजों में आपने सुना वारिस फिल्म का गाना।
1: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
2: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल
3: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाएं समाधान।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से हेलो जयपुर आप सुन रहे हैं और हेलो जयपुर में आज हम बात कर रहे हैं गायक सुरेश वाडकर साहब की उनके जन्मदिन पर। 200 साल 1976 सुरेश वाडकर के जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उन्होंने प्रतिष्ठित सुर सिंगार प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और बेस्ट मेल सिंगर का प्राइज भी जीता और इस कॉम्पिटिशन में जज के रूप में शामिल थे संगीतकार जयदेव और रविन्द्र जैन जैसे दिग्गज। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर संगीतकारों ने उन्हें फिल्मों में गाने के अवसर देने शुरू कर दिए। इसके बाद 1977 की फिल्म पहेली के गीत वृष्टि पड़े टापू टुपुर ने उन्हें पहचान दिलाई। धीरे धीरे उनकी आवाज़ राज कपूर, ऋषि कपूर और कई बड़े सितारों की पहचान बन गई। शास्त्रीय संगीत की मजबूत नींव होने के कारण उनकी गायकी में एक ही नज़ाकत और प्योरिटी दोनों साथ सुनाई देती हैं।
1: सा रे गा मा, तुम भी गाओ।

0: अच्छा तुम ये तो गाओ,
1: तेरे नैना
2: तेरे नैना तेरे।
0: तुम ऐसा करो, ये गाओ।

1980 और 1990 का दशक सुरेश वाडकर के लिए बेहद सफल रहा। ऐ जिंदगी गले लगा ले, सीने में जलन, तुमसे मिलके ऐसा लगा मैं हूँ प्रेम रोगी, मेघा रे मेघा और चप्पा चप्पा चरखा चले जैसे गाने आज भी सुनना अच्छा लगता है। उनकी आवाज़ की सबसे बड़ी खूबी ये रही कि वो भावनाओं को बेहद सहजता से व्यक्त कर देती थी। रोमांटिक गाने हो, दर्द भरे नगमे हो या फिर भक्ति संगीत, हर एक शैली में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। हिंदी के साथ साथ मराठी, भोजपुरी, उड़िया और कोंकणी में भी उन्होंने गाने गाए।

0: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
1: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
2: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाएं समाधान।
3: कृपया ध्यान दें, पता है जन विश्वास अधिनियम 2026 के द्वारा रेलवे अधिनियम 1989 की कई धाराओं में बदलाव किया गया है।
4: हाँ, अब ट्रेन में बिना टिकट या अनाधिकृत टिकट धूम्रपान जैसे अपराधों पर जुर्माना राशि बढ़ाई गई है।
3: अब रेल परिसर या ट्रेन में धूम्रपान करते पाए जाने पर नए अधिनियम में 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
4: जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसके द्वारा 2000 से 5000 रुपए तक का आर्थिक दंड दिया जा सकता है।
3: ये जन विश्वास अधिनियम ट्रेन में यात्रियों को सुरक्षित रक्षित और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने और रेल प्रशासन पर आपका भरोसा कायम रखने के लिए बनाया गया है।
4: उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से हेलो जयपुर आप सुन रहे हैं अनीता शर्मा के साथ। दोस्तों आज हेलो जयपुर में गायक सुरेश वाडकर साहब के जन्मदिन पर जान रहे हैं उनकी जिंदगी और गायकी के खूबसूरत सफ़र के बारे में और साथ ही आपको सुनवा रहे हैं उन्हीं के गाए कुछ चुनिंदा नगमे। दोस्तों सुरेश वाडकर की संगीत साधना को देश भर में सम्मान मिला है। उन्हें मराठी फिल्मी सिंधुताई सपकाल के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का सम्मान प्राप्त हुआ। इसके अलावा उन्हें 2018 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और भारत सरकार ने उन्हें उनके कला के क्षेत्र में योगदान को देखते हुए पद्मश्री से सम्मानित किया। उन्हें लता मंगेशकर पुरस्कार भी प्रदान किया गया और ये सम्मान सब उनकी केवल गायकी के लिए ही नहीं बल्कि भारतीय संगीत परंपरा को आगे बढ़ाने में उनके योगदान के लिए भी हैं।

दोस्तों, आज भी सुरेश वाडकर केवल गायक ही नहीं बल्कि संगीत के गुरु के रूप में भी नई पीढ़ी को प्रशिक्षित कर रहे हैं और उनकी म्यूजिक एकेडमी के माध्यम से वो देश विदेश के हजारों स्टूडेंट्स को म्यूजिक सिखा रहे हैं। और उन्होंने हमेशा ये माना कि संगीत केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि साधना और संस्कृति का भी माध्यम है। तो सुरों की इस अनमोल विरासत को आगे बढ़ाने वाले, अपनी मधुर और आत्मीय आवाज से करोड़ों दिलों को छूने वाले सुरेश वाडकर साहब को जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमिर चैनल आप सुन रहे हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ों में गुलामी फिल्म का गाना।

लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ों में आप सुन रहे थे गुलामी फिल्म का गाना। इसके साथ ही फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। साथ ही हेलो जयपुर से भी हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे हेलो जयपुर, आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। सवेरे के 11:10 होने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे 12वें हथकरघा दिवस पर माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम का सजीव प्रसारण। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: extend our heartiest greetings on the 12th National Handloom Day. The Ministry of Textiles, Government of India, is celebrating the 12th National Handloom Day today with the national function at the Rashtrapati Bhavan Cultural Centre, New Delhi. The function celebrates India's rich handloom heritage and recognizes the contribution of the handloom weaving community to the nation's cultural and economic development. The Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, will grace the occasion as the chief guest. The function will also be attended by the Union Minister of Textiles, Sri Giriraj Singh, Union Minister of State for Textiles, Sri Pavitra Margarita, Srimati Neelam Shami Rao, Secretary Textiles, and Dr. M. Bina, Development Commissioner, Handlooms. The celebrations will also be attended by Sant Kabir Handloom Awardees and National Handloom Awardees and their family members. Handloom weavers from across the country, members of the Award Selection Committee, eminent personalities associated with the handloom sector, senior government officials, media representatives, and other distinguished guests. A major highlight of the celebrations is the presentation of the Sant Kabir Handloom Awards and the National Handloom Awards for the year 2025. A total of 22 awards comprising 3 Sant Kabir Handloom Awards and 19 National Handloom Awards will be conferred upon outstanding handloom weavers for their outstanding craftsmanship, innovation and contribution to the preservation of India's handloom traditions. The function will also witness the release of 4 commemorative postage stamps celebrating India's rich and diverse handloom weaving traditions. 2 publications will also be unveiled by the Honorable President: Earth, Root, Thread, All Dyed Handloom Textiles of Central India, and the Handloom Awards Book 2025 will be unveiled during the function. An exhibition showcasing award-winning handloom products has been organized on the sidelines of the events. Visitors here will have the opportunity to witness live demonstrations of traditional kani weaving and wall-hanging weaving, providing a glimpse into the diversity and craftsmanship of India's handloom traditions.
1: Mananiya Rashtrapati Srimati Draupadi Murmu, aaj राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के दौरान प्रतिष्ठित हथकरघा पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस समारोह में केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह, वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति, हथकरघा उद्योग के प्रतिनिधि, मास्टर बुनकर, डिजाइनर, निर्यातक, कारीगर और अन्य विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे। भारत की समृद्ध हथकरघा परंपराओं के संरक्षण, संवर्धन और विकास में असाधारण योगदान के लिए कुल 22 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा, जिनमें 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार विजेता और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार विजेता शामिल है। वस्त्र मंत्रालय ने संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा की है। ये पुरस्कार हथकरघा क्षेत्र में बुनाई, नवाचार, डिजाइन विकास, विपणन, स्टार्टअप उद्योगों और उत्पादक कंपनियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देते हैं। ये पुरस्कार राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के हथकरघा विपणन सहायता घटक के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं और हथकरघा क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय मान्यता का प्रतिनिधित्व करते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के दौरान ये पुरस्कार उन व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किए जा रहे हैं जिन्होंने भारत की हथकरघा विकास को मजबूत करने,

0: पारंपरिक कौशल को संरक्षित करने हेतु आधुनिक तकनीकों को अपनाने, उत्पाद विविधीकरण, डिजाइन नवाचार और बुनकर समुदायों के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान को मान्यता देते हैं। अगर बात करें संत कबीर हथकरघा पुरस्कारों की, तो ये उन हथकरघा बुनकरों के लिए देश का सर्वोच्च सम्मान है जिन्होंने असाधारण शिल्प कौशल और भारत की बुनाई परंपराओं को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए आजीवन समर्पण दिखाया है। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का चयन असाधारण तकनीकी कौशल, नवाचार, इस क्षेत्र में निरंतर योगदान, पारंपरिक बुनाई के तरीकों को बढ़ावा देने, कारीगरों को मार्गदर्शन देने और समुदाय के विकास के लिए प्रयासों के आधार पर किया जाता है। ये जो संत कबीर हथकरघा पुरस्कार है, इसमें शामिल है एक सोने का सिक्का, तामपत्र, शॉल, प्रमाण पत्र और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार। राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार उन हथकरघा बुनकरों और हितकारकों को सम्मानित करता है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट रचनात्मक गुणवत्ता, नवाचार और उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया है। ये पुरस्कार कारीगरों और संस्थानों को भारत की विविध हथकरघा परंपराओं को संरक्षित करते हुए शिल्प कौशल, उत्पाद विकास और बाजार में पहुंचने वाले मानकों को लगातार बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। बुराई श्रेणी के पुरस्कार विजेताओं का चयन जोनल, मुख्यालय और केंद्रीय स्तर की चयन समितियों के माध्यम से एक कठोर बहुस्तरीय मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है और इन समितियों में अनुभवी पेशेवर, तकनीकी विशेषज्ञ, वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं जो निर्धारित पात्रता मानदंडों और मूल्यांकन मापदंडों के आधार पर नामांकनों का आलंकन करते हैं। डिजाइन विकास, विपणन, स्टार्टअप उद्यमों और उत्पादक कंपनियों से संबंधित श्रेणियों के लिए नामांकन को अंतिम स्वीकृति के लिए मुख्यालय समिति और केंद्रीय स्तर की समिति द्वारा एक व्यवस्थापित मूल्यांकन के द्वारा गुजरना पड़ता है। थोड़ी देर में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ये 12वें राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार का वितरण करेंगी।
1: Yes, you are absolutely right. The National Handloom Day is observed every year on the 7th of August to commemorate the Swadeshi movement, which launched on the 7th of August 1905, that gave renewed impetus to indigenous industries and India's handloom sector. The observance recognizes the enduring contribution of handloom weavers to the country's cultural heritage and socio-economic development. Since its inception in 2015, National Handloom Day has served as an occasion to celebrate the artistry, skill and dedication of India's handloom weavers while reaffirming the government's commitment to the preservation, promotion and sustainable development of the handloom sector. India's handloom sector continues to be one of the country's largest source of sustainable rural employment, supporting livelihoods of more than 35 lakh persons, with women constituting over 70% of the workforce. Besides its economic significance, the sector remains a custodian of India's rich textile traditions and an important contributor to environmentally sustainable production practices. In the 136th episode of Mann Ki Baat on the 26th of July, the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi had said that on the 7th of August, our country will celebrate National Handloom Day. On this occasion, quote the Prime Minister, "We celebrate the skills and creativity of our weaver brothers and sisters. These friends of ours are carrying forward traditions that have been passed down through generations," unquote, the Honorable Prime Minister. Every handloom garment tells the story of a specific region or community and the countless people associated with it. These are people who are proudly dedicated to preserving India's cultural heritage. The Honorable Prime Minister has urged every citizen to honor our weaver friends by encouraging handloom crafts. This will further strengthen the spirit of being vocal for local. Since 2015, the way handloom has been promoted in the country, it has improved the lives of a large number of people. The saris of Pochampalli and from Kutham

0: Bompalli and Kutch, these saris have enriched many individuals and touched many groups, infusing new energy and identified into our glorious handloom traditions. These are carrying forward the beautiful tradition, while others are engaging women weavers to create wool products. People are preserving their traditional arts and providing employment to our sisters. And this also brings to mind that our handlooms indeed are a rich tapestry of what India has to offer to the world. The Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, in just a short while from now, will present the National Handloom Awards and the Sant Kabir Handloom Award to the winners of the National Handloom Awards 2025 at the Rashtrapati Bhavan Cultural Center.
1: Mananiya Rashtrapati Srimati Draupadi Murmu, 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र सभागार में ये हथकरघा पुरस्कार देंगी। इसमें शामिल है संत कबीर हथकरघा पुरस्कार, राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार, कमला देवी चट्टोपाध्याय हथकरघा पुरस्कार, हथकरघा उत्पादों के डिजाइन विकास स्टार्टअप उद्यम और प्रोड्यूसर कंपनी और विपणन हेतु राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार वर्ष 2025। आपको बता दें, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1905 में स्वदेशी आंदोलन को नई दिशा मिली थी। विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने के संकल्प ने भारतीय हथकरघा उद्योग को नई ऊर्जा प्रदान की। उसी ऐतिहासिक विरासत के सम्मान में वर्ष 2015 से हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र का वातावरण बहुत ही गर्मीमय और अत्यंत भव्य दिखाई दे रहा है। सभागार को देश के विभिन्न राज्यों की पारंपरिक हथकरघा कलाकृतियों, रंग बिरंगे वस्त्रों और पुष्प सज्जा से सुसज्जित किया गया है। देशभर से आए बुनकर, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता, वस्त्र मंत्रालय के अधिकारी, डिजाइन विशेषज्ञ और अनेक विशिष्ट अतिथि इस समारोह में उपस्थित है। भारत की पहचान उसकी विविधता में निहित है और यही विविधता हमारे हथकरघा उद्योग में भी दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश की बनारसी साड़ी विश्वभर में अपनी महीन जरी बुनाई के कारण प्रसिद्ध है। तमिलनाडु की कांजीवरम साड़ियां अपनी शुद्ध रेशमी बुनाई के कारण एक विशेष स्थान रखती हैं। वहीं मध्य प्रदेश की चंदेरी और महेश्वरी साड़ियां अपनी हल्की बनावट और उत्कृष्ट डिजाइन के लिए जानी जाती है। तेलंगाना की पोचमपल्ली इकट, गुजरात का पटोला, पश्चिम बंगाल की बालूचरी और जामदानी, असम का मूंगा रेशम और कश्मीर का पश्मीना, ये सभी भारतीय बुनकर की अद्भुत कला के जीवंत उदाहरण है। हथकरघा उद्योग भारत में कृषि के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने वाले सबसे बड़े पारंपरिक क्षेत्रों में से एक है। देश भर में लाखों परिवार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस उद्योग से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि देश भर के सभी जो हमारे महिलाएं हैं, वो कताई, रंगाई, बुनाई, डिजाइनिंग और विपणन, हर स्तर पर महिलाओं का योगदान इस क्षेत्र में दिखाई देता है। वहीं भारत का वस्त्र मंत्रालय हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रहा है। राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम, बुनकर सेवा केंद्र, डिजाइन विकास, कौशल उन्नयन और डिजिटल विपणन तथा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से बुनकरों को नई संभावनाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इंडिया हैंडलूम ब्रांड जैसी पहल भारतीय हथकरघा उत्पादों की गुणवत्ता और प्रमाणिकता का प्रतीक बन चुकी है। थोड़ी देर में माननीय राष्ट्रपति 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में ये पुरस्कार प्रदान करेंगी।
0: Yes, you are absolutely right. And today, the Honorable President of India will confer the Sant Kabir Handloom Awards 2025 to two awardees, the Komala Devi Chattopadhyay Sant Kabir Handloom Award 2025 to one awardee, and National Handloom Awards 2025 to 12 awardees, the Komala Devi Chattopadhyay National Handloom Award 2025 to two awardees, the National Handloom Award for Design Development for the year 2025 to two awardees, the National Handloom Award for Marketing of Handloom Products for the year 2025 to two awardees, and the National Handloom Award for Startup or Producer Company for the year 2025 to one awardee. And it is indeed a proud moment for them. And these awardees will also interact with the Honorable President. And in just a short while from now, we shall be taking you over to the Rashtrapati Bhavan Cultural Center, where the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, will confer the Sant Kabir Handloom Awards 2025 and the National Handloom Award 2025. We take you over to Rashtrapati Bhavan Cultural Center.
2: Namaskar, Maninye Rashtrapati Ji, Evam Manch Par Biraje Vishisht Atithigan. Aaj 12ve Rashtriya Hatkarga Divas Samaroh ka Shubharam Hum Sarvapratham Deep Prajwalan ke Saath Karenge. मैं माननीय राष्ट्रपति जी से विनम्रता पूर्वक आग्रह करती हूं कि वे दीप प्रज्वलित कर इस समारोह का शुभारंभ करें एवं मंच पर विराजे सभी माननीय अतिथिगण, वस्त्र मंत्री जी, आदरणीय विदेश एवं वस्त्र राज्य मंत्री जी, वस्त्र सचिव एवं विकास आयुक्त हथकरघा से भी अनुरोध करती हूं कि वे कृपया दीप प्रज्वलन में शामिल हों।

0: धन्यवाद। और अब इस समारोह का आविर्भाव करते हुए मैं सर्वप्रथम श्रीमती नीलम शमी राव, सचिव वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार से अनुरोध करती हूं कि वे कृपया अपना स्वागत भाषण दें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए।
1: माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेक्सटाइल्स एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, डिस्टिंग्विश्ड अवॉर्डीज, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, मेंबर्स ऑफ द हैंडलूम फ्रेटर्निटी, इंडस्ट्री लीडर्स, डेवलपमेंट पार्टनर्स, देवियों और सज्जनों, मैं इस 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर माननीय राष्ट्रपति जी का स्वागत करती हूं। मैं स्वागत करती हूं देश के सभी बुनकर भाइयों और बहनों का। इट इज अ प्रिविलेज टू जॉइन यू ऑल in celebrating the 12th National Handloom Day, an occasion that honors the extraordinary contribution of India's weaving community and reaffirms nation's collective commitment to strengthen the spirit of Swadeshi. The handloom sector, a custodian of our civilizational heritage, Grameen रोजगार का साधन, महिलाओं के आगे रखे हुए डेवलपमेंट का सूत्रधार और सस्टेनेबल प्रोडक्शन की धुरी, यह 35 लाख वीवर्स और उससे जुड़े हुए लोगों को सपोर्ट करता है। मंत्रालय अपनी एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ में हैंडलूम डेवलपमेंट की दुई पक्षीय या दो तरीके की ऑब्जेक्टिव्स पर काम करता है, जहां पर प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशन के साथ साथ कॉम्पिटिटिव, रेजिलियंट और फ्यूचर रेडी हैंडलूम इकोसिस्टम की भी हम बातचीत करते हैं। नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम और रॉ मटेरियल सप्लाई स्कीम के माध्यम से हम लाखों बुनकरों
2: कब्स। हेलो हेलो, देख रहे हो,
3: आपको बता दें राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक गेन सभागार में 12वें राष्ट्रीय हैंडलूम पुरस्कार दिए जा रहे हैं।
1: 1.5 लाख वीवर्स हैव बीन ऑनबोर्डेड ऑन टू द इंडिया हैंडमेड ई मार्केटप्लेस। हैंडलूम हार्ट्स, कॉटेज, कुंज have been repositioned as a professionally curated year-round platforms to reach out to the consumers and bring the best of handlooms and handicrafts to the world. The formation of 200 handloom producer companies across the country has enabled weavers to work together professionally, access markets more effectively and achieve economies of scale. वीव द फ्यूचर के तहत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड डिजाइन टूल्स, उनके द्वारा बनाए गए ट्रेडिशनल मोटिव्स को रीइमेजिन करने की चेष्टा और ग्लोबल बाजार के अनुरूप तैयार किए गए डिजाइंस, वाइल डिजिटल कैटलॉगिंग एंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आर कनेक्टिंग लूम्स इन रिमोट विलेजेस डायरेक्टली टू कस्टमर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। QR बेस्ड ऑथेंटिकेशन would provide traceability, ensuring that the story, skill and heritage behind each weave reaches with complete transparency and trust. Institutional partnerships remain essential to this journey. Initiatives like Weave the Future are positioning India's handloom tradition as a global leader in sustainability, championing circularity, responsible production, innovative designs, and the slow fashion. Our collaboration with organizations such as UN Women, academic institutions like IITs, design schools, NIFT, and research bodies has enabled new approaches. The growing recognition of more than 100 geographical indicators tagged handloom products has also provided larger, distinct, and unique identity. In the vision of Viksit Bharat 2047, the handloom sector stands as a shining tradition and progress, with technology as an enabler and weavers at the heart of journey. It is building a future where this legacy of handloom leads the world. Aaj is Rashtriya Hatkarga Divas par, main aap sabhi ko apna sincere appreciation deti hu, rajya sarkaron ko bhi, implementing agencies ko bhi, development partners aur industry stakeholders ko bhi, par sabse zyada un bunkar behnon aur bhaiyon ko jinke bune hue taane baano se hamara jeevan rangeen jeevant aur ek memory ke sath juda rehta hai. I once again welcome the honorable president madam and everybody on this occasion of the 12th handloom day. Thank you. Jai Hind.
0: Thank you ma'am for this warm welcome address. अब मैं भारत सरकार के माननीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी से निवेदन करती हूं कि वे माननीय राष्ट्रपति महोदय का स्वागत एवं सम्मान करें. I'll request the honorable minister श्री गिरिराज सिंह to kindly felicitate the honorable president.
3: और अब केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह माननीय राष्ट्रपति का शॉल पहनाकर सम्मान कर रहे हैं. तालियों के साथ सबने उसका अभिवादन किया.
0: धन्यवाद आदरणीय मंत्री जी. और अब हम बढ़ते हैं आज के समारोह के इस महत्वपूर्ण भाग पर, जो है संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और वर्ष 2025 के राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कारों की ओर. ये प्रतिष्ठित पुरस्कार उन कुशल बुनकरों और कारीगरों को सम्मानित करते हैं जिनकी लगन, इन्वोकेशन और कलात्मकता ने हमारी राष्ट्र की हथकरघा विरासत को अत्यंत समृद्ध बनाया है. मैं माननीय राष्ट्रपति जी से निवेदन करती हूं कि वे संत कबीर हथकरघा पुरस्कार, जिसमें 3 पुरस्कार जिसमें पदक और ताम्रपत्र शामिल है, और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार, ये कुल 21 पुरस्कार हैं जिसमें ताम्रपत्र शामिल है, इनके विजेताओं को अपने कर कमलों द्वारा सम्मानित करें.
3: और अब 12वें राष्ट्रीय
0: सर्वप्रथम शुरुआत करेंगे संत कबीर हथकरघा पुरस्कार 2025 के साथ.
3: माननीय राष्ट्रपति
0: बुनकर वर्ग से आ रहे हैं ओडिशा से श्री राम मेहर, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए. आपके उत्पाद का नाम है विजित पार खादी साड़ी. मेडल और ताम्रपत्र के साथ संत कबीर हथकरघा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जा रहा है श्री राम मेहर. हमारे अगले विजेता हैं बुनाई वर्ग से ही असम से आई श्रीमती रुनिमा चेतिया चौधरी. आपका विशेष उत्पाद है मूंगा सिल्क साड़ी.

0: हमारे अगले विजेता हैं उत्तर प्रदेश से बुनाई वर्ग से ही जनाब शाह मोहम्मद अंसारी, आपका विशेष उत्पाद जरबख्त श्वेतांबरी अवध जामदानी साड़ी। अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 की ओर। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बुनाई वर्ग के लिए ही तमिलनाडु राज्य से आए अन्नामलाई मारिमुतो, आपका विशेष उत्पाद है कांचीपुरम रेशमी साड़ी और ये जॉइंट अवार्ड है। और इसी जॉइंट अवार्ड के दूसरे विजेता हैं कुमारन बलरामन, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, आपका भी विशेष उत्पाद कांचीपुरम रेशमी साड़ी। हमारे अगले विजेता बुनाई वर्ग से ही तेलंगाना से आए श्री गंजी वेंकटेश, आपका विशेष उत्पाद इक्कत साड़ी। बुनाई के लिए ही अगले विजेता आंध्र प्रदेश से श्री मरकला नटराज, जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए, कॉटन टसर हाफ और हाफ जामदानी साड़ी, आपका विशेष उत्पाद। अगले विजेता उत्तर प्रदेश से बुनाई के लिए जनाब नसीम अंसारी, आपका विशेष उत्पाद इश्कत गुलदस्ता जामदानी साड़ी। जम्मू और कश्मीर से हमारे अगले विजेता बुनाई वर्ग से ही ये भी एक जॉइंट अवार्ड है, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए जनाब फयाज अहमद वानी, आपका विशेष उत्पाद चांददार कानी शॉल। और इसी जॉइंट अवार्ड के दूसरे विजेता जनाब मंजूर अहमद हजाम, हमारे अगले विजेता हैं मध्य प्रदेश से बुनाई के लिए श्री कमल गौड़, आपका विशेष उत्पाद महेश्वरी साड़ी। पश्चिम बंगाल से आए हमारे अगले विजेता हैं श्री अभिनव बसक, फॉर 500 काउंट मजलिन खादी जामदानी साड़ी।
1: आपको बता दें राष्ट्रपति भवन के सभागार के सांस्कृतिक केंद्र में इस वक्त राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 का वितरण किया जा रहा है माननीय राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू के कर कमलों द्वारा।
2: Yes, you are absolutely right, and the Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu, has already conferred the Sant Kabir Handloom Award to two awardees, Shri Ram Meher from Odisha for weaving, and the handloom product was Bichitpar Khadi Sari, and to Shri Shah Mohammad Ansari of Uttar Pradesh on the category Languishing Weaves, and the product was Zarbaft Shwetambari

0: शिव जामदानी साड़ी, दी कमला देवी चट्टोपाध्याय संत कबीर हैंडलूम अवार्ड 2025 वाज कन्फर्ड अपॉन श्रीमती रुनीमा चेटिया चौधरी ऑफ असम for the category weaving, and her product was natural dyed muga silk sari. The National Handloom Awards 2025 are being conferred upon 12 awardees. Sri Annamalai Marimuthu of Tamil Nadu for weaving the Kanchipuram Korvai silk sari, and this award jointly was also conferred upon Sri Kumaran Balaraman. Sri Ganji Venkatesh of Telangana got the National Handloom Award for Ikat Sari. Sri Murukala Nataraju of Andhra Pradesh for his product Cotton Tasar Half and Half Jamdani Sari. Sri Naseem Ansari of Uttar Pradesh for the Ikat Guldasta Jamdani Sari. Sri Manzoor Ahmed Hajam and Sri Fayyaz Ahmed Wani of Jammu and Kashmir for the Chand Dar Kani Shawl, and Sri Kamal Gaud of Madhya Pradesh for the Maheshwari Sari. Sri Abhinav Boshak of West Bengal for the Khadi Muslin Jamdani Sari. Sri Prafullo Kumar Sahu of Odisha for the Jagat Singhpur Sari. Sri Bariga Ram of Rajasthan, a young weaver, for the Pattu Sari. And Sri Vankar Keshabhai from Uttar Pradesh for the Tangalia Dupatta. And the Honorable President is conferring the various awards to the awardees on the National Handloom Day 2025. And she is conferring the National Handloom Awards 2025.
1: Marketing training se hi agle vijeta hain Tamil Nadu se Messrs. 31 Kovilwadi Hatkarga Bunkar Sahkari Samiti. और आज का आखिरी पुरस्कार असम से स्टार्टअप उद्यम यानी निर्माता कंपनी के लिए मेसर्स मार्वेला एसोसिएट्स। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट कंक्लूड्स आवर अवार्ड्स प्रेजेंटेशन। विद दैट वी कंक्लूड द अवार्ड्स लिस्ट। आपके उत्कृष्ट कार्य संपूर्ण हथकरघा समुदाय और राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सभी पुरस्कार विजेताओं को हमारी हार्दिक बधाई। आज हम मध्य भारत के आले से रंगे हथकरघा वस्त्र नामक एक विशेष कॉफी टेबल बुक का अनावरण भी यहां पर होने जा रहा है। इसका शीर्षक है धरती यानी अर्थ, जड़ यानी रूट्स और धागा यानी थ्रेड। मैं माननीय राष्ट्रपति जी से निवेदन करती हूं कि वे अपने कर कमलों द्वारा इस कॉफी टेबल बुक का अनावरण करें।

0: धन्यवाद। ये प्रकाशन हमारे हथकरघा कारीगरों के कौशल, रचनात्मकता और दृढ़ता के लिए एक स्थायी श्रद्धांजलि के रूप में कार्य करेगा। और अब हम हथकरघा पर आधारित चार स्मारक डाक टिकटों के विमोचन की ओर अग्रसर हैं। इसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं श्री जितेंद्र गुप्ता, महानिदेशक डाक सेवाएं। आपसे अनुरोध है, कृपया मंच पर आएं और माननीय राष्ट्रपति जी को हथकरघा पर जारी स्मारक डाक टिकट की प्रथम एल्बम विमोचन हेतु भेंट करें।
1: And the Honorable President of India is being presented with this special commemorative postage stamps, and the Honorable President is releasing these commemorative postal stamps, which have been unveiled by the Department of Post, Government of India. These are all rupees 5 postal stamps, which depict the rich heritage of India's handlooms.

0: is a proud moment for all our citizens who are involved with the handloom sector. And the Honorable President has also released two publications. The first one, Earth, Root, Thread, Al-Dyed Handloom Textiles of Central India, and another coffee table book, the Handloom Awards Book 2025. And as we mentioned today, that the Honorable President of India presented Sant Kabir Handloom Awards 2025 to two awardees from Odisha and Uttar Pradesh, the Kamala Devi Chattopadhyay Sant Kabir Handloom Award 2025 to Srimati Runima Chetia Chaudhary.
1: All right,
0: Assam.
1: Time to get one NRI task done.
0: Weaving. And
1: you thought I'm going out?
0: There were 12 awardees for the National Handloom Award 2025 from Tamil Nadu, which went jointly to Sri Annamalai Marimuthu and Sri Kumaran Balaraman for their Kanchipuram Kurvai silk sari. Sri Ganchi Venkatesh of Telangana bagged the National Handloom Award 2025 for the Ikat Sari. Sri Murakala Nataraju of Andhra Pradesh got the Katan Tushar half and half Jamadani Sari. Sri Naseem Ansari of Uttar Pradesh for the Ikat Guldasta Jamadani Sari.
2: And
0: we have the Union Minister of State for Textiles, Sri Pavitra Margarita.
2: पद तक आपकी प्रेरणादायी यात्रा आपकी सादगी संवेदनशीलता और जनसभा के प्रति समर्पण 140 करोड़ देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। As we gather here today, we remember 7th of August 1905 when the Swadeshi movement became a symbol of India's resolve for self-reliance. More than a century later, under the visionary leadership of Paramadriniya Pradhan Mantri Sri Narendra Modi Ji, that spirit continues through the vision of Atmanirbhar Bharat, vocal for local and local for global, creating new opportunities for our weavers and artisans. Maniya Rashtrapati Ji, pichle vars Rashtriya Hast Shilp Puraskar Samaroh ke apne sambodhan mein aapne GI Tech ke mahatva par bhi vishesh bal diya tha aur adhik se adhik paramparik utpadon ko GI pehchan dilane ka ahvan kiya tha. Isi disha mein aage badhte hue do din pehle hi GI and Beyond 2.0 summit ka safal ayojan kiya gaya jisne GI ecosystem ko aur majbut banane ke bhi disha mein mahatvapurna kadam badhaya hai. साथ ही यह बताते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि वर्ष 2014 के बाद हथकरघा एवं हस्तशिल्प श्रेणी में जीआई पंजीकरणों में 3 गुना से अधिक वृद्धि हुई है. The true credit for the enduring legacy and growing global recognition of India's handloom and handicraft traditions belong first to our generations of weavers and artisans who have preserved this priceless heritage for thousands of years. Under the constant guidance of Honorable Union Minister of Textiles, Sri Giriraj Singh Ji, and through the dedicated efforts of the Secretary Textile, DC Handlooms, and the entire Ministry of Textile team, this legacy continues to reach the new heights. As I conclude, I would like to extend my heartfelt congratulations to all the recipients of Sant Kabir Handloom Awards and the National Handloom Awards for your craftsmanship, innovation and dedication. You continue to preserve our weaving traditions while inspiring future generations. Antata, aiye hum sab milkar ye sankalp le ki hamare bunkaron ko samman पहचान और नए अवसर निरंतर मिलते रहे तथा हमारे बुनकरों द्वारा बुना गए प्रत्येक धागा विकसित भारत के सपने को और अधिक सशक्त करे. धन्यवाद. जय हिंद.
3: धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपके ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी भाषण के लिए आपका धन्यवाद. और अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूं श्री गिरिराज सिंह जी को. माननीय वस्त्र मंत्री भारत सरकार, आपसे अनुरोध है कि भारत के हथकरघा क्षेत्र के भविष्य के लिए अपना संबोधन और दृष्टिकोण साझा करें. जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए.
4: भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज 12वें हस्तकरघा दिवस के अवसर पर देश के राष्ट्रपति, हम लोगों के आन बान शान, भारत की संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक और हमारे हैंडलूम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आज हम पूरे देश और दुनिया में आपका नाम लेता हूं, आपका मैं स्वागत भी करता हूं। मैं जब मंच पर बैठे हमारे सहयोगी राज्य मंत्री मानवर मार्गरेटा जी पवित्रा, हमारी सचिव नीलम शम्मी राव जी, हमारी डीसी हैंडलूम श्रीमती एम बीना जी और सभी यहाँ आए हुए हमारे विजेता बुनकर भाइयों, अधिकारी, प्रेस मीडिया, सभी का मैं सम्मान करता हूं। जब मैं 12वें हस्तकरघा दिवस की बात करता हूं तो मुझे लगता है कि मैंने अपने अतीत को खो दिया, क्योंकि धन्यवाद मैं माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को देता हूं, जिन्होंने 14 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके मन में लगा जो हैंडलूम हमारे आजादी के पहले से हजारों वर्ष से हमारे सभ्यता और संस्कृति का एक महान कृति है, उसको शायद नजरअंदाज किया गया। नजरअंदाज इस क्यों किया गया मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जब हमारे सहयोगी मित्र कह रहे थे 1905 की बात, उसी 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन के दिन को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 7 अगस्त को ये पुनर्स्थापित करने का काम किया, क्योंकि ये भारत के विकास को विरासत के साथ जोड़ के देखते हैं। ये हमारी ऐसी विरासत जिसे हम याद करते हैं कि भारत की विरासत में खादी और हैंडलूम एक अंगूठी से बंगाल का मुस्लिम मसलिन पूरे पास हो जाता था, लेकिन विदेशी आक्रांताओं ने, अंग्रेजों ने इस पे प्रहार किया हमारी टेक्नोलॉजी को, तो हम लोगों ने स्वदेशी आंदोलन, हमारे पूर्वजों ने मैनचेस्टर के कपड़े को बहिष्कार करके और इन्हीं बुनकर भाइयों के कृति पर हम पूरे देश को एक जन आंदोलन में बदलने का काम किया।
0: एंड वी आर ब्रिंगिंग यू द नेशनल हैंडलूम अवार्ड्स फ्रॉम द राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर। The Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu, conferred the National Handloom Awards 2025 to the awardees. And now the Minister for Textiles, Shri Giriraj Singh.
4: Jab 10 saal baad aata to 43 lakh, aur jab uske baad 10 lakh aata to 35 lakh, aakhir kyon? Aaj main kuch naujawan भाइयों को देखा, मेरे अंदर वो प्रशंसा, वो प्रसन्नता जो मैं कह नहीं सकता। और मेरा लक्ष्य है कि भारत के बुनकर भाइयों के लड़के और लड़की इस पेशा में कैसे आए, ये मेरी चिंता है। और मेरी चिंता

लगता है ये तब होगा जब मैं इनके संतति को, इनको अच्छी रकम मिले। ये तो संत कबीर हैं, ये हैंडलूम अवार्ड है, अवार्डी के कपड़े को तो मैडम मैं बीड भी कर रहा हूं, जिससे बुनकर भाइयों से पूछता हूं संत कबीर इस साड़ी का कीमत कितना लेंगे, तो 1,90,000, और कॉटेज में लोग लेकर के जाते हैं। लेकिन आम बुनकरों की पीड़ा चाहे उड़ीसा हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे गुजरात हो, जिस देश का ले, वो आज उनकी पीड़ा को कहना उचित नहीं लगता। लेकिन जो संकल्प मोदी जी के नेतृत्व में लिया है, क्योंकि जब हम सूती कपड़े को देखते हैं तो बाजार में जाता है तो लोग उसे पावर लूम से कंपेयर करते, फिर उसकी कीमत देखते। हमने तय किया है आने वाले दिन में हम निश प्रोडक्ट बनाएंगे और जीआई जो प्रोडक्ट है उसको हम प्रमोट करेंगे। केवल निश प्रोडक्ट बनाएंगे नहीं, हमने गुवाहाटी में हम लोगों ने, विभाग ने, हमने मॉडल को स्थापित करने का काम किया है। हमारे देश में 29 बीवर सर्विस सेंटर है, 3 एक्सटेंशन है, 11 राज्य और केंद्र मिला के IIST है और 20 निफ्ट का कैंपस है। मैं सबों को लेकर के, लेकिन फर्स्ट फेज में मैं सर्विस सेंटर को, IIST को, एक्सटेंशन को, कि किसी भी बुनकर भाइयों की आमदनी मिनिमम 50,000 रुपया मासिक से कम नहीं हो। ये मोदी जी की पीड़ा है, ये गरीबों का, और ये होगा, ये करना शुरू कर दिया हूं गुवाहाटी से, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। दूसरा आपसे निवेदन करता हूं, इसमें हम अपस्किलिंग करते हैं। अपस्किलिंग करने के बाद अगर लूम नहीं है तो लूम हम देते हैं, लूम अगर है उनको सूता देंगे, उनको डिजाइन देंगे, उनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग जो नहीं कर पाएंगे उनकी मार्केटिंग भी करेंगे। अगर ये हमारे बुनकर भाइयों को ठीक लगता है तो मुझे तालियों की गड़गड़ाहट से विभाग को एक दें। और ये शुरू कर दिया है, अभी 25,000 से 30,000 रुपये गुवाहाटी विभिन्न सर्विस सेंटर क्या दे रहे हैं, 6 राज्यों में इसको फर्स्ट फेज में, और लक्ष्य है 2030-31 तक कोई ना बचे। दूसरा तय किया, आज तक इनकी पहचान कार्ड नहीं था, मुख्य कानून छो था, जो कह दिया सर्वे में वही हम लिख लेते थे। लेकिन अब हम लोगों ने 2025 के जनवरी से हमने इनका पहचान कार्ड बनवाया, 35 लाख आए। लेकिन जो नई गतिविधि हुआ है, हम उस पहचान को ऑनलाइन छोड़ा है, और केवल ऑनलाइन नहीं छोड़ा है बल्कि हर दिन वो, और मुझे खुशी है अब 65 लाख से हम 35 लाख पहुंच गए, अब 35 से हम 65 रिवर्स में जाएंगे, लगभग 1 लाख नए बीवर हमारे साथ जुट चुके हैं। ये हमारा संकल्प है। हमारा दूसरा संकल्प है कि बीभड़ भाई अपने बच्चों को IIST में दें, पढ़ाएं, फिर निफ्ट में उसको हम प्रमोट करेंगे, और ये 2 लाख रुपया इनके बच्चों की पढ़ाई के लिए भारत सरकार

0: टेक्सटाइल डिपार्टमेंट देने का काम करेगा। इसलिए ये पीड़ा है, आज कई युवक जब IIST से पढ़ करके निफ्ट जाते हैं, अपना कारोबार करते हैं, वो 150 लोगों को रखते हैं। मेरा उद्देश्य है मास्टर बीवर यानी बिचौलिया, मास्टर बीवर से बीवर का मुक्ति दिलाना। उसके लिए ई कॉमर्स रखा है, उसके लिए विदेशों में EPCH से के साथ जोड़ करके अभी शुरुआत की है 50 हैंडलूम 50 हैंडीक्राफ्ट। क्योंकि इस बार जो योजना हम बना रहे हैं वो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट दोनों को मिला करके, हैंडलूम की साड़ी बन गई, अगर उस पर पैच वर्क हुआ तो वो हैंडीक्राफ्ट हो जाता। तो हमने तय किया है दोनों को मिला करके एक नए तरह से हम बीवर भाइयों के जिंदगी में परिवर्तन करेंगे। अभी राष्ट्रपति महोदया अभी IIT दिल्ली से MOU किए हैं, केवल MOU नहीं किए हैं, अभी 100 बीवर से जस्ट शुरू किया है एक एप्लीकेशन मोबाइल के थ्रू, उसमें हम कार्बन फुटप्रिंट कितना कैप्चर कर रहे हैं वो उनको दिखाई देगा, बीवर को दिखाई देगा कि उनकी एफिशिएंसी कितना आज के काम का है, उनको दिखाई देगा। AI टूल्स भी लगा रहेगा, उनके सिस्टम में कोई गड़बड़ी होगा तो AI टूल उसको रोकेगा। इस तरह से टेक्नोलॉजी का सहारा हम इनके जो लूम है लूम को परिवर्तित करेंगे। आसाम का एक शिवसागर जो जिला है वहां एक रिटायर्ड इंजीनियर ने लूम बनाया, अभी वो 70 से 80 PPM पर जा रहा है। उसने मुझे कहा है कि हम 180 PPM पर जाएंगे पर मिनट, 180 पिक जाएगा। लोगों ने कहा ये तो पावर लूम की तरह होगा, हम कहा टेक्नोलॉजी तो इसी को कहते हैं, जब टेक्नोलॉजी होगा तभी हम ये करेंगे, हम मैकेनिकल चेंजेज लाएंगे। मैं इतना ही आपको वादा करता हूं कि
1: आप बता दें 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र के सभागार में ये समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें माननीय राष्ट्रपति ने हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। और आपको बता दें ये कई अलग अलग क्षेत्रों में ये पुरस्कार प्रदान किए गए। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं।
0: और जो मेरा लक्ष्य है पचलखिया भाई और बहन बनाना, 10 लखिया बनाना, इस संकल्प को पूरा करेंगे आपके नेतृत्व में, मैं यही कह रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय, आपके उत्साहवर्धक संबोधन और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने और मजबूत करने में आपके सटीक नेतृत्व के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देवी और सज्जनों, मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि मैं माननीय राष्ट्रपति जी को 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर सभा को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया सभा को अपना संबोधन दे। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए।
3: बैठे बैठे, मैं कुछ कहने से पहले मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहती हूँ और भारत की सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ। टेक्सटाइल डिपार्टमेंट अच्छे लोगों को दिया है, अच्छे एक मंत्री को दिया गया। मुझे लगता है टाइम का पाबंदी है, टेक्सटाइल ऊपर में बातें करने के लिए उनको एक दिन दिया जाए तो शायद कम होगा। इस समारोह में उपस्थित भारत सरकार में मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स श्री गिरिजाराज सिंह जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेक्सटाइल्स श्री पवित्र मार्गरेटा जी, सेक्रेटरी टेक्सटाइल्स श्रीमती नीलम स्वामी राव जी, डेवलपमेंट कमिश्नर डॉक्टर एम बीना जी, गणमान्य अतिथियों, सभी अवार्डीज और सभी बुणाकार, डिजाइनर, देवियों और स्वजन, सभी को नमस्कार। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत आनंदित महसूस हो रही है। मैं देश के प्रतिभाशाली बुनाकारों, डिजाइनरों, उद्यमियों, विद्यार्थियों और भारत के हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हजारों वर्ष से हथकरघा भारत के प्रकृति पोषक सभ्यता की विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा रहा है। इसमें हमारे राष्ट्र की असाधारण विविधता दिखाई देती है। जब हम यहाँ पे इधर आ रहे थे, एग्जीबिशन हम देखे, इतने सारे वैरायटीज देख के मुझे लगता है, मुझे कोई ने बोले मैडम आपका महिलाएं थोड़ा कम है, केवल 5 लोगों को दिया जाता है। मैंने बोली नहीं नहीं, हम लोग 100 लोगों को दिए नहीं, केवल 24 लोगों को दिए, हम सबको दिले 50 तो जरूर महिलाओं को मिलता है। इसने हमारे क्षेत्रीय विशेषताओं के संरक्षित भी किया है। हथकरघा क्षेत्र से रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला संस्कृति और प्रकृति प्रेम को बढ़ावा मिलता है। हथकरघा भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हुआ है। हमारे ग्रामीणों और जनजातियों समाज ने प्रकृति के साथ सामंजस्य से जीने की पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सदियों तक संजोय है। हथकरघा उस परंपरा का एक सशक्त उदाहरण है। प्रकृति के अनुरूप जीने की पद्धति की उपयोगिता आज समूचे विश्व में स्वीकृति जा रही है। देवियों और स्वजनों, हथकरघा क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। मुझे बताया गया है कि इस क्षेत्र में देश की 35 लाख से भी अधिक आबादी संलग्न है। विशेष बात यह है कि इसमें 25 लाख से अधिक महिलाएं हैं, 35 से 25 महिलाएं हैं। उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें लगभग 2/3 कारीगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित है। इस प्रकार ये क्षेत्र आजीविका सृजन के साथ साथ समावेशी विकास का भी एक सशक्त माध्यम बना है। देश इंडिपेंडेंट होने के कुछ साल बाद में धरती पे आई, स्कूल गई, जो असहयोग आंदोलन के टाइम महात्मा गांधी ने जिस बात गांव-गांव घूम के बोले थे, हम जो स्कूल में 15 अगस्त और 26 जनवरी में हम घूमते थे, प्रभात फेरी करते थे, वही गाना हम गाते थे। हम तो ओडिया में पढ़ाई की है, तो मैं थोड़ा ओडिया के 2 पंक्ति बोलना चाहती हूँ। आज ही आसी अच्छी नुआ जुगांतर गांधी कही छंती बोली बराबर, खाओ भात मुठे घर ढेंकी कुटा, पिंधो लुगा खंडे हाते काटी सुता। इट मीन्स आज नया युग आ गया है। इसीलिए जितने जमीन है, जमीन में खेती करो, अनाज उगाओ और अपना खाओ, अपना करो अपना खाओ। और कर्पास इतने उत्पादन होता है, इसीलिए वहां से थ्रेड निकालो और बुनाई करो और खुद का पहनो। आज भी मैं जो 7 क्लास तो पढ़ती थी, पर कितने साल हो गया है, लेकिन और दो

0: शक्ति मेरे दिल में है, अभी भी मुझे याद है। इसीलिए आज जो देखती हूँ, केवल वो वाला मोटे वाला सूत नहीं, आज इतने फाइन फाइन कपड़ा बनाते हैं, कोई 1 लाख 2 लाख 5 लाख तोहफे, तो यहीं पे तो शौक है। हम विदेशों में नजर क्यों डाले। देवियों और स्वजनों, संत कबीर हथकरघा पुरस्कार से आज सम्मानित हुए वरिष्ठ बुनाकार विशेष बधाई के पात्र हैं। इन सभी ने ही आपने दशकों के कामकाजी जीवन में केवल अपने कौशल को ही नहीं संवारा, बल्कि उन्होंने सैकड़ों बुनाकारों को प्रशिक्षित और प्रेरित भी किया है। बुनाकारों की नई पीढ़ी तैयार करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार पाने वाले सभी प्रतिभाशाली और कर्मठ बुनाकारों को भी मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर सुदूर दक्षिण तक देश के अनेक राज्यों की हथकरघा शैलियों के बेजोड़ उदाहरण का सर्जन उन कर्मठ बुनाकारों को किया है। इनके उत्साह और कौशल की मैं बहुत बहुत सराहना करती हूँ। हथकरघा का हमारी स्वतंत्रता संग्राम के गहरा जुड़ाव है। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन का औपचारिक शुभारंभ हुआ था। बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुए इस आंदोलन का उद्देश्य स्वदेशी वस्तुओं, स्वदेशी उद्योगों और विशेष रूप से देश।
1: आपको बता दें, राष्ट्रपति भवन के जो सांस्कृतिक सभागार है, इसमें माननीय राष्ट्रपति पुरस्कार वितरण के बाद संबोधित कर रही हैं।
0: मनाने जा रहे आ रही है। अब ये एक औपचारिक वार्षिक आयोजन भरी नहीं रहा, ये उत्सव है। हमारे देश की सांस्कृतिक एकता की इंद्रधनुष विविधता है। ये अवसर है सरकार और बुनकर समाज के उन साझे प्रयासों का याद करने हैं जो भारत के हथकरघा सेक्टर को प्रीमियम क्वालिटी की छवि दे रहे हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि हथकरघा क्षेत्र में के बहुआयामी विकास के लिए सरकार ने विभिन्न हितधारकों के सक्रिय योगदान से अनेक योजनाओं और अभियान पिछले एक दशक से चली आ रही है। इसके सुपरिचालना आप सामने आने लगा है। मुझे ये भी बताया गया है कि हाल ही में भारतीय हथकरघा उत्पादों के एक विशिष्ट कलेक्शन को विश्व सूत्रों वेबर्स ऑफ इंडिया फॉर द वर्ल्ड के रूप में वैश्विक ऑडियंस के सामने एक नए ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इससे भारतीय हैंडलूम को डिजाइन की एक नई विधा मिली है। देवी और स्वजनों, हमारे हथकरघा सेक्टर में भारत की रूरल प्रीमियम इकोनॉमी का सबसे सुंदर और मानवीय उदाहरण बनने की संभावनाएं बलवती हुई है। महत्वपूर्ण हैंडलूम क्लस्टर्स को आधुनिक प्रौद्योगिकी और सामूहिक प्रशिक्षण विधियों से जोड़ा जा रहा है। बुनकरों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पारदर्शी उपाय सरकार ने हाथ में लिए हैं। बुनाकारों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ सीधे मिलने के रास्ते खुले हैं, जो माननीय मंत्री में ने हम लोगों के सामने उल्लेख किया। भारतीय हथकरघा सेक्टर की अंतर्राष्ट्रीय छवि निखर रही है, उसे और तेजी देते हुए इसे वेरीफाइड कल्चरल इकोनॉमी बनाने के लिए सरकार प्रयास लगातार बढ़ा रहे हैं। गृहसज्जा और होम टेक्सटाइल क्षेत्रों में हैंडलूम को विशेष आर्थिक बढ़त मिलने की संभावनाएं बन रही है। वोकल फॉर लोकल अभियान के द्वारा भी भारतीय हथकरघा को स्थानीय सीमाओं से निकालकर वैश्विक मंच पर, जैसे कि ग्लोबलाइज करने के लिए सोचा जा रहा है, इससे हमारे बुनाकारों और शिल्पकारों को आर्थिक समृद्धि के नए अवसर भी मिल रही है और विश्व के समक्ष भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और उत्कृष्ट

0: कर सकते हैं। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान और वेवर सर्विस सेंटर्स के अंतर्गत कार्यरत डिजाइन रिसर्च सेंटर्स युवाओं को इस क्षेत्र से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि युवाओं को आधुनिक तकनीकों के प्रशिक्षण करने के साथ साथ उनके नवाचार के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस क्षेत्र के सतत विकास के लिए नई टेक्नोलॉजीज का उचित उपयोग आवश्यक है। आधुनिक डिजिटल सॉल्यूशन के माध्यम से बाजार तक पहुंच को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। साथ ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारतीय हथकरघा उत्पादों की पहुंच वैश्विक बाजारों तक और अधिक सशक्त बनाया जा सकती है। मुझे विश्वास है कि ये क्षेत्र देश के समावेशी विकास एवं आत्मनिर्भरता का सशक्त आधार बनेगा। मैं हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और सभी पुरस्कार विजेताओं को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
1: The Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu, was speaking at the Rashtrapati Bhavan Cultural Center on the occasion of the 12th National Handloom Day. The Honorable President also conferred the National Handloom Awards 2025 to the winners under the category of Sant Kabir Handloom Awards 2025 to two awardees, the Kamala Devi Chattopadhyay Sant Kabir Handloom Awards 2025 to one awardee and the National Handloom Awards 2025 to 12 awardees, the Kamala Devi Chattopadhyay National Handloom Award 2025 to two awardees and the National Handloom Awards for Design Development for the year 2025 to two awardees, the National Handloom Award for Marketing of Handloom Products for 2025 to two awardees and the National Handloom Award for Startup Producer Company for the year 2025 to one awardee. And she also released commemorative postage stamps, and the Honorable President of India also released two publications, Earth, Root, Thread, All Dyed Handloom Textiles of Central India and the Handloom Awards Book 2025.
2: आज का ये समारोह केवल पुरस्कार वितरण नहीं बल्कि भारत की उस सांस्कृतिक चेतना का उत्सव है जिसने सदियों से अपनी परंपराओं को जीवित रखा है। जब हम हाथ से बुना हुआ भारतीय वस्त्र धारण करते हैं तब हम केवल एक परिधान नहीं पहनते बल्कि एक बुनकर की मेहनत, उसके परिवार की आशा और भारत की सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देते हैं। राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र के सभागार नई दिल्ली में 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के इस विशेष समारोह से आप सजीव विवरण सुन रहे थे। मैं शोएसियार खान अपने साथ ही कॉमेंटेटर कौशिक राय और कार्यक्रम प्रभारी प्रमोद कुमार के साथ आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
1: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
2: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाएं समाधान।
3: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब सुनते हैं आदिवासी लोक संगीत। कलाकार हैं विष्णु मीणा और उनके साथी।
4: अरे जकनु सामरे आ दे दे गोद में ला लो दे दे गो

छोड़ महल में आई। एक मारे भी है तो छाती के चपकाती, पणगट पुजवाती, सात्या लगवाती, जामण को पीड़ो ओढ़ती मैं रंग महल के माई। इतनी सुनताई बात राजा की, छाती है लोड़ा खाई तारा।

द बंदाई अरे मारी रानी लाडली आसन तीसर आई गई री अब छोड़ दे बालक की आस।

खावे। पण सैसे बुजा का नाथ ने मती दई ची मोराई, वा फिर तो पहुंच गियो गुरु शुक्राचार्य की कुटी के माई। और देखा आगे बने।

0: चगियो जिगरू शुक्राचार की कुटी के माई गरू ने राजा दी क्यों आवे तो कुटिया में लियो बैठाई फिर दुख सुख कास में सार बूझ तो बैठ बगल के माई
1: अरे।
0: फिर राजा ने दुख की बात बताई अजी गरू जी अन्न धन का भंडार बेरियाच सोनतपुर के माई पण खाबाला ने जन्म

रानी मारी रोवे चने दिन रात महल के माई। सुन राजा की बात गुरु जी सोची मन के माई और भेद को ठायो हाथ।

कह माई सारो वेद तो देख लियो जी, वेद में रानी का बाग में औलाद लखेड़ी नाई, पण वेद न मई मिली उपाई, मटकी पर जापत सू मंगवाई, और ओ मटकी में पानी घाल दियो रा, जाको दियो समलाए पण।

समझाई जाताई रानी को दीजो पिलाई नौवे मैंने बालक जन्म ले लेगो मेल के माई राजा राजी है गयो भागर मटकी ठाई छाती के चपकाई और ले मटकी कुचाल दियो।

0: माई
1: माए।
0: अब आधी रात को टेम चोरा जा कोई प्यास सताई
1: माए।
0: अब राजा ने रानी को आवाज लगाई।

उठ कर आंख मसलती आई, ऊई ताख में आत चले गोमट की आगी हाथ के माई, और उरानी ने वा पानी रा जाकु दियो पिलाए तो

तुमने बागर मटकी ठाई पण खाली मटकी पाई, राजा को नकल गो जीव करे अब काई। रानी को झालो देर बुलाई, अरी मारी रानी लाडली, ई मटकी में पानी चो जे कोड़े गियोरी मोकू देर बताई। फिर रानी को आसी आई, जीते पागल हैगा काई, थाने रात ने पानी मांगियो मन थाई को दियो पिलाई। राजा

देखा जाजोरी को बैद को बोला लिया जो मारी नब्ज तो दी जो दिखाई। अरे यहाँ रानी को रियो समझाए पर रानी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आदिवासी लोक संगीत, कलाकार थे विष्णु मीणा और उनके साथी। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, कुमार सानू और साथियों का गाया हुआ ये गीत ये दिल लगी फिल्म से। और अब प्रोग्राम का अगला गीत सुनिए। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने, साथ हैं इनके सुरेश वाडेकर। फिल्म का नाम है राम तेरी गंगा मैली।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे वारिस फिल्म का ये गीत, लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों का गाया हुआ। फिल्मी गीत आप पुनः सुन पाएंगे दिन में 1:05 पर। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। दिन का 1 बजने वाला है। अब कुछ ही पलों में आप हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। देश आज 12वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मना रहा है। इस अवसर पर पारंपरिक बुनकरों के कौशल और देश की समृद्ध हथकरघा विरासत का सम्मान किया जा रहा है। वस्त्र मंत्रालय द्वारा राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र सभागार में सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। इसमें बाड़मेर जिले के सेड़वा के बुनकर बरीगा राम भी शामिल हैं। इधर जयपुर के जवाहर कला केंद्र में बुनकर सेवा केंद्र की ओर से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के राज्यस्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ इसमें शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने बुनकरों को राज्यस्तरीय पुरस्कार प्रदान किए। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हाथ से बुने हुए वस्त्रों की मांग का दौर वापस आने वाला है। इस उद्योग से हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। उन्होंने युवाओं को भी इस परंपरागत उद्योग से जुड़ने का आह

आह्वान किया। जयपुर में आज ब्रिक्स देशों के व्यापार मंत्रियों की 16वीं बैठक आयोजित होगी। बैठक में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आर्थिक सहयोग, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और एमएसएमई से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल करेंगे। इसमें केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद, वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल तथा ब्रिक्स देशों के व्यापार मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक से पहले ब्रिक्स प्रतिनिधिमंडल ने जयपुर के सिटी पैलेस और हवा महल का सांस्कृतिक भ्रमण किया। पर्यटन विभाग ने पारंपरिक राजस्थानी अंदाज में उनका स्वागत किया। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 6 वर्षों में राजस्थान में विदेशी पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उन्होंने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। श्री शेखावत ने कहा कि राज्य सरकार बुनियादी ढांचे के विकास और लक्षित प्रचार प्रसार के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार भी स्वदेश दर्शन, पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता तथा तीर्थयात्रा पुनरुद्धार और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन जैसी योजनाओं के माध्यम से राजस्थान में पर्यटन विकास को सहयोग दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। वे मुख्य अतिथि के रूप में समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर 3000 से अधिक स्नातकों और 587 PhD शोधार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री मेधावी विद्यार्थियों को राष्ट्रपति स्वर्ण पदक, निदेशक स्वर्ण पदक, शंकर दयाल शर्मा स्वर्ण पदक और परफेक्ट 10 स्वर्ण पदक सहित संस्थान के प्रमुख सम्मान भी प्रदान करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित AI सक्षम उच्च क्षमता वाली सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का उद्घाटन करेंगे। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा है कि प्रदेश में वर्ष 2047 तक हर परिवार को बीमा सुरक्षा उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। ये बात उन्होंने राज्य बीमा गवर्निंग काउंसिल की दूसरी बैठक में कल कही। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीमा एजेंसियों को कवरेज बढ़ाने और समयबद्ध कार्य योजना के साथ काम करना चाहिए। मुख्य सचिव ने अलवर जिले की देशूला ग्राम पंचायत के 100% बीमा मॉडल को अन्य ग्राम पंचायतों में भी लागू करने के निर्देश दिए। प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में मॉनसून सक्रिय बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मध्यम से भारी और कहीं कहीं अति भारी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार भरतपुर जिले के पहाड़ी में सबसे अधिक 16 सेंटीमीटर बरसात हुई। इसके अलावा जयपुर के शाहपुरा में 9, सीकर के नीमका थाना और भरतपुर के नगर में 8-8 सेंटीमीटर पानी बरसा। अलवर, धौलपुर, झुंझुनू, करौली, दौसा और बारा सहित कई जिलों में भी अच्छी बरसात हुई। वहीं पश्चिमी राजस्थान में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात हुई। अच्छी वर्षा का असर अब बांधों पर भी दिखाई देने लगा है। शिवालिक की पहाड़ियों में बारिश के कारण घग्गर नदी में पानी की आवक बढ़ी है। हनुमानगढ़ में गुल्ला चिक्का हेड पर आज करीब 21,000 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया। इससे धान उत्पादक किसानों में सिंचाई को लेकर बढ़ी हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए फिर से आनंद लेते हैं फिल्मी गीतों का। सुनिए कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों को हम हैं राही प्यार की फिल्म के लिए।

श्रोताओं, फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से सुन रहे हैं। लीजिए आप सुनिए अगला गीत, हम दिल दे चुके सनम फिल्म से। आवाजें हैं कविता कृष्णमूर्ति, कुमार सानू और साथियों की।

और प्रोग्राम के आखिर में ये आवाज़ें हैं उदित नारायण, अलका याग्निक, कुमार सानू और साथियों की। फिल्म का नाम है हम साथ साथ हैं।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम अब खत्म होता है। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। अब ग्रामीण बहनों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम पणिहारी।

0: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
1: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
2: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाएं समाधान।

एक गीत चौमासे पर तो सुनो बना ही है, क्योंकि आज का 4 महीना है। आप पर बुनेड़ो गुथेड़ो एक चोको सो गीत है, सीमा मिश्रा री आवाज में पूग रहे है आप सभी रे रेडियो सेट टाइम।

0: ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੀਤ ਰਹਿ ਸਕੇ ਹੀ ਆਪਸੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਤ ਅਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਬਹਿਣੋ ਕਿ ਬਈ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੌਮਾਸੇ ਰੀ ਸਿਆਲੋ ਲਾਗਿਓ ਚਾਹੇ ਚੌਮਾਸੂ ਲਾਗਿਓ ਬਿਰਖਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੌਸਮ ਬੜੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੌਸਮ ਮੈਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਚੌਮਾਸੇ ਰੋ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੀ ਕਾ ਰਾਸਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਗਡੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਾਣੂ ਹੈ ਵੈ ਜੀ ਕਾ ਜੀਵ ਹੈ ਵੈ ਦਿਖਬਾ ਨੇ ਆਵੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿੱਛੂ ਹੋ ਗਿਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਨ ਵੀ ਜੀਵ ਜਿਨਾਵਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦਿਖਤਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੋ ਸਾਵਧਾਨੀ ਮੈਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਖੇਤ ਖਲਿਆਨ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਰਾਸਤੇ ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਰਾਸਤੇ ਕੋ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੋ ਔਰ ਠੀਕ ਹੋਣੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਛਰ ਵੀ ਇਹ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾ ਹਾਂ ਕਿ ਖੂਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਹੈ ਰੁਕੇੜੋ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਮੱਛਰ ਪਨਪ ਜਾਵੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਸਕੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਲੇਕਿਨ ਘਣੀ ਮੋਟੀ ਬਾਤਾਂ ਹੈ ਆ ਸਭ ਕੋ ਧਿਆਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਚੋ ਕੈਸੇ ਮਨੋਰੰਜਕ ਜੀ ਕੋ ਹਰਿਆਲੀ ਸੂ ਭਰੇੜੋ ਮੌਸਮ ਹੈ ਸਾਵਣ ਰੋ ਜਾਂ ਚੌਮਾਸੇ ਰੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਬ ਸਵਾਰ ਆਪਾਂ ਬਾਤ ਅਗਰ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਔਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਤ ਆਪ ਸੂ ਵਿਵਹਾਰ ਰੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਬਿੱਛੂਰੀ ਅਵਾਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਸੇ ਬਾਤ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਬਿੱਛੂਰੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਹੀ ਸੁਣੇੜੀ ਹੋ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਔਰ ਵੀ ਕੋ ਦੂਸਰੋ ਇੱਕ ਜੀ ਕੋ ਪਰਿਪੇਕਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਸੂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਤਾਊਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਿੱਛੂ ਹੋ ਔਰ ਇੱਕ ਕਛੂ ਹੋ ਦੋਨੋਂ ਮੈਂ ਭਾਈਲਾਚਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਦੋਨੋਂ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਬ ਬਿਨਾਂ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਹੀ ਬਿੱਛੂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਛੂਆ ਨੇ ਬੋਲਿਓ ਕਿ ਤੇਰੀ ਪੀਠ ਪਰ ਮੈਂ ਬੈਠ ਜਾਊਂ ਤੂੰ ਮੈਨੇ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਾ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਛੂਆ ਕਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਜੀ ਕੀ ਆਦਤ ਹੈ ਬਾ ਡੰਕ ਮਾਰਨੇ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੋ ਵਿਵਹਾਰ ਇਸੋ ਹੀ ਰਵੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਗੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕੂੰ ਤੈਨੇ ਸਾਗੇ ਕੌਣ ਲੈ ਜਾ ਸਕੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਿਓ ਬੁੱਛੂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੂੰ ਮਿੱਠੋ ਮਿੱਠੋ ਬਣ ਕਰ ਵੀ ਨੇ ਕਹੋ ਕਿ ਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡੰਕ ਮਾਰਸੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕੌਣ ਕਰੂੰ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਖਾਤਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੋਖੂ ਹੂੰ ਤਾਂ ਬਿੱਛੂ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਕਰ ਵੋ ਜੀ ਕੋ ਕਛੂ ਹੋ ਵੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਓ ਆਪ ਰਿਪੀਟ ਪਰ ਬਿਨੇ ਬਿਠਾਰ ਲੇਰ ਗਯੋ ਨਦੀ ਰੇ ਮਾਈ ਨੇ ਤਾਂ ਆਧਾ ਰਾਸਤਾ ਮੈਂ ਬਿਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਲਚਲ ਲਾਗੀ ਕਛੂਆ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਰੋ ਜੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਵੀ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਸੂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੇ ਲੋ ਤਾਂ ਵੋ ਕਾਇ ਕਰਿਓ ਕਿ ਆਪਕਾ ਚਾਰੂ ਪਗ ਜੀ ਕਾ ਹੈ ਵੈ ਆਪਕੀ ਖੋਲ ਕਾ ਮਾਈ ਨਾ ਡਾਲ ਲਿਆ ਜਿਸੂ ਕਾਈ ਹੋਇਓ ਕਿ ਵੋ ਕਛੂ ਹੈ ਜੀ ਕੋ ਬਿਕਾ ਬਿੱਛੂ ਕਹਿ ਜੀ ਕੋ ਡੰਕ ਮਾਰਨ ਰੋ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਬਿੱਛੂ ਤੋਂ ਆਪਰੇ ਵਿਵਹਾਰ ਹੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਵੋ ਡੰਕ ਮਾਰਿਓ ਲੇਕਿਨ ਵੋ ਕਛੂ ਆਪਨੇ ਬਚਾ ਲਿਓ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰ ਹੂੰ ਕਿ ਆਪਰੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੋ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਰੋ ਵਿਵਹਾਰ ਅਗਰ ਅੱਛੋ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਲੋਗਾਂ ਰੋ ਵਿਵਹਾਰ ਚੋਖੋ ਕੋ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਰੇ ਵਿਵਹਾਰ ਸੇ ਦੂਸਰਾ ਰੋ ਦਿਲ ਜੀਤ ਸਕੋ ਹੋ ਜਿਆਂ ਕਿ ਬਿੱਛੂ ਰੀ ਆਦਤ ਹੀ ਡੰਕ ਮਾਰਨ ਰੀ ਤਾਂ ਕਛੂਏ ਰੀ ਵੀ ਆਦਤ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਰੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਰੀ ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੀਆ ਵੋ ਆਪਰੋ ਜੀ ਕੋ ਕਰਤਵਯ ਹੈ ਵੋ ਨਿਭਾਇਓ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਜੀ ਕਾ ਹੈ ਨਦੀ ਰੇ ਪਾਰ ਪੂ ਗਿਆ ਔਰ ਬਾਰੇ ਜਾਗਤਾ ਹੀ ਵੋ ਬਿਨਾ ਆਪਰੀ ਪੀਠ ਸੂ ਝਟਕਿਓ ਔਰ ਵੀ ਸੂ ਮਾਫੀ ਮਾਂਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੂ ਦੂਰੀ ਚੋਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮੀ ਰੋ ਵਿਵਹਾਰ ਕਦੇ ਹੀ ਕੌਣ ਬਦਲ ਸਕੇ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਔਰ ਆਪਣੋ ਵਿਵਹਾਰ ਇਸੋ ਰੱਖਾਂ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਰੋ ਵਿਵਹਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਦਲ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਾਂਈ ਬਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਆਪਣੋ ਵਿਵਹਾਰ ਚੋਖੋ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੇ ਦੇਖ ਕਰ ਬਿਨਾਂ ਬਦਲਣੋ ਨਹੀਂ ਆਪਰੇ ਵਿਵਹਾਰ ਪਰ ਆਪ ਅਡਿਗ ਰਹੋ ਇਆਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਦ ਵੋ ਆਪਰੀ ਕਟੂਤਾ ਕੌਣ ਛੋੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪ ਆਪਰੀ ਮਿਠਾਸ ਕਿਉਂ ਛੋੜੋ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿੱਠੀ ਸਰ ਬਾਤ ਰਹਿ ਸਕੇ ਹੀ ਆਜ ਰਹੇ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੀ ਆਪਾਂ ਬਾਤ ਕਰ ਲਿਆ ਆਜ ਰੋ ਦਿਨ ਹੈ 7 ਅਗਸਤ ਰੋ ਦਿਨ ਔਰ ਆਜ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਥਕਰਘਾ ਦਿਵਸ ਕੇ ਰੂਪ ਮੈਂ ਮਨਾਇਓ ਜਾਵੇ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦਿਨ ਨੇ ਮਨਾਵਾਂ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਕੀ ਹੈ 7 ਅਗਸਤ 2015 ਨੇ ਕਰੀ ਹੀ ਔਰ ਉਹ ਦਿਨ 1905 ਮੈਂ ਜੀ ਕਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਓ ਹੋ ਬਿਰੀ ਯਾਦ ਦਿਰਾਵੇ ਹੈ ਇਹ ਦਿਨ ਰੋ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬਾਤ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਹਥਕਰਘਾ ਬੁਨਕਰਾਂ ਰੋ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨੋ ਔਰ ਹਥਕਰਘਾ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਬਢਾਵੋ ਦੇਣੋ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸਾ ਆਜ ਰੋ ਦਿਨ ਜਦ ਮਨਾਇਓ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸਾ ਗਿਆ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਪਰ ਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਔਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾ ਆਭਾਰ ਰਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮਧੂ ਬਹਿਨ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਮੈਂ ਪਧਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਚੋਖੀ ਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਰਹਿ ਲਈ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਓ ਸਾ ਯਾਰੀ ਵੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਲਿਆ
1: ਸ਼ਰਤਾਵਾਂ ਆਜ ਆਪਾਂ ਬਾਤ ਕਰਾਂ ਲਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅਪਣਾਵਾਂ ਸੁਖ ਪਾਵਾਂ ਔਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਮਾਥੇ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤਾਈ ਸਟੂਡੀਓ ਮੈਂ ਮਾਰੇ ਸਾਗੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਰਾਧੇਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਤੰਵਰ ਪੂਰਵ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਬੁਨਕਰ ਸੰਘ ਤੋ ਰਾਧੇਸ਼ਾਮ ਤੰਵਰ ਜੀ ਸਟੂਡੀਓ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਖੂਬ ਖੂਬ ਸਵਾਗਤ ਰਾਮ ਰਾਮ
2: ਸਾਹਿਬ ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ
1: ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਰਾ ਪਾਵਣਾ ਅੱਜ ਮਾਰੇ ਸਟੂਡੀਓ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਵੇ ਹੈ ਗੀਤ ਗੋਸਵਾਮੀ ਭੂਤਪੂਰਵ ਉਪਾਯੁਕਤ ਉਦਯੋਗ ਏਵਮ ਵਾਣਿਜਯ ਵਿਭਾਗ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਗੀਤ ਗੋਸਵਾਮੀ ਜੀ ਆਪਕੋ ਵੀ ਮਾਰੇ ਸਟੂਡੀਓ ਮੈਂ ਘਣੋ ਘਣੋ ਸਵਾਗਤ ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਰ
2: ਰਾਮ ਰਾਮ ਆਪ ਸਭੀ ਕੋ ਹੈਂਡਲੂਮ ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਕੋ ਮੇਰਾ ਨਮਸਕਾਰ
1: और जिया की आज आप बात कर रहे हैं कि स्वदेशी अपनावा और सुख पावा, तो आपसे सबसे पहली तो आई जानवो चावला कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि काई है।
3: जैसा कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि स्वदेशी अपनाए और सुख पावा, इसी परिपेक्ष में अगर हम देखते हैं तो जो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है 7 अगस्त को मनाया जाता है, इसका मूल रूप से हमारे स्वाधीनता आंदोलन से काफ़ी संपर्क रहा है, संबंध रहा है। और 1905 में जब हमारा स्वाधीनता आंदोलन में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया, तो इसी को याद रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 7 अगस्त को 2015 में इसको प्रारंभ किया, ताकि हमारे जो बुनकर हैं और हमारी जो विरासत है हथकरघा की उसको सजोया जा सके और हमारा जो स्वाधीनता आंदोलन है उसको हम याद कर सकें। जहाँ तक इस हथकरघा दिवस का प्रश्न है, इसमें हम सभी आयोजन करते हैं और एक ज़माना ऐसा था जब हमारा स्वाधीनता आंदोलन और हथकरघा एक दूसरे के पर्याय बन गए थे और कोई भी अगर खादी या हैंडलूम वस्त्र पहन के जाता था तो उसको स्वाधीनता सेनानी के रूप में हम लोग एक सम्मान दिया करते थे। उसी को विरासत को संजोर करने के लिए हमने हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाने का निश्चय किया।
1: बहुत ही सहज और सरल चर्चा में आप बताया कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आपा क्यों मनावा है और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि काई है। अब आपा रुख करा राधेश्याम जी की तरफ, तो राधेश्याम जी आपसे वो जानवो चावला कि भारत में हथकरघा उद्योग की वर्तमान स्थिति कई है।
2: देखा पूरा देश का देखा हथकरघा प्रेमी मारी बात सुन रहे हैं, बस ध्यान दे बात ने और सरकार से भी मेरा निवेदन है कि आप सारा स्टेट की सरकार ये बात पर ध्यान दे कि पूरा देश के अंदर हथकरघा जो हमारी आत्मा है, एक वस्त्र गोनी
1: जी
2: हैंडलूम और खादी आज देश की आत्मा है। इनसे मारो आज़ादी जुड़ो आप बताया बार डायरेक्टर साहब सारी बात। अब इनमें पूरा देश के अंदर जो आप रोजगार के रूप में लिया तो टेक्निक जो आवाज चल रही है, विदेशी कंपनियां भी खूब आ रही है, लेकिन अपनी जो ट्रेडिशनल जो कला है जो बरसा से चलती आ रही है। एक टाइम अपने माचिस के अंदर एक साड़ी आ जाया करती बंगाल में, ऐ का कारीगर अपने मौजूद था हैंडलूम का खादी का। तो अगर पूरा देश में आवाज भी पॉकेट चिन्हित करा, कठे कठे साड़ियाँ बन रही है, कठे कठे चादर बन रही है, कठे कठे कपड़ों बन रहे हथकरघा को खादी को, इनकी बहुत बड़ी उपयोगिता है। अरे आप इनको बारीकी से अगर इनको ध्यान दें और इन पर फोकस करो जाए तो मैं समझू जो नयो पीढ़ी जो अपनी वो चीज़ों में जो लाग रही है, अगर ई में रोजगार में अगर वह पढ़े तो भी काफ़ी सफलता मिल जाए। सरकार ने जो जूझ रही है बेरोजगारी से भी काफ़ी सफलता मिल सके और भारत में बहुत बड़ी अभी की महत्वता भी है और अभी गुंजाइश भी बहुत है रोजगार की। तो मैं आपके माध्यम से आपका दर्शकों ने निवेदन बचाऊँ कि आप हैंडलूम से जुड़ो, हैंडलूम का बारे में समझो और हैंडलूम ने अपनाओ और हैंडलूम के साथ गई आत्मा जोड़ो आपकी जो पूरा अपनी आत्मा जुड़ी।
1: जी सर भाई राधेश्याम जी बहुत चौकी बात आप बताया कि जो हथकरघा है ना यो एक उद्योग को नहीं या अपनी आत्मा है या अपना भारत की आत्मा है। अब ओ जानवो चावला कि सरकार जो है इटेम जो अपना हथकरघा बुनकर है बाकी तई कौन कौन सी योजनावा चला रही है या बाका हिता में ध्यान में रखता सारू कौन सा काम कर रही है।
3: देखिए मैडम, हम राजस्थान सरकार और भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में अगर चर्चा करें तो वो ज़्यादा बुनकरों को समझ में आता है, क्योंकि भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों ही अपने अपने तरीके से बुनकरों के लिए कार्य कर रही है।
1: जी।
3: उससे पहले हमको ये जानना होगा कि हमारे देश में कुल कितने बुनकर हैं। 2019-20 में चौथा सेंसस हुआ था, उसके अनुसार लगभग 33 लाख बुनकर हमारे देश में हैं और राज्य में हमारे 6 लाख के करीब हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम के आदमी हैं जिनमें से बुनकर भी हैं। तो राज्य सरकार अपनी विभिन्न योजनाएं जैसे उत्पाद विविधीकरण की योजना, डिज़ाइन डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और आदि पे काम कर रही है। मार्केट लिंकेजेस भी प्रदान करती है, जैसे मेले प्रदर्शनियों में बुनकरों को भेजना, उनके आयोजन का करना, हैंडलूम मार्का की योजना, क्लस्टर डेवलपमेंट कार्यक्रम आदि भी राज्य सरकार चला रही है। उत्पाद विविधीकरण योजना में हम लोग क्या करते हैं कि बुनकरों का एक दल अलग अलग राज्यों में भेजते हैं ताकि वहाँ के प्रोडक्ट को अपने यहाँ लेके आएँ और यहाँ इनोवेटिव आइडियाज लगाएं। तो ये हमारे, और इसके अलावा बुनकरों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार प्रतिवर्ष बुनकरों को पुरस्कार भी देती है और उद्योग रत्न अवार्ड के अंतर्गत भी बुनकरों को पुरस्कार दिए जाते हैं।
1: जी,
3: इसी प्रकार अगर केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, क्लस्टर डेवलपमेंट कार्यक्रम है, मुद्रा योजना में उनको लोन दिलाना, डिज़ाइन डेवलपमेंट के लिए कार्य करना, वीवर सर्विस सेंटर के माध्यम से डिज़ाइन, अगर और हमारी कई संस्थाएं बहुत सारी कार्य कर रही
1: हैं। बहुत बढ़िया बात आप बताया। अब सर राधेश्याम जी, आप बताओ जो आज की जो आपने युवा पीढ़ी है, बाकी हथकरघा जो उद्योग है या कमाई में कई भागीदारी है, कई भूमिका है?
2: अब आज देखा आपके माध्यम से आपने कह चाहूँ कि पूरा देश में प्रधानमंत्री जी की दिखी योजना चल रही है हर क्षेत्र में, चाहे वो कृषि को हो, चाहे कपड़ा को हो, चाहे टेक्सटाइल और चाहे इंजीनियरिंग, सब तबका में और युवा ने जोड़वा खातर एक यहाँ को कैंपेनिंग चलाओ भारत सरकार राज्य सरकार के माध्यम से कि युवा ने पतो लागे कि कितो आसान है हैंडलूम को काम करवो, इनमें पानी की बचत को नहीं, में बिजली भी लागत को नहीं, आराम से जो शून्य खर्चा पर अच्छी चालू कर सका आप, और इनमें प्रॉफिट भी आप खूब मिल सके और वातावरण दूषित को नहीं हुआ, इनमें बात इनमें कोई है वो केमिकल यूज को नहीं हुआ जिससे कि वातावरण खराब हुए या आपने जलवायु कोई फर्क पड़े, तो सब तरीका से स्वास्थ्य का तरीका से, आमदनी का तरीका से, रहन सहन का तरीका से अपन क्षेत्रिया युवा ना सूट कर सके, तो बजाय और क्षेत्र में जा रहा है इस क्षेत्र में भी युवा आना चाहिए जिससे वहाँ की जो मानसिक स्थिति कही जो कंप्यूटर में जो काम कर रहा है जो वहाँ पर कर रहे हैं तो थोड़ी दिक्कत आ रही है ना, तो इस सोच कर कि वो भी आप पारंपरिक एक काम है अपने पुरुषों को जोड़ो, और पूरा विश्व ही चीज़ ने माना कि भारत को कोई सानी को नहीं मामला में यहाँ का कपड़ा में, और जो गरीब तबको वो हाथ को बड़े बड़े कपड़ों तुरंत खरीद भी सके, और इसका सारा स्वास्थ्य का भी चौका चौका प्रभाव है, तो युवाओं से मैं आपके माध्यम से आई अपील करूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इन हैंडलूम से जुड़ो और रोजगार प्राप्त करो और भारत में खुशहाल बढ़ाओ और सरकार आप साथ देसी हमारी बात है।
1: गीत गोस्वामी जी, अगर आपसे जानवो चाहवा कि युवा जो अपनी पीढ़ी है भी की काई भागीदारी है, तो आपकी नज़र से काई भागीदारी है?
3: देखिए, जहाँ तक अभी राधेश्याम जी ने हमें बहुत अच्छा सुझाव दिया कि हम बुनकरों के जो उत्पाद हैं उनको कैसे हमारे युवाओं में, युवा पीढ़ी में लोकप्रिय बनाएं, तो एक भारत सरकार और राज्य सरकार के साथ साथ हम सभी की एक जिम्मेदारी है कि हम प्रेरित करें युवाओं को कि ये ऐसा वस्त्र है जो कि एनवायरनमेंट फ्री है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, विकास को बढ़ावा देता है, साथ ही हम एक इस तरह का कैंपेन चलाएं कि फैशन फॉर डेवलपमेंट के नाम से इस तरह के कार्यक्रम चलाएं जिसमें युवा इस तरह के हाथकरघा उत्पादों को बढ़ावा दें और उनका उपयोग करें, और नई नई जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको भी प्रेरित करें राज्य सरकार और भारत सरकार कि वो इस तरह के वस्त्रों को बनाने में हमें सहयोग दें।
1: जी श्रोतावा, स्टूडियो में आपने सागे है गीत गोस्वामी, भूतपूर्व उपायुक्त उद्योग एवं वाणिज्य विभाग राजस्थान सरकार। सागे ही अपना दूसरा जगह पावना है, वे है राधेश्याम सिंह तंवर, पूर्व चेयरमैन राजस्थान राज्य बुनकर संघ। तो अब पूर्व चेयरमैन साहब, आपसे यो जानना चाहूंगा जी, आप बताया कि जो हथकरघा है वो एक उद्योग कोनी, भारत की आत्मा है, तो हथकरघा क्षेत्र ने सशक्त बनावा के तई काई काई प्रयास हो सके है, काई काई प्रयास और होना चाहिए या काई हो चुका है, अगर आपका दृष्टिकोण से आपका के सुझाव होना चाहिए?
2: आपका मैं श्रोता ने आप चीज बताबो चाहूँ और सरकार से भी निवेदन करबो चाहूँ कि निश्चित रूप से आज के प्रधानमंत्री जी है बार का हर क्षेत्र में बहुत काम करे हुए
1: जी,
2: और चाहे वह विदेश नीति हुए, चाहे कोई कश्मीर की नीति हुए, चाहे मंदिर की नीति हुए, सारे देश की आत्मा की झटकी दिखी मुद्दा आवाने आप 100% प्राप्त करे हैं
1: जी।
2: अब आप आचावा कि जो भारत की आत्मा गाँव में बसे है
1: जी,
2: भारत की आदिकाल से शहरा में कम हो आप रहन सहन, गाँव में ज्यादा हो, और गाँव में जो पौराणिक आप जो रोजगार को साधन हो वो हाथकरघा, किसान और दस्तकार ऐसे जुड़ो हो, अब ये हथकरघा में बहुत ज़्यादा संभावना है रोजगार की
1: जी।
2: तो सरकार को एक तो सर्वे करावाएं एक चीज, दूसरो आने तो बड़ी बड़ी जो सेलिब्रिटी है आस आका माल फैशन शो करावे हैंडलूम का, खादी का पूरा देश में अनिवार्य से करे, एक तरह एवं काम करे, फिर देखा इनमें दक्ष देखा अफसर है जहाँ बार अपने उपायुक्त साहब बैठे हैं तो इन चीज़ें काफ़ी लंबे टाइम से देख रहे हैं, तो आँख की सेवा लेना चाहिए, रिटायर होने के बाद में भी कठिन कठिन की सेवा लेनी चाहिए। तीसरो ऐ देखो राशन कार्ड पर आप जो चीज़ दे रहे हैं भारत की जनता ने
1: जी,
2: बिक सके 5 मीटर कपड़ो आप अनिवार्य रूप से अपना उपभोक्ता ने देवा की बात करें आप, और भी मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार सब्सिडी दे जिससे आपने एक तो उपभोक्ता ने सस्ती चीज़ मिल जाए और घर बैठी मिल जाए, राशन की व्यवस्था के माध्यम से मिल जाए, सस्तों भी मिल जाए, तो उत्पादन में फायदा हो सी, मार्केटिंग में फायदा हो सी और रोजगार में फायदा हो सी, जो आप लोग देश में 140 करोड़ लोग करीब बैठे हैं। अठे जनसंख्या की कोई कमी को नहीं, हाथा ने हाथ खूब बैठे, काम कम है। विदेशा में के कटे 2 करोड़ जनसंख्या है, कटे 1 करोड़ है, कटे 50 लाख है। आपने विश्व में दूसरा स्थान है जनसंख्या के माध्यम से। आप ई समस्या ना आप उत्सव बदल सका, आप अवसर में बदल सका, आप हैंडलूम के माध्यम से। और काफ़ी लोगों ने रोजगार मिल सके है, फेरी में सब्सिडी मिली जाए और नया नया कलात्मक जो वस्त्र है आके ट्रेनिंग दी जाए। जगह जगह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे एक प्रोडक्ट यहाँ को आप निर्धारित कर दें, रिजर्व कर दें, वो थाने बनाने पर अफसर ड्यूटी लगा दें। DIC का अफसर है या उद्योग का अधिकारी है और कोऑपरेटिव का अधिकारी है, अरे सैन्य मिला आप जिम्मेदार दें एक एक जिला में कि भाई एक प्रोडक्ट से बनाओ जिसे 585 कितना अपने जो 150 डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट वाइज बाकी पहचान बनाए, बाकी उपभोक्ता को फायदा मिले और रोजगार मिले। यहाँ कुछ बहुत बढ़िया काम हो सके है। और सरकार जो बेरोजगार की समस्या से जूझ रही है ना, इसमें काफ़ी हद तक आने सफलता मिल सके है। ये वो ट्रेड है, आप लोग एक तरह से अपनी ट्रेडिशन है, एक वो हाथकरघा खादी वो बहुत बड़ा रोजगार को क्षेत्र है। इन्हें आप अनदेखो नहीं करा, कृषि के बाद में ये देश में सबसे बड़ा काम कपड़ा को, हाथकरघा को, खादी को है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यान दें। सरकार से हमारी प्रार्थना है, आपका दर्शक आपका जो श्रोता है बारे में मैं कहूँ, आप भी इस चीज़ से जुड़ो हैंडलूम खादी से, आपने बहुत फायदे सी, आपने स्वास्थ्य में फायदे सी, आपने रोजगार में फायदे सी, आपने समाज में एक भाईचारा की भावना बढ़ी, बटे वो बढ़ा रहे, आप अभी इन्हें पैर रहे हैं तो आपका आत्मगौरव की बात भी है। मिल की बजाय आप लोगों को साथी, आप लोगों को भाई, आप लोगों को सामाजिक व्यक्ति अगर ये चीज़ बढ़ाव है वो भी आप पैर तो एक गौरव की सी बात है। बहुत बहुत आपका मैं कहने एक बार फिर अपील करती हूँ कि वो हैंडलूम पहो, खादी पहो और ज़्यादा से ज़्यादा इन बढ़ावा थे मदद करो, एक दूसरा जुड़ो, परस्पर एक दूसरे की मदद।
1: वाह साहब, बहुत बढ़िया जानकारी आप दिया राधेश्याम जी। चलता चलता रेडियो का माध्यम से कोई संदेश भूतपूर्व चेयरमैन साहब आप माँ का श्रोता माने दे पहुँचाओ तो आपको स्वागत है सर।
2: मैं भारत की गौरव जनता हूँ, आपका श्रोता ने अपील करूँगी ज्यादा से ज्यादा हैंडलूम खादी का वस्त्र पहनो और इस पर ध्यान दो, आता की आत्मा है, हमारी आत्मा है, देश की आत्मा है। जय भारत।
1: गीत गोस्वामी जी, आपको कोई संदेश श्रोताओं के तहत?
3: मैं आप सभी से महात्मा गांधी का एक विचार जो उन्होंने बताया था हैंडलूम और खादी के बारे में कि ये वस्त्र नहीं एक विचार है, उस परंपरा को हम अपनाएं और हम अगर एक निश्चित कर लें कि हम प्रत्येक नागरिक देश के 135 करोड़ जो जनसंख्या है प्रतिवर्ष साल में 5 मीटर अगर कपड़ा खरीद लेते हैं तो हम इससे लगभग 33 लाख जो कि देश के बुनकर हैं उनको पूरे साल भर के लिए रोजगार दे सकते हैं। इसी एक कमिटमेंट के साथ सभी का धन्यवाद, सभी श्रोताओं का धन्यवाद।
1: स्वदेशी अपनावा सुख पावा ई विषय माथे चर्चा करया आपने स्टूडियो में जगह पावना पधारिया। मैं एक बार ओजू आपने बता दूं, राधेश्याम सिंह तंवर पूर्व चेयरमैन राजस्थान राज्य बुनकर संघ, गीत गोस्वामी भूतपूर्व उपायुक्त उद्योग एवं वाणिज्य विभाग राजस्थान सरकार। आप दोनों माँ का स्टूडियो में आया और अठे स्वदेशी अपनावा सुख पावा ई विषय माथे श्रोतावा ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आप दी, एक ताई आप दोनों को घना मानसू, धन्यवाद सर।
0: और मधु बहन, आप इतनी बढ़िया जानकारी हमारे सगले श्रोतावा ताई पुगाई और बढ़िया बढ़िया बात हमारे सागे करी, एक लिए आप रो भी घणो घणो धन्यवाद सा। अब सा धन्यवाद कोरो कोरो तो मैं देवाई कोनी, आप जानो हो हमारी रीति कोनी और एक गीत आप रे लिए मैं जरूर ले रहा हूँ, पर एक छोटे से अंतराल के पाछे एक गीत आप ताई पूग रही है सा।
4: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
5: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ, सिंपली कॉल।
6: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।

वाह सवा ई मीठे सा गीत रसागे ही घड़ी री सुई इशारो कर रही है कि आज रो पणिहारी रो टेम अठे ही पूरो होतो जा रहे है। तो आप सभी सू हमेशा की तरह कवाला ख्याल राखो, आप रो आपरे ख्याल में राखो, मारे कार्यक्रम पणिहारी रे ओजू मिलाला जत्ताई मन दियो आज्ञा, राम राम सा।

0: विधेयक के अनुसार सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को एमएसएमई से खरीदे गए सामान और सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन की कार्यवाही चलाने का प्रयास किया और प्रदर्शन कर रहे सदस्यों से सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। उन्होंने लगातार हो रहे व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी विपक्ष के रवैये पर चिंता जताते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह संसद सत्र के दौरान नियमित रूप से सदन में आते हैं और देर रात तक संसद में मौजूद रहते हैं। लगातार हंगामा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी ने लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। अब सदन की अगली बैठक सोमवार दिन में 11 बजे होगी। इससे पहले सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत छोड़ो आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यसभा में भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारतीय रेलवे हर वर्ष लगभग 58 करोड़ पैकेट भोजन परोसता है और भोजन की गुणवत्ता से संबंधित शिकायतों की संख्या नगण्य है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री वैष्णव ने बताया कि पिछले 3 वर्ष में भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता संबंधी शिकायतों पर IRCTC ने कड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत 5 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया, 54 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, 6 अनुबंध समाप्त किए गए और नियमों का उल्लंघन करने वाले लाइसेंस धारकों को प्रतिबंधित भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हाल ही में शामिल हुए विभिन्न सांसदों से मुलाकात की। इनमें नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI और शिवसेना के सांसद भी शामिल थे। बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में शिवसेना सांसद ज्योति सावित्री नागनाथ वाघमारे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का मानना है कि लगातार हंगामे के कारण नवनिर्वाचित और प्रतिभाशाली सांसदों को सदन में अपने विचार रखने का अवसर नहीं मिल पाता। NCPI सांसद शताब्दी रॉय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में सांसदों की प्रभावी भूमिका और उनके जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की तथा इस दिशा में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया।
1: और उसके बाद उन्होंने बताया जो क्या करना है, हम लोग को कैसे आगे बढ़ना है, राष्ट्रीय हित के लिए हम लोग एक साथ कैसे काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का उद्घाटन करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हथकरघा क्षेत्र केवल आजीविका का साधन ही नहीं बल्कि समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम भी है। नई दिल्ली में आज 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हथकरघा भारत की संस्कृति और सभ्यता का अभिन्न अंग है।
2: हजारों वर्ष से हथकरघा भारत के प्रकृति पोषक सभ्यता की विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा रहा है। इसमें हमारे राष्ट्र की असाधारण विविधता दिखाई देती है। हथकरघा क्षेत्र से रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला संस्कृति और प्रकृति प्रेम को बढ़ावा मिलता है। हथकरघा भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हुआ है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हथकरघा क्षेत्र से 35 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं जिनमें लगभग 25 लाख महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि हथकरघा देश की अद्भुत सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सरकार ने हथकरघा क्षेत्र से जुड़े लोगों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पहले की हैं।
2: हमारे हथकरघा सेक्टर में भारत की रूरल प्रीमियम इकोनॉमी का सबसे सुंदर और मानवीय उदाहरण बनने की संभावनाएं बलवती हुई। महत्वपूर्ण हैंडलूम क्लस्टर्स को आधुनिक प्रौद्योगिकी और सामूहिक प्रशिक्षण विधियों से जोड़ा जा रहा है। बुनकरों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पारदर्शी उपाय सरकार ने हाथ में लिए है। बुनकरों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ सीधे मिलने के रास्ते खुले हैं।
0: राष्ट्रपति ने हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं दी।
2: मैं देश के प्रतिभाशाली बुनकरों,

0: डिजाइनरों, उद्यमियों, विद्यार्थियों और भारत के हथकथा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ।
1: इस अवसर पर वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार हथकरघा को टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल वस्त्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में हथकरघा उत्पादों की मांग बढ़ने की संभावना है और सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि इस बढ़ती मांग का लाभ सीधे बुनकरों तक पहुँचे।
2: 7 अगस्त को ही प्रधानमंत्री ने हैंडलूम दिवस को स्थापित करने का काम किया, बुनकर भाइयों को एक संदेश दिया, आपके नेतृत्व में भारत का वस्त्र बुनकरों के आमदनी को भी एक ऊंचाई पर ले जाने का संकल्प लेता हूँ।
1: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। कुल 22 पुरस्कार दिए गए, जिनमें 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार शामिल हैं। ये पुरस्कार बुनकरों को उनकी उत्कृष्ट शिल्पकला, नवाचार और भारत की हथकरघा परंपरा के संरक्षण में योगदान के लिए प्रदान किए गए। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपराओं को समर्पित 4 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह के एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित लेख को साझा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस लेख में हथकरघा को देश की सबसे बड़ी सभ्यतागत परंपरा में से एक बताया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और चीन ने कल नई दिल्ली में आयोजित भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र की 36वीं बैठक में वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
3: विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों पक्षों के बीच सीमा निर्धारण, सीमा प्रबंधन, संस्थागत तंत्र को मजबूत करने और सीमा पार सहयोग से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ। दोनों पक्षों ने इस बात पर बल दिया कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में पूर्वी एशिया मामलों के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया, जबकि चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग की महानिदेशक हो यानची ने किया। दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लंबित मुद्दों के समाधान तथा किसी भी प्रकार की गलतफहमी और गलत आकलन से बचने के लिए मौजूदा राजनयिक और सैन्य संवाद तंत्र का उपयोग जारी रखने पर सहमत हुए। इनमें कार्यतंत्र के स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य सहमत तंत्र शामिल हैं। भारतीय पक्ष ने सीमा पार नदियों से संबंधित विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र की अगली बैठक जल्द आयोजित करने की आवश्यकता दोहराई। साथ ही चल रही परियोजनाओं से संबंधित तकनीकी जानकारी साझा किए जाने के महत्व पर भी बल दिया। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची बाजपेयी।
1: केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लंबे समय से चल रहे छात्र आंदोलन के बावजूद झारखंड सरकार ने छात्रों की चिंताओं के समाधान के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य में रोजगार की तलाश के दौरान अनेक परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।
4: इसमें कितने बड़ा करप्शन हुआ है, कितनी माताएं ऐसी हैं जिन्होंने अपना गहना बेच दिया, कितने पिता ऐसे हैं जिन्होंने अपना जमीन बेच दिया, कि एक लिस्ट होनी चाहिए कि क्या क्या सितम जो है पिछले 7-8 साल से युवाओं और छात्राओं पर ढाया है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैंने कहा है कि 13 तारीख तक पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट सेशन जब खत्म होगा, यदि तब तक उसका फैसला नहीं होगा, 13 तारीख के बाद मैं वहां आमरण अनशन करूंगा।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवास से कथित रूप से बरामद नकदी के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और अदालत की निगरानी में जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। श्री यशवंत वर्मा के आवास से कथित तौर पर जले हुए नोटों के बंडल मिलने के बाद उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर महाभियोग की कार्यवाही शुरू हुई थी। उन्होंने पिछले वर्ष अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी हिस्सों में आज कई स्थानों पर तेज बारिश दर्ज किया। दिल्ली के लिए आज येलो अलर्ट जारी किया गया है और मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में 12 अगस्त तक लगातार बारिश जारी रह सकती है। वहीं ओडिशा, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। ओडिशा में बाढ़ के बाद राहत और पुनर्वास कार्य जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कुछ हिस्सों में हुई बारिश से बाढ़ की आशंका फिर बढ़ गई है।
5: जलका नदी मथानी में खतरे के निशान 6.50 मीटर को पार कर, जिससे बस्ता और आसपास के इलाकों में निचले स्तर की कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। अधिकारी संवेदनशील तटबंध पर नजर रखे रहे और जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए तैयार है। इस बीच IMD ने अगले 5 दिनों तक पूरे उड़ीसा में व्यापक बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अनुमान लगाया है। मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग और कई अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी गई है। राज्य सरकार ने बाढ़ से प्रभावित 22 जिलों के लिए शुरुआती सहायता के तौर पर 110 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्ज का खिताब जीत लिया है। प्रज्ञानानंद ने उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर जावोखिर सिंदारोव के साथ ड्रॉ खेला। उन्होंने टूर्नामेंट में 35 में से 23 अंक हासिल किए। बैडमिंटन में भारत की रक्षिता रामराज और अश्मिता चालिहा ने दक्षिण कोरिया के आसन में कोरिया मास्टर्स के महिला सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में रक्षिता ने अपने ही देश की तन्वी शर्मा को और अश्मिता ने जापान के हिना अकेची को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NDA में नए शामिल हुए सांसदों से मुलाकात की। संसद में बार बार व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति पर चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 प्रदान किए। देश के कई उत्तर हिस्सों में मूसलाधार बारिश और रक्षिता रामराज तथा अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्स और FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्स, साथ ही दूरदर्शन के DTH चैनल पर। श्रोताओं, जयपुर अजमेर के अलावा आप हमारे कार्यक्रम आकाशवाणी डूंगरपुर, नाथद्वारा, करौली, भरतपुर, झुंझुनू, अनूपगढ़ और कोटपुतली केंद्रों से भी सुन रहे हैं। साथ ही आप हमारे ये कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर और हमारी वेबसाइट newsonair.com पर भी लाइव सुन पा रहे हैं। ये समय है लोक संगीत का। आज इस कार्यक्रम में हमारे कलाकार हैं महेंद्र झोरी। कुछ ही पलों में सुनते हैं इनकी गाई हुई कुछ लोक रचनाएं।
7: भाई, मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
8: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
9: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाएं समाधान।

श्रोताओं, आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से आप सुन रहे हैं लोक संगीत। कलाकार हैं महेंद्र छोरी।

0: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
1: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
2: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।
3: श्रोताओं, आप सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम लोकगीत, महेंद्र झोरी का ही गाया हुआ

श्रोताओं, लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे महेंद्र झौरी के गाए हुए लोकगीत। अब ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत।

आप सुन रहे थे पत्थर के सनम फिल्म का गीत, जिसे गाया था मोहम्मद रफ़ी ने। और अब प्रोग्राम का अगला गीत सुनवा रहे हैं वक्त फिल्म से। इस गीत को गाया है आशा भोसले ने।

श्रोताओं, आप फिल्म संगीत सुन रहे हैं आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले का गाया हुआ। फिल्म का नाम है ये रात फिर ना आएगी।

और अब प्रोग्राम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और साथियों का गाया हुआ गीत ब्रह्मचारी फिल्म से।

श्रोताओं, फिल्म संगीत के आखिरी गीत के रूप में आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और साथियों का गाया हुआ ये गीत ब्रह्मचारी फिल्म से। अब ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.5 एक मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़, साथ ही दूरदर्शन के DTH चैनल पर। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: उमंग कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को मेरा यानी अजीत का नमस्कार। श्रोताओं, आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धर्मंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने। बड़ा ही खूबसूरत पर्यावरण संदेश आपने भेजा है। लिखा है, करते वृक्ष प्रदूषण दूर, देते हैं वर्षा भरपूर। बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस छोटे लेकिन बेहद खूबसूरत पर्यावरण संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो मित्रों, सबसे पहला संदेश हमें मिला है ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से हमारे चिर परिचित श्रोता योगेश ठाकुर जी का। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुम भाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से। ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। अगला संदेश हमें मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का। और आखिरी संदेश जो हमें मिला है वो हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन और कौशल्या देवांगन जी का। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे आपके उमंग कार्यक्रम से। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ हमारी आपकी सबकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो आइए करते हैं आज की चर्चा की शुरुआत। तो श्रोताओं, आज हम एक बार फिर से चलते हैं सुदूर उत्तर पूर्वी सुंदर राज्य मेघालय और पहुंचते हैं वहां के पूर्वी खासी हिल्स में, जिसे हम ईस्ट खासी हिल्स भी कहते हैं। श्रोताओं, इन्हीं पर्वतों में बसा है मावली नोंग गांव। बता दें कि यह चेरापूंजी से लगभग 90 किलोमीटर दूर है और बांग्लादेश की सीमा से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर। अब आइए जानते हैं कि क्या खास बात है इस गांव में। जी, तो आपको बता दें कि मावली नोंग गांव को सन 2003 में एशिया का सबसे स्वच्छ गांव घोषित किया गया था। कहते हैं कि इसका नाम मावली नोंग किसी प्राचीन स्थानीय गांव के मुखिया के नाम पर पड़ा है। श्रोताओं, इस गांव को लोग प्रेम से गॉड्स ओन गार्डन यानी ईश्वर का अपना बगीचा भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ चारों ओर सुंदर फूलों, पेड़ों और हरियाली का अनूठा और सुंदर संसार दिखाई पड़ता है। चारों ओर बादल, झरने और घने बादल इस गांव की खूबसूरती को बहुत बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। श्रोताओं, अब जानते हैं कि इस गांव की सबसे खास बात क्या है। जी, तो इस गांव की सबसे खास बात यह है कि इस गांव में सफाई और स्वच्छता

0: किसी सरकारी विभाग या कर्मचारी का दायित्व नहीं है, लेकिन यहाँ के हर निवासी का काम है। यहाँ हर व्यक्ति गांव की सफाई में भाग लेता है। उस गांव को देखने वाले कहते हैं कि जैसे आप इस गांव की सीमा में घुसेंगे, आपको जगह जगह बांस से बने हुए सुंदर कलात्मक कूड़ेदान लगे हुए मिलेंगे। आप कूड़ा यहाँ वहाँ जहाँ जी चाहे वहाँ नहीं फेंक सकते। सड़क पर एक पत्ता भी दिखाई दे तो लोग तुरंत उठाकर उसे कूड़ेदान में डाल देते हैं। उसके बाद क्या होता है, आइए जानते हैं उसके बाद क्या होता है। उसके बाद श्रोताओं, सप्ताह के अंत में गांव का सारा कचरा एक जगह जमा किया जाता है और उसे जैविक खाद बनाई जाती है। प्लास्टिक और रासायनिक खाद पर पूर्ण प्रतिबंध है। आइए अब बात करते हैं यहाँ के समाज की। मित्रों, यहाँ समाज में मातृसत्तात्मक व्यवस्था चलती है, यानी परिवार का उपनाम माँ के नाम पर चलता है। एक और बहुत ही सुंदर और शिक्षाप्रद बात आपको बताना चाहते हैं श्रोताओं, हम विश्वास करते हैं कि आपको भी ये बात बड़ी अच्छी लगेगी, और वो ये है कि इस गांव को देखने के लिए पूरे सप्ताह पर्यटक देश विदेश से आते रहते हैं, पर्यावरण विशेषज्ञ भी आते रहते हैं। पूरा सप्ताह गांव वालों के लिए बहुत व्यस्त रहता है, इसीलिए यहाँ की ग्राम समिति ने एक निर्णय लिया है। वो निर्णय ये है कि प्रति रविवार को गांव पर्यटकों के लिए पूरी तरह से बंद रखा जाए। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि गांव वाले चाहते हैं वे अपना व्यक्तिगत और पारिवारिक समय यानी क्वालिटी टाइम शांति से बिता सकें। श्रोताओं, इस गांव के बाहर एक बहुत ऊंचा टावर है जिसे स्काई व्यू टावर कहते हैं। ये बांस का बना हुआ है। इस टावर पर चढ़कर पड़ोसी देश बांग्लादेश को साफ साफ देखा जा सकता है। मावली नोंग गांव के पास एक अनूठा पुल है जिसे लिविंग रूट ब्रिज कहते हैं। ये अद्भुत पुल प्राकृतिक इंजीनियरिंग का अनूठा नमूना है। श्रोताओं, इसे लोहे या सीमेंट से नहीं बनाया गया, लेकिन ये रबर के पेड़ों की जड़ों को प्रशिक्षित करके बनाया गया है। सचमुच मावली नोंग गांव अपने आप में एक अद्भुत गांव है और आज के युग में स्वच्छता और सामाजिक सामंजस्य की अनूठी मिसाल प्रस्तुत करता है। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब आज का प्रश्न, आज की जानकारी से, तो हमारा आज का प्रश्न है, मावली नोंग गांव के पास एक अनूठा पुल है जिसे लिविंग रूट ब्रिज कहते हैं, क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मावली नोंग गांव के पास एक अनूठा पुल है जिसे लिविंग रूट ब्रिज कहते हैं, क्यों? श्रोताओ, आप अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल पर भी आप अपना संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की कड़ी में हमारा पहला कार्यक्रम है, कैसे जानते हैं हम अपना अतीत। श्रोताओं, कक्षा 6 की समाज की अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम के द्वारा विशेषकर इतिहास के उन विभिन्न स्रोतों की चर्चा की गई है जिनके द्वारा हम अपने भूतकाल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
1: दोस्तों नमस्कार, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था या आज क्या हो रहा है, हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता
2: है ना साथियों? अच्छा सवाल। यही सवाल निधि और आदिका के मन में भी था। वे छुट्टियों में अपनी नानी के घर गई हुई थी। हुआ यूं कि एक दिन वे समाचार पत्र पढ़ रही थीं। अचानक उनकी निगाह समाचार पत्र के एक अंश पर पड़ी जहाँ छपा था, लगभग 2000 साल पहले। वे सोचने लगीं,
3: भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
4: हाँ, 2000 साल पहले।
5: नानी माँ?
6: हाँ निधि।
5: ओ नानी माँ, कहाँ हो?
6: अरे यही हूँ, आ जाओ निधि, आओ आदिका बेटी।
5: अरे ये क्या सारे बक्से खोल रखे हैं, क्या कर रही हो?
6: हाँ हाँ, बताती हूँ, जल्दी क्या है।
5: कितने ढेर सारे कपड़े हैं नानी माँ, ये तो बहुत पुराने हैं ना?
6: हाँ बेटी, बहुत पुराने हैं, तुमसे और तुम्हारी मम्मी से भी पुराने। और पता है निधि, आदिका, जानती हैं आप ये कपड़े हमने कब पहने थे?
5: नहीं पता, बताओ ना रानी माँ।
6: अरे ये कपड़े तो हमारी शादी के हैं।
5: नाना नानी की शादी के कपड़े? भाई वाह, नानी पहले और आज के कपड़े कितने अलग अलग दिखते हैं, है ना?
6: हाँ हाँ निधि, समय के साथ साथ सारी चीजें बदल जाती हैं।
3: नानी, एक बात मेरे मन में भी आ रही है, और वो ये कि बहुत पुराने बातों को कैसे जाना जा सकता है।
6: अरे बिटिया, ये बताने के लिए तो हमारे पंकज से बढ़िया और कोई नहीं हो सकता।
5: हाँ हाँ, मामा जी से पूछेंगे।
6: हाँ बिटिया, वो तो पुरातत्व वेत्ता है ना। अरे देखो देखो, तुम्हारे नाना जी भी आ गए। आइए आइए ना, देखिए बिटिया कुछ पूछ रही है।
3: नाना जी, पुरातत्ववेत्ता किसे कहते हैं?
5: हाँ हाँ बताइए ना नाना जी।
7: बेटी, बड़ा अच्छा सवाल है। देखो, पुरा यानी पुरानी या प्राचीन, तत्व यानी चीजें या वस्तुएं, और वेत्ता यानी जानकार।
3: अच्छा,
7: पुराने या प्राचीन वस्तुओं की जानकारी रखने वाले को पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। अंग्रेजी में इसे आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। पंकज आज शाम को आएगा तो उससे पूछ लेना, ठीक है?
5: मामा जी।
8: अरे निधि, ओ आदिका, कैसी कट रही तुम्हारी छुट्टियाँ?
3: बहुत अच्छी तरह मामा जी। आज सुबह हम समाचार पत्र पढ़ रहे थे।
8: ये तो बहुत अच्छी बात है
5: जी। उसमें छपा था लगभग 2000 साल पहले, ये लेख किसी सभ्यता के बारे में था मामा जी। भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
8: अच्छा अच्छा, तो ये बात है। आओ आओ यहाँ बैठो। अरे बैठो बैठो, मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, जरा इसे देखो। बता सकती हो कि ये क्या है?
3: ये किसी खुदरी सी शीट की तस्वीर है, इसमें कुछ लिखा गया है, शायद गोदकर।
8: शाबाश निधि, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। ये खुरदरी शीट दरअसल एक पेड़ की छाल है, जिसे भोज वृक्ष कहा जाता है।
5: अच्छा, भोज वृक्ष।
8: हाँ, भोज वृक्ष हिमालय क्षेत्र में मिलता है। इसकी छाल पर या ताड़ के पत्तों पर उन दिनों लोग हाथ से लिखते थे। हाथ से लिखी होने के कारण ये पांडुलिपि कही जाती है।
3: पांडुलिपि, ये हमें कहाँ मिली है?
8: निधि, ये पांडुलिपियाँ ज्यादातर प्राचीन मंदिरों और विहारों से खुदाई में प्राप्त हुई हैं। तुम्हें पता है, कुछ पुरानी गुफाओं में भी मिली हैं।
3: अच्छा।
8: और बेटी, मैं तुम्हें बताता हूँ, इन पांडुलिपियों में उस समय की धार्मिक परंपराओं, राजाओं के जीवन, दवाइयों, कला और विज्ञान की जानकारी हमें मिलती है। हमें कई नाटक और कविताएं भी मिलती हैं।
5: ये किस भाषा में है?
8: बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी तुमने। ये ज्यादातर संस्कृत, तमिल और प्राकृत भाषा में है। उन दिनों प्राकृत भाषा का इस्तेमाल आम लोग करते थे।
5: मामा जी, अब आगे भी बताइए ना।
8: हाँ, बताता हूँ। अरे धैर्य रखो। अतीत या पुराने समय के बारे में हमें पांडुलिपियों से तो पता चलता ही है, लेकिन हमें बहुत सारी जानकारियाँ अभिलेखों और शिलालेखों से भी मिलती हैं।
5: अच्छा।
8: अभिलेख को अंग्रेजी में इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इंस्क्रिप्शन शब्द से ही इंस्क्राइब निकला है, जिसका मतलब है लिखना, खोद कर लिखना या उत्कीर्ण करना। इसको उकेरना भी कहते हैं।
5: अच्छा।
8: और हाँ, अतीत को जानने के लिए हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। ऐसे अभिलेख हमें पत्थर या धातु पर खोद कर लिखे हुए मिलते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराने पत्थर पर लिखा अभिलेख या शिलालेख हमें वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से मिला है।
3: अच्छा।
8: ये सम्राट अशोक के आदेश पर लिखा गया है। पत्थर पर लिखने की कला को एपिग्राफी भी कहते हैं, और शिलालेख को
3: एपिग्राफ।
8: शाबाश निधि।
3: मामा जी, अभिलेख और शिलालेख में क्या फर्क है?
8: देखो, अभिलेख को किसी भी कठोर वस्तु पर लिखा जा सकता है, मतलब ये कोई धातु भी हो सकती है। ये अभिलेख हमें पकी मिट्टी, सिक्के, तांबे और चांदी पर

0: लिखे मिले हैं, लेकिन शिला का मतलब होता है पत्थर। ये लेख पत्थरों पर ही लिखे जाते हैं।
1: मामा जी, आपने शिलालेख की बात की, ऐसे पत्थर पर हमें क्या लिखा हुआ मिलता है?
0: ऐसे पत्थर पर कभी कभी राजा लोग अपने आदेशों को खुदवाते या उत्कीर्ण करवाते थे, ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उसका पालन कर सकें।
2: मामा जी, मैंने सुना है कि भूविज्ञानियों के अध्ययन से भी हमें अपने अतीत के बारे में पता चलता है।
0: आदिका, बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। भूविज्ञानी मिट्टी के नमूनों, पुराने पत्थरों, पहाड़ों और महासागरों का अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कि पहले पृथ्वी कैसी थी और आज क्या उसका स्वरूप कुछ बदला है।
2: ओह, कितना रोचक है ये सब जानना।
0: हाँ आदिका, रोचक तो है ही। तो दोस्तों, हमारा समय अब समाप्त होता है। इस वायदे के साथ कि एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपसे फिर भेंट होगी। अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
3: तो साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब आपके लिए कुछ करने को, तो चलिए बनाते हैं अभिलेख। तो सबसे पहले आप मुलायम मिट्टी या क्ले लीजिए, फिर उसे हाथों से एक पट्टी की तरह बना लीजिए और उसे गोल या चौकोर जैसा कोई आकार दीजिए। अब सतह को किसी सपाट चीज से चिकना कर दीजिए। तो अभिलेख के लिए अब आपकी पट्टी तैयार है। इस मुलायम मिट्टी पर लिखने के लिए आप पेंसिल या किसी नुकीली लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस मुलायम मिट्टी पर अपनी मातृभाषा के कुछ अक्षर या शब्द लिखिए या कोई चित्र बनाइए। मिट्टी को सुखा लीजिए और फिर विद्यालय में अपने मित्रों और शिक्षकों को दिखाइए और इसके बाद इसे सहेज कर रख लीजिए। हो गया ना तैयार आपका अभिलेख। अभी आपने सुना कार्यक्रम कैसे जानते हैं हम अपना अतीत। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मुकुल सिंह, कलाकार रंजीत कुमार, रेणु तंवर, अजीत होरो और पूनम कुदुसिया, बाल कलाकार आदिका और परिनिधि, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सौम्या मलिक। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम कैसे जानते हैं हम अपना अतीत।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए अब सुनते हैं अंत में कार्यक्रम अराउंड द वर्ल्ड। इस कार्यक्रम के द्वारा दो यात्रियों का एक रोचक यात्रा वृतांत प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार उन दो लोगों ने 80 दिनों में पूरी दुनिया का एक चक्कर लगा लिया।
2: Which is the most interesting place you have visited? How did you go there and return? Have you traveled by different means of transport? Is there a mode of transport that you would like to use?
3: Mr. Phileas Fogg lays a bet with some of his friends to go around the world in 80 days. This is the story of how he traveled with his companion Passepartout.

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर की आमेर चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आप सुनते हैं लोक संगीत। कलाकार हैं प्रीति चौहान।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे लोक संगीत, कलाकार थी प्रीति चौहान। अभी कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर की आमेर चैनल से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में पहला गीत ओम शांति ओम फिल्म से, आवाज़ है केके की, बोल हैं विशाल के और संगीतबद्ध किया विशाल और शेखर ने।

सुन रहे थे ओम शांति ओम फिल्म से ये गीत। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से। अगला गीत सुनिए दबंग फिल्म से, आवाज है राहत फतेह अली खान, बोल लिखे हैं फैज अनवर ने, संगीत से सजाया साजिद वाजिद ने।

श्रोताओं, अभी आपने दबंग फिल्म से गीत सुना। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं महबूबा फिल्म से, आवाज़ किशोर कुमार की, बोल लिखे आर्यन बख्शी ने, संगीतबद्ध किया राहुल देव बर्मन ने।

श्रोताओं आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी जयपुर अजमेर के फिल्म प्यार का कर्ज से अमित कुमार और साथियों की आवाज में गीत सुनी, बोल आनंद बख्शी के, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के आखिर में सुनिए अगला गीत। फिल्म का नाम है भ्रष्टाचार। आवाजें सुरेश वाडकर, अनुराधा पौडवाल की, बोल लिखे आनंद बख्शी ने, संगीत बद्ध किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: रे गा मा, तुम भी गाओ।

0: अच्छा तुम ये तो गाओ,
1: तेरे नैना
2: तेरे नैना तेरे।
0: तुम ऐसा करो, ये गाओ,

इसी के साथ फिल्म संगीत का यह सफर अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे ही आइए सुनते हैं युववाणी कार्यक्रम।

0: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
1: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
2: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाएं समाधान।
3: नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम। बज चुके हैं शाम के 5 और आपने ट्यून इन किया है 101.2 आकाशवाणी जयपुर का आमेर चैनल, और मैं हूं आपकी होस्ट कम दोस्त मानसी राजपुरोहित, जिसे आप प्यार से मनु भी बुला सकते हैं। एक छोटे से गांव में एक बुनकर था जो रोज सुबह अपनी कारगाह लेकर बैठ जाता था। एक दिन उनका पोता उन्हें बोला, दादाजी अगर एक धागा टूट जाए तो पूरी डिजाइन खराब हो जाती होगी। दादाजी मुस्कुरा कर बोले, नहीं बेटा, एक धागा टूटने से कपड़ा नहीं रुकता, हम उसे जोड़ते हैं और बुनाई पर फिर से काम करने लगते हैं। दोस्तों, लाइफ भी बिल्कुल हैंडलूम की तरह है। एक टेस्ट खराब हो गया, एक इंटरव्यू में रिजेक्शन मिल गया, एक सेमेस्टर में एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आया, इसका मतलब कहानी खत्म नहीं, सिर्फ एक धागा टूटा है। तो दोस्तों, हर साल 7 अगस्त को हम मनाते हैं नेशनल हैंडलूम डे। आज की कहानी सिर्फ हैंडलूम की नहीं बल्कि उन लोगों की है जो हर बार टूटने के बाद भी दोबारा उठ खड़े होते हैं। और अगर आप स्टूडेंट हैं, एग्जाम्स, प्लेसमेंट या लाइफ से परेशान हैं, तो आज का सफ़र आपके लिए भी है।

0: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
1: तो इस सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल
2: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाएं समाधान।

जर्नलिस्ट ने एक बार पुनकर से पूछा, रोज वही काम करते करते आप बोर नहीं होते? उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, कपड़ा तो रोज एक जैसा लगता है, लेकिन हर डिजाइन में मेरा कल का एक्सपीरियंस और आज का पेशेंस जुड़ा होता है। ऐसे ही हर असाइनमेंट बोरिंग लग सकता है, हर प्रैक्टिस रिपीटेटिव लग सकती है, लेकिन वही रिपीटेशन एक दिन एक्सीलेंस बनती है। क्या आप जानते हैं कि आज ही का दिन क्यों चुना गया नेशनल हैंडलूम डे के लिए? 1905 में इसे दिन स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। लोगों ने फैसला किया कि वो अपने देश में बने कपड़े पहनेंगे और लोकल आर्टिशंस को सपोर्ट करेंगे। आज भी भारत के लाखों बुनकर अपने हाथों से ऐसे कपड़े बुनते हैं जो दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। सोचिए, मशीन एक मिनट में 1000 धागे बना सकती है, लेकिन एक बुनकर हर धागे में अपना वक्त, धैर्य और दिल बुनते हैं।

0: क्या ध्यान दें, पता है जन विश्वास अधिनियम 2026 के द्वारा रेलवे अधिनियम 1989 की कई धाराओं में बदलाव किया गया है।
1: हाँ, अब ट्रेन में बिना टिकट या अनाधिकृत टिकट धूम्रपान जैसे अपराधों पर जुर्माना राशि बढ़ाई गई है।
0: अब रेल परिसर या ट्रेन में धूम्रपान करते पाए जाने पर नए अधिनियम में 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
1: जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसके द्वारा 2000 से 5000 रुपए तक का आर्थिक दंड दिया जा सकता है।
0: ये जन विश्वास अधिनियम ट्रेन में यात्रियों को सुरक्षित, संरक्षित और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने और रेल प्रशासन पर आपका भरोसा कायम रखने के लिए बनाया गया है।
1: उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

करते हैं आपके हित की बात रोजगार एक्सप्रेस के साथ। पहली रोजगार सूचना एसबीआई क्लर्क की है, जिसमें करीब 1500 वैकेंसीज हैं। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए। एज लिमिट अप टू 28 ईयर्स है। इसके आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 अगस्त रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पे देख सकते हैं। मैं इसकी वेबसाइट पुनः दोहराती हूँ, sbi.co.in। अगली सूचना राजस्थान विद्युत निगम की ओर से है, जिसने करीब 2000 पदों पर आवेदन मांगे हैं, जैसे कि जूनियर इंजीनियर, अकाउंटेंट, असिस्टेंट आदि। इसके क्वालिफिकेशन और एज नोट के लिए आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 25 अगस्त 2026 रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट rajasthan.gov.in पे आप जानकारी ले सकते हैं। मैं वेबसाइट पुनः दोहराती हूँ, rajasthan.gov.in। अगली सूचना एम्स की तरफ से है। एम्स नॉर्केट ने करीब 11 जगहों पर नर्सिंग ऑफिसर की आवेदन मांगे हैं। करीब 2000 पदों पर आवेदन लिए जा रहे हैं और इसकी क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग या जीएनएम आदि रखे गए हैं। इसकी लास्ट डेट 13 अगस्त 2026 है। अधिक जानकारी के लिए आप एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट aimsexams.ac.in पे जा सकते हैं। और आज की अंतिम रोजगार सूचना RSSB कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ग्रेजुएशन लेवल की है, जिसके लिए आवेदन ओपन किए जा चुके हैं और इसकी अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट rajasthan.gov.in पे जा सकते हैं। मैं वेबसाइट पुनः दोहराती हूँ, rajasthan.gov.in। दोस्तों ध्यान रहे, एप्लीकेशन भरने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़िए।

जाने से पहले एक छोटी सी कहानी। एक आर्ट टीचर ने अपने इस क्लास में हर स्टूडेंट को एक खाली कैनवस दिया और इस पे बोला कि इस पर अपनी जिंदगी बनाओ। एक स्टूडेंट ने सिर्फ एक काली लाइन बना दी। टीचर ने पूछा, बस इतना ही? स्टूडेंट बोला, मेरी लाइफ में तो सिर्फ प्रॉब्लम ही है। टीचर ने मुस्कुरा कर कहा, कैनवस का 99% हिस्सा अब भी खाली है। तुमने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ उस एक लाइन से लिमिट कर दी। दोस्तों, हम भी अक्सर एक रिजेक्शन, एक लो स्कोर या एक फेलियर को इतना बड़ा बना देते हैं कि अपनी सारी अचीवमेंट्स देखना ही भूल जाते हैं। तो नेशनल हैंडलूम डे हमें सिखाता है कि हर धागा ज़रूरी है, हर रंग ज़रूरी है और हर इंसान की जर्नी भी ज़रूरी है। तो इसी नोट पे अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आप मत भूलिएगा कि लाइफ में हर फेलियर को फीडबैक की तरह लीजिए। सक्सेस वही ले पाता है जो कंसिस्टेंट रहता है। और सपोर्ट योर लोकल आर्टिशंस व्हेनेवर पॉसिबल।

0: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और।
1: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.5 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। श्रोताओं लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आप सुनेंगे चांदनी फिल्म से गीत। आवाज़ें हैं श्रीदेवी और जोली मुखर्जी की। बोल लिखे आनंद बख्शी ने, संगीतबद्ध किया शिवहरी ने।
2: चांदनी

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं तुम्हारी सल्लू फिल्म से। आवाज़ें कविता कृष्णमूर्ति और शशा की, बोल लिखे जावेद अख्तर ने, संगीत बद्ध किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं दिल धड़कने दो फिल्म से। आवाजें याशिता शर्मा, मनीष कुमार टीपू और फरहान अख्तर की, बोल जावेद अख्तर के, संगीतबद्ध किया शंकर एहसान लॉय ने।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत और अभी आपने गीत सुना क्वीन फिल्म से। आवाज़ें थी लब्ध जनुजा की और सोनू कक्कर और नेहा कक्कर की। बोल लिखे अनविदिता दत्त ने, संगीतबद्ध किया अमित त्रिवेदी ने। आइए अब आपको अगला गीत सुनवाते हैं ओम शांति ओम फिल्म से। आवाज़ें शान, उदित नारायण, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान और राहुल सक्सेना की। संगीतबद्ध किया विशाल शेखर ने और बोल लिखे जावेद अख्तर ने।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये सफर अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं।
1: रेडियो ने कभी सरहदों के दायरे नहीं माने, आवाजें सीमाओं, पर्वतों और समंदर के आर पार छनती रहीं। इसी क्रम में आकाशवाणी बना आपका हम सफर, चलते फिरते, सोते जागते, काम करते, कहीं भी कभी भी। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप ऑल इंडिया रेडियो लाइव अब उपलब्ध है तीनों मोबाइल प्लेटफॉर्म्स यानी एंड्रॉइड, iOS और विंडोज पर। इन पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 13 चैनल, जिनमें शामिल हैं विविध भारती, उर्दू सर्विस, AIR गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और रागम चैनल। साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड और FM रेनबो चैनल भी। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जाएं आकाशवाणी की वेबसाइट पर, यानी विजिट करें allindiaradio.gov.in। तो अब आप जहां भी हैं, हम भी वहीं हैं आपके साथ, हमेशा, देश और दुनिया भर में, कहीं भी।
2: भाई, मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
3: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
4: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाएं समाधान।
0: श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम रूपरेखा।

शाम 7 बजे सुनिएगा ग्राम भारती कार्यक्रम, जिसमें बातचीत होगी कुटीर उद्योगों का महत्व विषय पर, और साथ ही लोकगीत का आनंद लीजिएगा, बाजार भाव की जानकारी से अवगत होइएगा। शाम 7:30 पर सुनिएगा खेती बाड़ी कार्यक्रम, जिसमें बातचीत होगी छत पर बागवानी कैसे करें, और ये जानकारी देंगी रेशमा यादव। रात्रि 8 बजे सुनिएगा संसद समीक्षा, जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। श्रोताओं, फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 6:05 पर, रात्रि 8:15 पर और रात्रि 10:30 पर आप फिल्म संगीत सुन सकते हैं। रात्रि 8:30 पर सुनिएगा स्पोर्ट्स स्क्रीन कार्यक्रम, जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। रात्रि 9:30 पर सुनिएगा करेंट अफेयर्स, इस कार्यक्रम को भी हमारे दिल्ली केंद्र से ही रिले किया जाएगा। रात्रि 10 बजे सुनिएगा उर्दू कार्यक्रम गुलिस्ता, कलाम शायर मोइन शेख को आप सुनेंगे। तो श्रोताओं, ये जानकारी थी हमारी आज की सभा में शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 यानी 603 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। जयपुर अजमेर के अलावा आप हमारे कार्यक्रम आकाशवाणी डूंगरपुर, नाथद्वारा, करौली, भरतपुर, झुंझुनू, अनूपगढ़ और कोटपुतली केंद्रों से भी सुन रहे हैं, और साथ ही आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और हमारी वेबसाइट newsonair.com पर भी लाइव सुन सकते हैं।

0: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीकी सांसदों की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा है कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाता सम्मेलन में आज ये बात कही।
2: जहाँ तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं।
1: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाता सम्मेलन पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी।
2: भारत सरकार का इस प्रेस वार्ता में कोई भूमिका नहीं थी। यह प्रेस वार्ता एक निजी मीडिया संस्था द्वारा आयोजित किया गया था। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सरकार उस मंच से कहे गए जो भी शब्द थे उसका समर्थन नहीं करती है, खासकर वो शब्द जो वहां के सरकार के बारे में कही गई।
1: श्री जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के बीच टेलीफोन पर पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति और हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा हुई। प्रवक्ता ने कहा कि भारत और इजराइल के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी है। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने आज इस विधेयक को पारित किया। एक रिपोर्ट।
3: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने सदन संचालित करने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। हंगामा जारी रहने पर लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में आगे बढ़ सकते हैं। लोकसभा में आज डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान अब भी सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की नीति पर कायम है। सरकार ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तारित स्वरूप में स्थायी सदस्यता का समर्थन करता रहा है। लोकसभा में आज विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत परिषद में स्थायी और अस्थायी श्रेणियों के विस्तार और विकासशील देशों के अधिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर लगातार बल देता रहा है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने कॉरपोरेट जगत और वित्तीय पेशेवरों को बॉस स्कैम की प्रति आगाह किया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर ऐसी शिकायतों में तेज वृद्धि हुई है। इनमें खाता विवरण और नियामक संचार के बहाने पेशेवरों और कारोबारियों के व्हाट्सएप खातों को हैक किया जा रहा है। दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान सहित कई राज्यों से एक ही तरह की घटनाएं सामने आई हैं। भारत अगले वर्ष पहले ग्लोबल साउथ फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा। मुंबई में आज ब्रिक्स वेब्स बाजार के दौरान इसकी घोषणा की गई। फिल्म और मनोरंजन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने के लिए कई समझौतों की भी घोषणा की गई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हरियाणा सरकार के अरावली के संरक्षण और वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है। श्री यादव ने कहा कि हरियाणा सरकार ने विशेष रूप से गुरुग्राम और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को जन भागीदारी का अभियान बनाकर उल्लेखनीय कार्य किया है। केरलम के 4 जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। कोईकोड, कन्नूर, वायनाड और कासरगोड जिलों में रेड अलर्ट जारी है। इसके अलावा 4 अन्य जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में रक्षिता रामराज और अश्मिता चालिहा ने महिला सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

सरगम फिल्म से गीत सुन रहे हैं आप। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की, बोल आनंद बख्शी के, संगीतबद्ध किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, सरगम फिल्म से ये गीत सुना आपने। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं, बाजीगर फिल्म से। कुमार सानू और सोनाली वाजपेयी की आवाज़ है, बोल रानी मलिक के संगीत अनु मलिक का।

राधा पोड़वाल के बोल लिखे अजीज क्वैसी ने, संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए अब अगला गीत सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म का नाम लोफर और संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, बोल लिखे आनंद बख्शी ने।

0: के साथ ही फिल्म संगीत का यह सफर यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का जयपुर अजमेर केंद्र है। अब से कुछ ही देर में यानी कि 6:30 पर आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, फिर सुनिएगा जिले की चिट्ठी, तत्पश्चात आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।
1: रेडियो ने कभी सरहदों के दायरे नहीं माने, आवाजें सीमाओं, पर्वतों और समंदर के आर पार छनती रहीं। इसी क्रम में आकाशवाणी बना आपका हम सफर, चलते फिरते, सोते जागते, काम करते, कहीं भी कभी भी। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप ऑल इंडिया रेडियो लाइव अब उपलब्ध है तीनों मोबाइल प्लेटफॉर्म्स यानी एंड्रॉइड, iOS और विंडोज पर। इन पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 13 चैनल, जिनमें शामिल हैं विविध भारती, उर्दू सर्विस, AIR गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और रागम चैनल। साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड और FM रेनबो चैनल भी। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जाएं आकाशवाणी की वेबसाइट पर, यानी विजिट करें allindiaradio.gov.in। तो अब आप जहां भी हैं, हम भी वहीं हैं।

0: फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा नाम मुनिया भाई राठिया है, मैं ग्राम केरा कछार से हूं। 2024 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 93,000 का वित्तीय राशि मिला खरीफ फसल में, कि फसल बीमा जरूर कराएं ताकि फसल में जो नुकसान होता है उसके लिए सहायता मिल सके। फसल बीमा कराना बहुत जरूरी।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, हथकरघा केवल आजीविका का साधन नहीं बल्कि विकास का एक सशक्त माध्यम। प्रदेश में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर कई आयोजन। जयपुर में ब्रिक्स देशों के वाणिज्य मंत्रियों की बैठक का समापन। किसानों और एमएसएमई के हितों को बढ़ावा देने संबंधी कई निर्णयों पर सहमति। राज्यपाल हरिभाव बागड़े ने युवाओं से नशे से दूर रहकर सकारात्मक जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया। और प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में मानसून की सक्रियता से वर्षा का दौर जारी। कल झुंझुनू और सीकर में अति भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट।

0: समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हथकरघा केवल आजीविका का साधन नहीं बल्कि समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम भी है। आज नई दिल्ली में 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हजारों वर्षों से हथकरघा भारत की संस्कृति और सभ्यता का अभिन्न हिस्सा रहा है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र ने देश की समृद्ध विरासत को संरक्षित रखने के साथ साथ रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला संस्कृति और प्रकृति के प्रति प्रेम को बढ़ावा दिया है।
1: हजारों वर्ष से हथकरघा भारत के प्रकृति पोषक सभ्यता की विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा रहा है। इसमें हमारे राष्ट्र की असाधारण विविधता दिखाई देती है। हथकरघा क्षेत्र से रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला संस्कृति और प्रकृति प्रेम को बढ़ावा मिलता है। हथकरघा भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हुआ है।
0: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। राजस्थान के बाड़मेर जिले के बुनकर बरीगा राम को खास किस्म वाली पट्टू साड़ी की उत्कृष्ट शिल्पकला, पारंपरिक बुनाई तकनीक और बेहतरीन डिजाइन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इधर जयपुर के जवाहर कला केंद्र में बुनकर सेवा केंद्र की ओर से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। समारोह को संबोधित करते हुए उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि हाथ से बने प्रत्येक वस्त्र की अपनी अलग पहचान होती है और उसके प्रत्येक रेशे के साथ एक प्रेरक कहानी जुड़ी होती है। यही कारण है कि आज विश्व के प्रतिष्ठित ब्रांड भी भारतीय बुनकरों के साथ जुड़ रहे हैं। कार्यक्रम में उत्कृष्ट बुनकरों को राज्य स्तरीय बुनकर पुरस्कार प्रदान किए गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इस अवसर पर जयपुर के नेशनल हैंडलूम में पहुंचे और हथकरघा उत्पादों का अवलोकन करते हुए खरीदारी की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने लोगों से वोकल फॉर लोकल के तहत हथकरघा उत्पादों की खरीद करने का आह्वान किया।
2: देखिए, आज हैंडलूम डे है और राजस्थान में हैंडलूम का बहुत बड़ा काम है। हथकरघा के माध्यम से जिस तरह से राजस्थान में काम होता है और राजस्थान का हैंडलूम पूरी दुनिया में जाना जाता है। ये हैंडलूम राजस्थान के अंदर बहुत सारे जिलों में काम होता है और इसकी मांग बहुत अत्यधिक रहती है और ये देश और दुनिया में सभी जगह जाता है। और मैं आज राजस्थान के सभी जन से कहना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में वोकल फॉर लोकल जो हमारे प्रोडक्ट हैं, निश्चित रूप से उसको अपनाने का काम करेंगे।
0: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत आज जयपुर में 16वीं ब्रिक्स वाणिज्य मंत्रियों की बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के व्यापार मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया। बैठक में बदलती वैश्विक व्यापार व्यवस्था, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को मजबूत बनाने, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं को अधिक लचीला बनाने, एमएसएमई के अंतर्राष्ट्रीयकरण, व्यापार वित्त तक उनकी पहुंच बढ़ाने तथा डिजिटल सेवाओं को बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में विश्व व्यापार संगठन को केंद्र में रखते हुए विकासोन्मुख, नियम आधारित और सर्वसम्मति पर आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई गई। साथ ही खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक भंडारण से जुड़े विकासशील देशों के हितों की रक्षा पर भी जोर दिया गया। बैठक की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि किसानों और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों के हितों को बढ़ावा देने वाले कई निर्णय रहे। बैठक में ब्रिक्स आर्थिक साझेदारी रणनीति 2030 को भी अंतिम रूप दिया गया। इस रणनीति को सितंबर 2026 में नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में नेताओं की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। संसद ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से सोमवार को मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने भी आज इस विधेयक को पारित कर दिया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्रवाई शुरू होने पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतम राम मांझी ने ये विधेयक सदन में पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र के भुगतान में होने वाली देरी को दूर करना और विवाद निपटान प्रक्रिया को सरल बनाना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में अब से कुछ देर पहले राज्य मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इन बैठकों में किए गए फैसलों की जानकारी मंत्रिमंडल के सदस्यों द्वारा दी जाएगी।

0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_News_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। राज्यपाल हरिभाव बागड़े ने युवाओं से नशे से दूर रहकर स्वस्थ और सकारात्मक जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया है। श्री बागड़े आज बांसवाड़ा जिले के गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नशा व्यक्ति, परिवार और समाज तीनों के लिए घातक है और केंद्र सरकार के नशा मुक्त भारत अभियान के माध्यम से युवाओं को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों के युवाओं से शिक्षा, खेल और रचनात्मक गतिविधियों से जुड़कर समाज और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। इससे पहले राज्यपाल ने गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में जिला कलेक्टर डॉ. इंद्रजीत सिंह यादव, पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग की ओर से कोटपुतली बहरोड के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में एक दिवसीय रोजगार मेला आयोजित किया गया। मेले में 154 युवाओं को प्राथमिक स्तर पर रोजगार के लिए चयन किया गया। उधर हनुमानगढ़ जिला प्रशासन और उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय की ओर से 14 अगस्त को रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। राजीव गांधी स्टेडियम में आयोजित होने वाले मेले में 30 से अधिक प्रतिष्ठित निजी कंपनियां भाग लेंगी, जो इच्छुक युवाओं को रोजगार के अवसर देगी। जिला कलेक्टर डॉ. खुशाल यादव ने मेले में ऑनलाइन पंजीकरण के लिए QR कोड जारी किया है। भारतीय जनता पार्टी के हर घर तिरंगा अभियान के तहत रविवार को जयपुर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। अभियान के प्रदेश संयोजक और भाजपा प्रदेश महामंत्री डॉ. मिथिलेश गौतम ने बताया कि तिरंगा यात्रा सुबह 9 बजे अल्बर्ट हॉल से शुरू होकर बड़ी चौपड़ तक जाएगी। तिरंगा यात्रा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा समेत भाजपा प्रदेश पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, पार्टी कार्यकर्ता और आम नागरिक शामिल होंगे। उत्तर पश्चिम रेलवे 9 से 17 अगस्त तक सभी मंडलों, कार्यशालाओं, स्टेशनों और रेलवे प्रतिष्ठानों में हर घर तिरंगा कार्यक्रम आयोजित करेगा। अभियान के दौरान राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश के ज्यादातर भागों में आज भी मौसम सक्रिय रहने से कई इलाकों में भारी वर्षा दर्ज की गई। भरतपुर और जयपुर संभागों में कहीं कहीं तेज वर्षा हुई, वहीं कोटा, अजमेर और बीकानेर संभागों में मध्यम से हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई। राजधानी जयपुर में दिनभर रिमझिम बारिश का दौर जारी रहा। सवाईमाधोपुर, दौसा, भरतपुर, अलवर, टोंक, चूरू सहित कई जिलों में मध्यम से तेज बरसात हुई। डीग से हमारी संवाददाता ने बताया कि जिले में भारी वर्षा के चलते जल भराव की स्थिति पैदा हुई है।
1: डीग जिले में इन दिनों भारी बारिश हो रही है, जिससे मौसम सुहावना हो गया है और लोगों को उमस और गर्मी से काफी राहत मिली है। साथ ही किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं, क्योंकि इस बार की अच्छी बारिश से खरीफ फसलों की अच्छी पैदावार होने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन इसके साथ ही कई निचले स्थानों पर जल भराव की समस्या खड़ी हो गई है, जिसे लेकर जिला प्रशासन तत्परता से कार्य कर रहा है। पहाड़ी कस्बे और उसके आसपास के कई इलाकों के लिए सिविल डिफेंस टीम को सक्रिय रखा जा रहा है, साथ ही डिजास्टर क्विक रिस्पॉन्स टीम भी स्थापित की गई है। आरजू शर्मा, आकाशवाणी समाचार, डी।
0: मौसम विभाग ने कल झुंझुनू और सीकर में अति भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं कई अन्य जिलों के लिए भारी वर्षा का पूर्वानुमान है। विभाग के अनुसार आगामी एक सप्ताह तक राज्य के पूर्वी इलाकों में मॉनसून सक्रिय बना रहेगा। राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाली अरुंधति चौधरी का कोटा पहुंचने पर स्वागत किया गया। स्वर्ण पदक विजेता ने दूरदर्शन से बातचीत करते हुए राष्ट्रमंडल खेलों में अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि उनकी उपलब्धि से प्रदेश में बेटियों के प्रति लोगों का नजरिया बदलेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हथकरघा केवल आजीविका का साधन नहीं बल्कि विकास का एक सशक्त माध्यम। प्रदेश में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर कई आयोजन। जयपुर में ब्रिक्स देशों के वाणिज्य मंत्रियों की बैठक का समापन। किसानों और एमएसएमई के हितों को बढ़ावा देने संबंधी कई निर्णयों पर सहमति। राज्यपाल हरिभाव बागड़े ने युवाओं से नशे से दूर रहकर सकारात्मक जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया। और प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में मानसून की सक्रियता से वर्षा का दौर जारी, कल झुंझुनू और सीकर में अति भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से धौलपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख गौरव शर्मा ने तैयार किया है। प्रदेश में विकास कार्यों को गति देने के क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जुलाई महीने में धौलपुर जिले के राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के मनिया कस्बे का दौरा किया। फूलपुर स्टेडियम में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री ने लगभग 176 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें बिजली, चिकित्सा, खेल और पार्वती बांध से जुड़े काम शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और विकास परियोजनाओं की जानकारी दी। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जिले भर में गुरु वंदन कार्यक्रम आयोजित किए गए। विभिन्न मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर संतों, महंतों और गुरुओं का सम्मान किया गया। तीर्थराज मचकुंड में विशेष धार्मिक आयोजन और भंडारों का आयोजन हुआ। श्रद्धालुओं ने अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेकर गुरु शिष्य परंपरा के प्रति श्रद्धा व्यक्त की। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जिले में मन दर्पण 2 अभियान शुरू किया गया है। अभियान के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता और आत्महत्या रोकथाम के लिए 5 विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल लागू किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कार्मिकों को प्रशिक्षण देकर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया जा रहा है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर की 4 बालिका कैडेट्स ने हिमाचल प्रदेश में आयोजित अखिल भारतीय बालिका राष्ट्रीय एकता एवं ट्रैकिंग शिविर में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। विद्यालय की टीम ने 11 में से 9 पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। कैडेट्स ने कई कठिन हिमालयी ट्रैक सफलतापूर्वक पूरे किए। चंबल नदी के कटरा घाट पर इन दिनों नन्हे घड़ियाल प्रकृति प्रेमियों का आकर्षण बने हुए हैं। हालांकि अंडों से निकलने के बाद मानसून के दौरान चंबल नदी का तेज बहाव इनके अस्तित्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार अधिकांश घड़ियाल शावक मानसून की पहली तेज बरसात में ही बह जाते हैं। उधर मचकुंड क्षेत्र के लोंगपुर पहाड़ पर पैंथर की गतिविधियां बढ़ गई हैं। इसके बाद वन विभाग ने निगरानी चौकी स्थापित की है। श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं तथा संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। जुलाई के दूसरे सप्ताह में जिले में मानसून की पहली अच्छी बारिश दर्ज की गई। धौलपुर शहर में लगभग 45 मिलीमीटर और जिले में औसतन 70 मिलीमीटर बरसात हुई। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली और किसानों ने खरीफ फसलों के लिए इसे लाभदायक बताया। जिले में इन दिनों ग्रामीण शहरी सेवा शिविरों के फॉलोअप शिविर लगाए गए हैं। इससे पहले लगाए गए ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों की प्रगति की समीक्षा जिला कलेक्ट्रेट में की गई। बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं और आमजन को दिए जा रहे लाभों की समीक्षा की गई और शिविरों के प्रभावी संचालन पर जोर दिया गया। राजस्थान समान नागरिक संहिता समिति की ओर से भरतपुर में संभाग स्तरीय जनसुनवाई में धौलपुर जिले के जनप्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, विधि विशेषज्ञों, सामाजिक संगठनों और विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उन्होंने समिति के सामने अपने कई सुझाव रखे। आगरा रेल मंडल की मेरी सहेली योजना के तहत अकेले यात्रा करने वाली महिला यात्रियों को सुरक्षा और सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। पिछले 3 महीनों में इस योजना के माध्यम से लगभग 64,800 महिला यात्रियों को सहायता प्रदान की गई। चंबल नदी में अवैध बजरी खनन को रोकने के लिए केंद्रीय अधिकारिता प्राप्त समिति ने धौलपुर और मुरैना क्षेत्र की निगरानी चौकियों का निरीक्षण किया। समिति ने निगरानी व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए हाई रेंज CCTV कैमरे लगाने के निर्देश दिए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूजडे अभियान के तहत विद्यालयों में जागरूकता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें विद्यार्थियों को तंबाकू, शराब और अन्य मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों की जानकारी देकर नशे से दूर रहने का संदेश दिया जा रहा है। राजस्थान फुटबॉल संघ द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय बालिका जूनियर फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला तसीमों के फुटबॉल ग्राउंड पर खेला गया। फाइनल मुकाबला धौलपुर और उदयपुर के बीच हुआ। धौलपुर ने पेनल्टी शूट के बाद मिले सडन डेथ में 1-0 से उदयपुर को पराजित कर खिताब अपने नाम किया। धौलपुर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहो, हथकरघा केवल काम धंधा रो साधन नहीं है बल्कि विकास रो मजबूत जरियो है। प्रदेश में आई राष्ट्रीय हथकरघा दिवस रे मौके के आयोजन। जयपुर माए ब्रिक्स देशारा वाणिज्य मंत्रियों री मीटिंग पूरी भी। किसाना और एमएसएमई रा भला ने बधावो देवणु जुड़िया कई फैसला माथे सहमति। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े नौजवानों नशाओं दूर रहर सकारात्मक जिंदगी जीवन बाबत कहो। और प्रदेश आ घणखर हलका माए चौमासा री चोखी बिरखा। काल झुंझुनू और सीकर माए घनी जोरदार बारिश सारू चेताई चियो। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहो है कि हथकरघा हलको केवल कमाई रो जरियो नहीं है बल्कि सगड़ाना विकास रो मजबूत माध्यम है। वे आज नई दिल्ली में राखी जिया 12वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कार्यक्रम में बोल रही हैं। राष्ट्रपति कहो कि हजारा बरसाओं हथकरघो भारत री संस्कृति और सभ्यता रो अटूट हिस्सो रहो है। वे कहो कि ओहल को देश री समृद्ध विरासत न हेर राखण सागे नौकरी धंधा महिलावां ने मजबूत बनावण कला संस्कृति और कुदरतू प्रेम नई बधावो दिनो है।
3: हजारों वर्षे हथकरता भारत के प्रकृति पोषक सभ्यता की विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा रहा है। इसमें हमारे राष्ट्र की असाधारण विविधता दिखाई देती है। हथकरघा क्षेत्र से रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला संस्कृति और प्रकृति प्रेम को बढ़ावा मिलता है। हथकरघा भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हुआ है।
0: कार्यक्रम में राष्ट्रपति साल 2025 रा संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार देर कारीगरान ने नवाजा। बाड़मेर जिला रा बुनकर बरीगा राम नई खास किस्म वाली पट्टू साड़ी री बेहतरीन बुनाई और डिजाइन सारू राष्ट्रीय पुरस्कार देर नवाजी चियो। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस रे मौके बुनकर सेवा केंद्र री ओर राज्य स्तर रो कार्यक्रम जयपुर रा जवाहर कला केंद्र माए राखी चियो। इन माए उद्योग और वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ कहो कि हाथ री कारीगरी बनाई जिया हर कपड़ा री न्यारी पहचान वह है। वे बेहतरीन काम करन वाला बुनकरा ने राज्य स्तर रा बुनकर पुरस्कार देर नवाजा। ये मौके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर रा नेशनल हैंडलूम माए हथकरघा माथे बनाई जा कपड़ा ने निरख्या और खरीददारी कीनी। खबरनवीसा सागे बातचीत करता थका वे जनताओं वोकल फॉर लोकल रा तेत हथकरघा रे जरिए बनाई जिया सामान री खरीदी री अरज कीनी।
4: देखिए आज हैंडलूम डे है और राजस्थान में हैंडलूम का बहुत बड़ा काम है। हथकरघा के माध्यम से जिस तरह से राजस्थान में काम होता है और राजस्थान का हैंडलूम पूरी दुनिया में जाना जाता है। ये हैंडलूम राजस्थान के अंदर बहुत सारे जिलों में काम होता है और इसकी मांग बहुत अत्यधिक रहती है और ये देश और दुनिया में सभी जगह जाता है। और मैं आज राजस्थान के सभी जन से कहना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में वोकल फॉर लोकल जो हमारे प्रोडक्ट है निश्चित रूप से उसको अपनाने का काम करेंगे।
0: ब्रिक्स देशों री भारत री सदारत माए भेवण वाली मीटिंग पहली आ देशों रा वाणिज्य मंत्रियों री 16वीं मीटिंग आज जयपुर माए पूरी हुई। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल री सदारत माए भी मीटिंग माए ब्रिक्स सदस्य देशों रा व्यापार मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल दुनिया री बदलती कारोबारी व्यवस्था बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली ने मजबूत बनावण वैश्विक मूल्य श्रृंखला ने बत्ती लचीली बनावण एमएसएमई इकाइयां ने दुनिया रो बाजार मुहैया करावण व्यापार वित्त ताई वारी पहुंच और डिजिटल सेवावां ने बढ़ावो देवण सरीखा खास मुद्दा माथे चर्चा कीनी।
5: मीटिंग में विश्व व्यापार संगठन ने केंद्र में रखता थका विकास वाली नियम आधारित और सगणा ने एक राय माथे आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली री प्रतिबद्धता दोहराई ची। मीटिंग री खास उपलब्धि किसाना और MSME कारोबारियां रा भला ने बधावो देवन वाला फैसला रही। मीटिंग में MSME सारू व्यापार वित्त ने आसान बनावण, वैश्विक मूल्य श्रृंखला में मदद बधावण, कारोबार नू जुड़िया कागजात ने डिजिटल बनावण और सरहद पार डिजिटल सेवावां ने बधावो देवण जुड़ी कार्य योजनावां ने मंजूरी दीरी जी। इस आगे ब्रिक्स आर्थिक साझेदारी रणनीति 2030 ने अंतिम रूप दियो चियो, जिन्हें आवता महीना नई दिल्ली में होवण वाला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में नेताओं की मंजूरी सारू पेश करी जावेला। संसद सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन बिल 2026 पास करती नो है। वो बिल राज्यसभा सोमवार न पास करती नो हो। लोकसभा री कार्रवाई एक बार टण्या पाछे पाछे शुरू है ताई सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ओ बिल पेश कीनो। इनरो मकसद MSME इकाइया ने चुकारा माए मोड़ो भेवण ने दूर करनू और झगड़ा रा निपटारा रा काम ने आसान बनावनू है। आज जयपुर माए राज्य मंत्रिमंडल री मीटिंग भी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा री सदारत माए भी मीटिंग माए कई खास फैसला करी चिया। आ फैसला री जानकारी मंत्रिमंडल रा सदस्य खबर नवीसा ने देवेला। ए समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े नौजवानों नशाओं दूर रहर स्वस्थ और सकारात्मक जिंदगी जीवन बाबत कहो है। वे आज बांसवाड़ा जिला रा गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय माए राखी जी राष्ट्रीय संगोष्ठी माए बोल रहा है। श्री बागड़े खास तौर जनजातीय हलका रा नौजवानों भणाई लिखाई खेल और रचनात्मक कामाऊ जोड़र समाज और देश बनावण रा काम माए योगदान देवन बाबत कहो। इनु पहली राज्यपाल जिला कलेक्टर SP और दूजा अहलकार सागे मीटिंग कीनी। वह नशा मुक्ति TB री बीमारी खत्म करण और विकास और जनता रा भलाऊ जुड़िया मुद्दा माथे चर्चा कीनी। यूं पहले राज्यपाल सर्किट हाउस में एक पेड़ माँ के नाम अभियान रा तहत पौधा रोप्या। भारतीय जनता पार्टी कानून चलाई चिया हर घर तिरंगा अभियान रा तहत जयपुर में ईद इतवार ने तिरंगा यात्रा निकाली जावेला। अभियान रा प्रदेश संयोजक और भाजपा रा प्रदेश महामंत्री डॉक्टर मिथिलेश गौतम बतायो कि तिरंगा यात्रा समारोह 9 बजे ऐतिहासिक अल्बर्ट हॉल बड़ी चौपड़ ताई निकाली जावेला। तिरंगा यात्रा में भाजपा रा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा समेत जनता रा नुमाइंदा और जनता शामिल फैला। उत्तर पश्चिम रेलवे री ओर हुई 9-17 अगस्त ताई सगला मंडला टेसना और रेलवे रा प्रतिष्ठाना में हर घर तिरंगा कार्यक्रम रख्या जावेला। अरब मौसम प्रदेश रा घनखर हलका में आज ही चोखो में बरसियो। भरतपुर और जयपुर संभाग में कठे कठे तेज बारिश हुई। कोटा अजमेर और बीकानेर संभाग में हल्की बारिश दर्ज करी ची। राजधानी जयपुर में आखा दिन रिमझिम बारिश चलती रही। सवाई माधोपुर दौसा भरतपुर अलवर टोंक और चूरू समेत कई जिला में बरसात रा समाचार है। माणी डीग खबरनवीस बतायो कि जिला में भया चोखा में कई ठोणा पानी भर गयो।
1: डीग जिले में इन दिनों भारी बारिश हो रही है जिससे मौसम सुहावना हो गया है और लोगों को उमस और गर्मी से काफी राहत मिली है। साथ ही किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं क्योंकि इस बार की अच्छी बारिश से खरीफ फसलों की अच्छी पैदावार होने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन इसके साथ ही कई निचले स्थानों पर जलभराव की समस्या खड़ी हो गई है जिसे लेकर जिला प्रशासन तत्परता से कार्य कर रहा है। पहाड़ी कस्बे और उसके आसपास के कई इलाकों के लिए सिविल डिफेंस टीम को सक्रिय रखा जा रहा है। साथ ही डिजास्टर क्विक रिस्पॉन्स टीम भी स्थापित की गई है। आरजू शर्मा, आकाशवाणी समाचार, डी।
5: मौसम विभाग काल झुंझुनू और सीकर माए जोरदार बिरखा वेवन सारू चेतायो है जदके दूजा जिला सारू भारी बारिश रो अनुमान है। महकमारे मुजब आवता एक सप्ताह ताई राज्य रा उगनी हलका माए चौमासारी बिरखा चालती रहवन रा आसार है। लाडला दिना पूरा फ्यार राष्ट्रमंडल खेलां री मुक्केबाजी होड़ माए भारत ने सोना रो तमगो दिरावण वाली अरुंधति चौधरी रो वाना शहर कोटा पुगण पर

0: जोरदार स्वागत करी चियो। अरुंधति दूरदर्शन सागे बातचीत करता थका कहो के एक बेटी रे सोनारो तमगो जीतनो महिलाओं रा मानो जुड़ी सोच बदल रही है।
1: मुझे ये था कि पहला कॉमनवेल्थ है मेरा और मैं पहला ही गोल्ड लेकर आऊंगी। और मेरी तीन फाइट हुई, तीनों ओपोनेंट मेरी बहुत अच्छी थी। दो मेरे लिए थोड़ी टफ रही क्योंकि वो मेरे गेम के ऑपोजिट थी, तो उनसे खेलना मेरे लिए एक चैलेंज रहा। लेकिन जो फाइनल बाउट जिनसे हुई इंग्लैंड से, उनका गेम काफी टेक्निकल था और मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ खेल के। राजस्थान के लिए ऐसा बोला जाता है कि यहाँ लड़कियों पे बंदिश है, पर अगर आप देखेंगे कि पिछले दो दिन से जयपुर से कोटा तक का जो मेरा सफर था उसमें एक लड़की के मेडल का ही जश्न मनाया जा रहा था, तो मुझे खुशी है कि लोगों की सोच बदल रही है और गेम्स को भी इम्पोर्टेंस मिल रही है।
0: चुरुमाए आज स्कूल बसां री औचक जांच करी ची। इन दौरान स्कूल बसां और दूजी बाल वाहिनियां माए गाड़ी री फिटनेस, जरूरी कागजात, लाए बुझावन जुड़िया सामान, शुरुआती इलाज रा सामान, मुश्किल बगत माए गाड़ी में बाहर निकलबा रा दरूजा, गाड़ी रा बुतारा मुजब इन माए बैठन वाला विद्यार्थियों री तादाद और गाड़ी माथे जरूरी जानकारियां मांडन री जाँच करी ची। जाँच रे दौरान चार गाड़ियां रा चालान करी चिया। सीकर माए फतेहपुर रोड माथा नुओ आधार सेवा केंद्र खोलियो जावेला। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI रा मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ विजय काल इनरो उद्घाटन करेला। इणु सीकर और RSR रा हलका ने जनता ने आधार नामांकन समेत बायोमेट्रिक अपडेट सेवा एक ही ठौड़ मिल सकेला। कोटपुतली बहरोड री सरकारी ITI माए कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग री ओरू रोजगार मेलो लगाई चियो। मेला माए 154 नौजवानों ने नौकरी रा प्रस्ताव दिया चिया। हनुमानगढ़ माए जिला प्रशासन और उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय री ओरू 14 अगस्त ने रोजगार मेलो लगायो जावेला। राजीव गांधी स्टेडियम माए राख्या जावन वाला ई मेला माए 30-32 कंपनियां नौजवानों ने नौकरी रा मौका देवेला। जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव मेला माए ऑनलाइन पंजीकरण सारू QR कोड जारी कीनो है। भारत आवता साल पहला ग्लोबल साउथ फिल्म महोत्सव री मेजबानी करेला। आज मुंबई माए ब्रिक्स वेव्स बाजार रे दौरान इनो ऐलान करी चियो। फिल्म और मनोरंजन हलका माए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ने मजबूत बनावन रा मकसद कई करार रोई ऐलान करी चियो। आखिर माए खास समाचार एक फेर सुन ली रहो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहो, हथकरघा केवल काम धंधा रो साधन नहीं है बल्कि विकास रो मजबूत जरियो है। प्रदेश में आई राष्ट्रीय हथकरघा दिवस रे मौके के आयोजन। जयपुर में ब्रिक्स देशाना वाणिज्य मंत्रियों ने मीटिंग पूरी हुई। किसाना और MSME रा भला ने बधावो देवणु जुड़िया कई फैसला माथे सहमति। राज्यपाल हरिभाव बागड़े नौजवानों नशाओं दूर रह सकारात्मक जिंदगी जीवन बाबत कहो। और प्रदेश रा घनखर हलका माए चौमासा री चोखी बिरखा। काल झुंझुनू और सीकर माए घनी जोरदार बारिश सारू चेताई चियो। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। नमस्कार।

हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 7 बजे हैं, आइए सुनते हैं ग्राम भारती कार्यक्रम।

0: ग्रामभारती कार्यक्रम री बाट उड़ीकता सगळा प्यारा श्रोता गणा ने थाकी बहन मनस्वनी रो स्नेह भरो राम राम सा और विशाल भाई सा थाने भी खूब खूब राम राम
1: राम राम मनस्वनी बहन और सगळा ग्राम भारती श्रोताओं ने घना घना राम राम सा।
0: विशाल भाई सा आज काई बात है सा जी, था का जो थे कपड़ा लत्ता जो पहन रहे हो ना वह खूब फबरे और खूब चमक रहे है सा, काई बात है सा?
1: देखो मनस्वनी बहन, आज है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, तो इके तहत आज मैं चौका कपड़ा पहन रहा हो
0: ते हाथ का बुनेड़ा कपड़ा पहन आया हो
1: जी।
0: ए आपना मशीनड़ा कपड़ा को नहीं सा और क्योंकि आज आपा और आपनो पूरो देश रल मिल रहा बना रिया मना रिया है विश्व हथकरघा दिवस। हथकरघा री जो कला है वो केवल एक कपड़ो बुनबारी कला को नहीं सा, बल्कि यह अपने देश ने देश की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता इतिहास और कला रो एक जीवंत प्रतीक है सा। ई अनमोल विरासत ने सहेजबा के खातिर ही देश का लाखों बुनकरा ने अथक परिश्रम ने वाके संघर्ष ने सम्मान देबा के खातिर भारत में आपने हर साल आज ही के दिन 7 अगस्त ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनायो जावे है सा। यो दिन आपने याद दिलाओ चे कि ई मशीना के आधुनिक युग में मानवीय कौशल हाथ री जो कला है वीरो और कोई विकल्प कोनी है सा। और भाई सा थाने बेरो है कि आज को ही जो दिन है वो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के लिए क्यों चुनोगी हो? तो मैं बताऊं सा, आज को दिन ई आटे चुनोगी हो कि आज ही का दिन आपने जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कोलकाता के टाउन हॉल सु स्वदेशी आंदोलन री शुरुआत हुई ही, मतलब आजादी री जो लो ही विदेशी कपड़ा की और चीजा की बहिष्कार री आपने आजादी रे संग्राम रे टेम माए, तो वो आज के दिन हुई ही। ई आटे ही आप आज विश्व हथकरघा दिवस, जिन्हें हथकरघा जिन्हें आपने अपनी जो मारवाड़ी भाषा में चरखो भी किया खड़े है वो दिवस आज आपा मना रहे हैं।
1: देखो सा, बहुत ही तेचो की जानकारी दी आज आपने हथकरघा दिवस की। आपा जी जाना कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि के बाद में हथकरघा क्षेत्र भारत में रोजगार को एक दूसरो बहुत बड़ो स्रोत है। आज जितना भी आप कपड़ा वगैरह पहना तो अब हथकरघा को बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अब अगर आप बात करें तो विशेष रूप ग्रामीण और अर्ध शहरी जगह क्षेत्र हुए जगह कस्बा हो गया वहां में अर्थव्यवस्था की आ रीढ़ की हड्डी है। महिला सशक्तिकरण की अगर आप इम बात कर लें तो ई उद्योगों सब बड़ी खूबी है कि इनमें कुल कार्यबल की 70% महिला शामिल है। इको जो आर्थिक रूप स्वतंत्र और सशक्त बनाने इको मुख्य साधन है। पर्यावरण अनुकूल है, हथगर का उत्पाद पूरी तरह से पर्यावरण का अनुकूल हुआ करे, आम बिजली को उपयोग को नहीं हुआ करे, अक्सर प्राकृतिक रंग और जगह धागा जगह इस्तेमाल आम आप कर रहा बे कार्बन फुटप्रिंट कनेक्ट के बराबर हुआ करे।
0: नीको मतलब आपनो जो हथकरघा से बनेड़ा कपड़ा लत्ता हुआ करे वह आपनी प्रकृति ने क्यों भी नुकसान को नहीं पहुंचावे। और जब आपा दिन पर दिन पर्यावरण प्रदूषण की तरफ बढ़ता जा रहा हाँ तो यह आपनी जिम्मेदारी भी बन जावे है सा कि आपा अशी चीजा ने ज्यादा अपनावा जो आपने पर्यावरण के अनुकूल हो और आपनी प्रकृति ने नुकसान को नहीं पुगावे सा। तो विशाल भाई सा देखो ये तो आपा आज बात कर रहा दिन विशेष री कि आज काई विशेष दिन आपा मना रहा हाँ, लेकिन अब अपना जो श्रोतागण है वे भी सोच रहा होला कि ये आज दोनों बाता चीता ही करेला कि कोई लोक संगीत री भी रुते ऐसा। तो मैं देख रही हूँ ते एक लोक गीत ढूंढ रहा हो, बताओ सा चलावा आपा और सुनावा सगड़ा श्रोतागणा ने भी एक लोक गीत
1: सुनावा सा।

0: વાહ સવા વિશાલ ભાઈ સા, તે લોકગીત તો ઘણો હી ચોખ્ખો સુણાયો સા, પણ આપણે કાર્યક્રમ રો દૂસરો છોર અબ નેડે આગ્યો હે, તો ચાલા ઓર લે ચાલા આપણે કાર્યક્રમ ને જાણકારી રી ઓર।
1: हाँ, तो अब आप जानकारी लेवा कुटीर उद्योग का महत्व, श्रीमती अस्मिता जाट जिन आप देवा माइक हर लेवा जानकारी।
2: मान रखूंगी माँ की ममता का, सर्वश्रेष्ठ नाम रखूंगी अस्मिता का। नमस्कार, मैं अस्मिता जाट कुटीर उद्योग के महत्व के विषय में आपके सामने अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। कुटीर उद्योग से तात्पर्य एक छोटे पैमाने के उत्पादन कार्य से है, जिसे आमतौर पर एक निजी घर से प्रबंधित किया जाता है, जिसका उद्देश्य बड़े कारखानों की तुलना में अधिक कुशलतापूर्वक या रचनात्मक रूप से वस्तुओं का उत्पादन करना होता है। कुटीर उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो कम पूंजी और स्थानीय संसाधनों, हस्तशिल्प, बुनाई का उपयोग करके घर से ही रोजगार प्रदान करते हैं। ये मुख्य रूप से आर्थिक विकास, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने और संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रमुख कुटीर उद्योगों में मिट्टी के बर्तन, हस्तशिल्प, खादी और ग्रामोद्योग, अगरबत्ती बनाना और हस्त निर्मित कागज आदि उद्योग शामिल हैं। कुटीर उद्योगों के मुख्य महत्व रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मिलता है। कम लागत व आत्मनिर्भरता इन उद्योगों को बहुत कम पूंजी और स्थानीय कच्चे माल के साथ शुरू किया जा सकता है, जिससे लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं। संतुलित क्षेत्रीय विकास, ये उद्योग ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में स्थापित होते हैं, जिससे शहरों की ओर पलायन कम होता है। महिला सशक्तिकरण, कुटीर उद्योगों में महिलाएं घर बैठे काम कर सकती हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ती है। सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, ये पारंपरिक कला, शिल्प और हथकरघा को जीवित रखते हैं। कम खर्च में उत्पादन प्रक्रिया घर से ही संचालित होने के कारण इन्हें शुरू करने और चलाने का खर्च बहुत कम होता है। कुटीर उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाती है, जो पारंपरिक हस्तशिल्प और कला को जीवित रखते हैं। आज के डिजिटल युग में इन पारंपरिक उद्योगों में आधुनिक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का समावेश न केवल जरूरी है, बल्कि यह उनके उत्पादकता, गुणवत्ता और बाजार तक पहुँचने को कई गुना बढ़ा रहे हैं। कुटीर उद्योगों में आधुनिक तकनीक और AI का महत्व, उत्पादन और कार्यकुशलता में वृद्धि, स्वचालन, ऑटोमेशन, पारंपरिक उपकरणों की जगह अब बिजली से चलने वाली आधुनिक छोटी मशीन उपयोग की जा रही हैं, जिससे उत्पादन समय कम हो जाता है। गुणवत्ता में सुधार, आधुनिक तकनीकों से उत्पादित वस्तुओं में एक रूपता और बेहतर फिनिशिंग आती है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी उनकी मांग बढ़ती है। बाजार विस्तार और ई कॉमर्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, AI संचालित प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया के माध्यम से कारीगर सीधे वैश्विक ग्राहकों तक अपनी हस्तशिल्प वस्तुएं जैसे कालीन, धातुशिल्प बेच रहे हैं। राजस्थान की ब्लू पॉटरी, सांगानेरी प्रिंट, बंदेज, कोटा डोरिया, मेहंदी, लाख निर्मित आदि शिल्पकारी वस्तुएं विश्व में पहचान स्थापित कर रही हैं। डिजिटल मार्केटिंग, लघु उद्योग अब तकनीक का उपयोग करके अपने उत्पादों को ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं। AI और डेटा आधारित निर्णय, मांग का पूर्व अनुमान, AI टूल के उपयोग करके कारीगर यह अनुमान लगा सकते हैं कि किस मौसम में किस उत्पाद की मांग अधिक होगी, जिससे कच्चे माल की बर्बादी और समय कम होती है। लागत में कमी और संसाधन प्रबंधन से बेहतर उत्पाद बनाए जा रहे हैं। आधुनिक तकनीक और

एआई ने कुटीर उद्योग को स्मार्ट और प्रतियोगी उद्योग में बदल दिया है। ये स्थानीय पारंपरिक कौशल को वैश्विक मंच प्रदान करता है। भारत की अर्थव्यवस्था में कुटीर उद्योगों का बहुत बड़ा योगदान है, जो चमड़े के सामान, सूती बुनाई, कालीन निर्माण, धातु शिल्प और रेशम बुनाई आदि में लगने वाले कुशल श्रम की आपूर्ति करते हैं। इनके उत्पादकों की गुणवत्ता उच्च होती है और कीमतें भी अधिक होती हैं। संस्कृत में एक श्लोक है, उद्यमेन्य सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। कार्य मेहनत से पूरे होते हैं, केवल सोचने से नहीं। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए आज कौशल विकास और स्वरोजगार योजनाओं से आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। कुटीर उद्योग विकासशील और विकसित दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये छोटे पैमाने के व्यवसाय आय के आवश्यक अवसर प्रदान करते हैं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जहां रोजगार सीमित है। आधुनिक तकनीकी प्रगति के बावजूद कुटीर उद्योग उच्च गुणवत्ता वाले हस्तनिर्मित उत्पाद प्रदान करते हैं, जो विशिष्ट बाजार मांगों को पूरा करते हैं, और कम आरंभिक लागत इन्हें व्यक्तियों और परिवारों के लिए सुलभ बनाती है। बड़े पैमाने पर उत्पादित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा करना चुनौतियां पेश करता है, लेकिन कुटीर उद्योगों की अनूठी कारीगरी कई उपभोक्ताओं के लिए आकर्षक बनी हुई है। कुटीर उद्योग से महिलाओं और युवाओं को बहुत लाभ हो रहा है, रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। ग्रामीण महिलाएं अपने परिवार में आर्थिक स्थिति को मजबूत कर पा रही हैं। इस उद्योग से जुड़कर महिलाएं अपनी आय बढ़ा सकती हैं तथा परिवार को आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकती हैं। महिलाओं के लिए अनुकूल कार्य, पैकिंग, अचार बनाना जैसे कार्य महिलाएं घर से ही कर सकती हैं। ग्रामीण विकास में गांव में उद्योग बढ़ाने से पलायन कम होता है और महिलाएं घर पे ही अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही हैं। कौशल विकास युवाओं को व्यापार और अनुभव मिल रहा है, जिससे वे उद्यमशील और कौशल विकसित कर रहे हैं। कुटीर उद्योग भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और वन आधारित उद्योगों को मजबूत बनाकर देश को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कुटीर उद्योगों का उपयोग खाद्य पदार्थ, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, कॉस्मेटिक तथा वस्त्र उद्योग में किया जाता है, जिससे इसकी देश और विदेश में लगातार मांग बढ़ रही है। ये उद्योग विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर प्रदान कर रहा है। कम पूंजी में शुरू होने वाले ये व्यवसाय लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बना रहे हैं। भारत में प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त कुटीर उद्योगों का उत्पादन बढ़ने से आयात पर निर्भरता घटती है और निर्यात बढ़ता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को लाभ मिलता है। स्थानीय उत्पादन, स्थानीय रोजगार और वोकल फॉर लोकल जैसी पहल के माध्यम से कुटीर उद्योग आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। योजनाएं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जैसी यह योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में छोटे उद्योग स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। मुद्रा योजना छोटे व्यवसाय और कुटीर उद्योग शुरू करने के लिए बिना गारंटी के ऋण उपलब्ध कराया जाता है। स्टार्टअप इंडिया योजना युवाओं को नए व्यवसाय और नवाचार आधारित उद्योग शुरू करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। स्टैंडअप इंडिया योजना महिलाओं और अनुसूचित जाति जनजाति के उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने हेतु ऋण सहायता दी जाती है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन स्वयं सहायता समूह के माध्यम से

0: प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को प्रशिक्षण, टूलकिट और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कुटीर उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था और महिलाओं युवाओं को विकसित करने में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उद्योग के उद्देश्य ग्रामीण और स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ाना, महिलाओं और युवाओं को स्वरोजगार के अवसर देना, कम पूंजी में छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना, पारंपरिक कला हस्तशिल्प और कारीगरी को संरक्षित करना, गांव में शहरों की ओर से पलायन कम करना, स्थानीय संसाधनों का सही उपयोग करना, देश की आर्थिक स्थिति और आत्मनिर्भरता को मजबूत बनाना। कुटीर उद्योग के विकास हेतु सरकार के उद्देश्य बेरोजगारी कम करके रोजगार के अवसर पैदा करना, ग्रामीण विकास और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूत करना, छोटे उद्यमियों को ऋण प्रशिक्षण और बाजार उपलब्ध कराना, महिलाओं युवाओं और कारीगरों को आर्थिक सहायता देना, निर्यात बढ़ाकर देश की आय में वृद्धि करना, स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना। कुटीर उद्योग का बहुत बड़ा योगदान देश के विकास के लिए हो रहा है। धन्यवाद।
1: कुटीर उद्योगारे महत्व रे बारे में अति चोखी जानकारी माँ तक और माँ के सगड़ा श्रोतागणा तक पुगाबा के लिए श्रीमती अस्मिता जाट जी था को घणो खूब खूब मानसू धन्यवाद सा। पर विशाल भाई सा देखो सा आपने तो आकाशवाणी दी ते तो जानो हो रीति कोनी है सा कि आपा कोरो कोरो धन्यवाद पुगावा। तो चालो सुनाओ धन्यवाद स्वरूप आपने सगड़ा श्रोतागणा ने और आपने विशेषज्ञ ने एक चोखो सो लोकगीत
2: सुनो सा।

0: वासा वाह, तो चोको गीत सुनाया थे। और अब देखो मनसुनी बहन, आपनों घड़ी की सुइया कर रही है सारो, तो राम भारती श्रोताओं लेवा।
1: आज्ञा। और आपने कार्यक्रम को टेम अठ्यो ही पूरो हो रो है, तो चाला और करा भाई सा,
0: राम
1: राम
0: राम
1: राम सा।
0: सा।

हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ग्राम भारती कार्यक्रम और अब आप सुनेंगे खेती बाड़ी कार्यक्रम।

0: खेतीबाड़ी कार्यक्रम री बाट उड़ीकता सगला काश्कार भाया ने और ढाणिया में काम करती मारी सगली बहनावा ने मनस्वनी रो स्नेह भरो राम राम सा। और विशाल भाई सा थाने भी ओजू खूब खूब राम राम।
1: हाँ राम राम मनस्वनी बहन और सगला खेतीबाड़ी श्रोताओं ने घना घना राम राम सा।
0: भाई साहब देखो है ना, काल मार्कन एक फोन आयो।
1: हाँ
0: फोन आयो तो पहली तो वो यहाँ नॉर्मल आयो, और फिर ना वो आजकल वो जो ऐप चाले ना जी पे आप मैसेज करा हाँ चैट करा हाँ, बीसो एक फोन आयो मार्कन है ना।
1: हाँ
0: वीडियो कॉल की जी हाँ जी मैं आप वो एक फोन हो जी मैं आप तस्वीर भी देख सका हाँ, सामने वाला ने भी देख सका हाँ। वो फोन आयो भाई साहब, और फोन आया

0: फिर मैं मने या केबल आ गया कि मैं ना पुलिस अधिकारी बोल रही हूँ, कमिश्नर बोल रही हूँ, और ना थाने ई जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है, और थे यो फोन को नहीं काट सको, और तने थाने अत्ता पिसा ते ई नंबरा पे अगर डालोला और यो ओटीपी मने बताओला तो थाने जमानत दे दी जाओली। भाई साहब मैं तो घणो डरबगी भाई साहब, यो के है भाई साहब,
1: वो तो डिजिटल अरेस्ट तो कोनी हो कटी।
0: यो डिजिटल अरेस्ट के हुआ करे भाई साहब।
1: देखो आजकल कई सारा फ्रॉड करबा लाग गया है, जगह ठग हुए ना, जगह खुद ने पुलिस सीबीआई और ईडी के नाम हूँ आपने अधिकारी बतार हैर कई लोगों ने घर में कैद कर ले होना पर मजबूर कर बाऊ लाख रुपया ऐंठ लिया करे। और देखो डिजिटल अरेस्ट में ये लोग क्या काम करे है आजकल, जिया थे बताया था फोन आयो ऑनलाइन की तरह ये धोखाधड़ी करया करे और आदमी ने अतो डरा दे जिया थे काल डर गया थे बता रहे हो,
0: हाँ
1: तो डरार बे बैंकों रुपया ऐठन को काम करे है तो
0: भाई
1: पच्चे थे कहीं करियो।
0: भाई साहब, वो तो पुलिस की वर्दी जैसा कपड़ा भी पहन मिलिया।
1: हाँ तो बे सगड़ा ऑनलाइन फ्रॉड आजकल ये उबाल आ गया है, तो घर में कैद कर थाकनो रुपया ऐठनो चाह तो वो
0: भाई साहब थे सही बताया। अब बना जो डिजिटल अरेस्ट की जो प्रक्रिया हो रहा करे ना, ईमा काई करे, सामने वालों ठगी कर वालों जो चोर या करे, वो आपने एक वीडियो कॉल करे, और वीडियो कॉल के माध्यम से वो अपना आपने बड़ो पुलिस को अधिकारी या बड़ो कोई सरकारी अधिकारी बता, और आपने वो जो फोन हो है, जो कॉल हो है, वो भी काटवा को नहीं दे, और आपने सो तरह तरह का सवाल करे, आपने डरावे धमकावे या अपना परिजना के नाम पर आपने धमकी देवे। और डिजिटल अरेस्ट यो ई को नाम यहाँ पढ़ियो कि वो आपने घर में आर कोई ताड़ा कूची को नहीं लगा जावे, वो आपने फोन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से आपने बीमा फसार रखे। ई आटे इन्हें डिजिटल अरेस्ट किया करे है। काल तुम्हें बेजा डरगी।
1: देखो अब मैं थाको डर निकालूं, भारत के कानून में डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई व्यवस्था है ही कोन्या। कोई भी पुलिस या जांच एजेंसी वीडियो कॉल पर कोई नहीं गिरफ्तार नहीं कर सके है और ना ही कैमरा ऑन रखना को दबाव बना सके है। और अपना प्रधानमंत्री जी कई बार मन की बात पर भी कह चुके हैं कि ई फ्रॉड के प्रति अपन सज्जत रहनु चीज़े, और आप भी बोले है कि जांच एजेंसी फोन पर पैसा कदी कौन मांगे।
0: और भाई साहब जब अया कोई फोन आवे जी मारकन काल आयो तो ई की आप पर रपट कड़ा लिखावा।
1: देखो रिपोर्ट तो थे बाद में लिखाई जो यूं पहला थे रुको थोड़ो सोचो हर बी के बाद में एक्शन थाने लेनू है। पहला तो थे कॉल ना काटो तुरंत, वो जगह को फोन आयो बी को तुरंत फोन काट दियो क्योंकि ए जगह वीडियो कॉल करबाड़ा हुआ है ए ठग हुए हैर ई वीडियो कॉल पर ए थन डराया जे थे बताया पुलिस वाला बनर या आजकल जज भी बन जावे कई लोग हैर लोगन डराने लगे, तो अपन बिना डरे कॉल काट देनु है। आपकी कोई भी व्यक्तिगत जानकारी बिन कोनी देनी है, जिया थाकनु काल ओटीपी मांगे आते थे बताए ओटीपी थे कोनी दिया, तो और थे बहुत ही बड़े समझदारी को काम करियो क्योंकि आपनु बैंक को खातो ओटीपी अपना आधार नंबर ये आपने कदे ही नहीं देना चीज़े। और बाने अगर कोई पैसा मांगे है तो आपन बाने कोई भी पैसा नहीं देना चीज़े, और कोई भी अधिकारी हुए तो बिन आपन फोन पर तुरंत पैसा वो कोनी मांगिया करे। और आकी अगर जहाँ थे बता रहे हो कि खटा आपा शिकायत करा तो आपने साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है बी के ऊपर आपा शिकायत कर सका या फिर आपा कॉल कर सका 1930 नंबर माले।
0: भाई साहब थे तो गणित चोखी बात बताया। अब तो मैं आ नंबरा पर और यो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग वेबसाइट पर जा जरूर मारी शिकायत ने दर्ज कराऊंगी, और सगला श्रोतागणा ने भी यही कहबो चाहूंगी कि देखो आप डिजिटल तो बना, आधुनिक तो बना, खूब अच्छो स्मार्टफोन भी चलावा, लेकिन अशा ठग सू और ऐसी धोखाधड़ी सू अपना आपने बचा रखा सा।
1: बिल्कुल, तो अब आपा ती चोकी जानकारी दी, अब आपा एक सुना जानकारी स्वरूप गीत।
0: हाँ जरूर, चोखो से लोकगीत सुनाओ भाई साहब।

0: आ तो चोखो लोकगीत तो भाई साहब ते सुना दिया। अब आपने कार्यक्रम ने ले चाला जानकारी री ओर। तो जानकारी देबा के खातिर आपने स्टूडियो में पधार चुकिया है रेशमा यादव जी, और आसे जानकारी आपने दिलाओला दौलत भाई साहब। तो संभावा आने बागडोर और लेवाया जानकारी
1: लेवा सा।
2: आकाशवाणी का एक खास कार्यक्रम में आगे बढ़ावा रेशमा यादव पीएचडी स्कॉलर है, चोमू सु पदारिया है और यहाँ सु बातचीत कराला घर पर या छत पर बागवानी कया करा। रेशमा यादव सब पहले कार्यक्रम में स्वागत। कार्यक्रम में आप आया छत पर बागवानी की जद भी बात करा तो केवा को मतलब है कि घर की छत पर सब्जियां या फल फूल उगावा की जद आप बात करा वे कौन कौन सा फल व कौन कौन सा पेड़ पौधा आप उगा सका घर की छत पर।
3: छत पर जैसे कि मौसमी सब्जियां मेनली जो लगाई जा सकती है, जैसे कि हरी सब्जियां हो गई, धनिया हो गया, पालक हो गया, मेथी हो गई, फली वाली सब्जियां हो गई, गंवार फली हो गई, मूंग मोठ।

0: जैसे कि भिंडी, टमाटर, मिर्च, बैंगन, बेल वाली सब्जियां जैसे कि लौकी हो गई, तुरई, करेला वगैरह, और जैसे कि नींबू, अमरूद, पपीता, अंगूर, ये भी मतलब गमलों में अच्छे से उगा सकते हैं छत पर। इसके साथ ही फूल जैसे कि गेंदा, गुलाब, चंपा, ये आदि उगाकर भी अपन जैसे घर की छत की सुंदरता भी बढ़ा सकते हैं।
1: बिल्कुल, आज का ये भागदौड़ भरी ज़िंदगी में या बाज़ार में मिलावटी दौर की जद भी बात करा तो आपा यह सोचा कि क्यों ना आपा के घर की ही सब्जियां आपा खा लें। लेकिन शहरा में देखा या जट जमीन कम है या गांव में भी जो दूर दराज खेता में ना जाके कोशिश करे कि घर पे ही कुछ उगा लें। और अब आप बता दी कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी फल सब्जियां आपा उगा सका, फल फूल वगैरह। मतलब कि अगर कोई
0: हाँ
1: सब्जियां उगानी चाहे तो सामान्य सी मिर्ची, टमाटर, बैंगन, कद्दू, लौकी जो आप नाम बताया, शुरुआती क्योंकि छत आपा सोचा कि छत पे की तरीका सु मिट्टी रेवेली, की तरीका सु पानी रेवेला और की तरीका सु आपा चीजा कराला, तो शुरुआत काई काई चीजा की जरूरत पड़े और मेरी शुरुआत की तरीका करा।
0: छत पर खेती करने के लिए सबसे पहले हमें जिन चीजों की जरूरत होगी वो चीज है ग्रो बैग हो गए, गमले हो गए, और जैसे कि पुराने ड्रम या लकड़ी के बक्से भी हम गमलों की जगह यूज में ले सकते हैं। इसके साथ ही हमें ज़रूरत होगी हल्की और उपजाऊ मिट्टी की, जिसमें गोबर की खाद अच्छे से मिली हो, कोकोपीट या बालू मिट्टी अच्छे से मिली हुई हो, ताकि वो गमलों में इजीली जमे नहीं। इसके साथ ही हमें चाहिए होगी कि पानी की अच्छी सुविधा हो और अच्छी किस्म के बीज और पौधे हमारे पास हो, और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि छत पर अच्छी धूप आनी चाहिए। कम से कम पौधों को 5 से 6 घंटे की धूप है जो रेगुलर मिलनी चाहिए। तो सबसे पहले बात आती है कि जो गमले हम काम में लेते हैं उन गमलों में मिट्टी कैसे भरे। तो सबसे पहले गमलों में मिट्टी भरने के लिए उनके नीचे छोटे छोटे पत्थर हो गए, ईंट के टुकड़े हो गए, इन सब चीज़ों को डालना चाहिए ताकि पानी जो है रिस कर और छत पे सीधा पानी नहीं जाइए। इससे पहले ज़रूरी है कि छत जो है उसको कवर किया हुआ होना चाहिए, डायरेक्ट पानी उसमें रिसना नहीं चाहिए। ऐसा कोई मटेरियल छत के ऊपर जैसे टाइल हो गई या और कुछ पन्नी वगैरह, ये मटेरियल उस पर होना चाहिए। अब बात आती है गमलों को भरने की। उनके नीचे जैसे मिट्टी या कोई मोटे छोटे छोटे पत्थर वगैरह ये सब जमा के, और जो मिश्रण हम तैयार करेंगे गमलों में भरने के लिए वो होगा मिट्टी, और उसके अंदर मिक्स करेंगे गोबर की खाद या कंपोस्ट, रेत या बजरी जो हो गई, और उसके साथ ही वर्मी कंपोस्ट या पत्तों की खाद, ये सब मिक्स।
1: केवा को मतलब गमलों या अपन जो भी ट्रे है नीचे भी ने अच्छी तरह से जड़ा पहुंच जावे भी हिसाब हूँ, चाहे कंकर पत्थर डालो, चाहे बजरी डालो या दूसरी चीज़ा सु थोड़ा सा उभार लेना और फिर ऊपर उपजाऊ मिट्टी जो है वो डाल करके और खाद डाल करके आप अभी ने उगा सका। तो बागवानी अगर आप छत पे कर रिया हाँ तो नर्सरी सु ला सका आप जितना भी पौधा वगैरह है, तो नर्सरी से पौधा लिया या जो आप ट्रे वगैरह है, ग्रो बैग वगैरह छत पे पूरा तैयार कर लियो आपा, वैसे अपन काई काई करबा की जरूरत है क्योंकि छत पे पौधा आपा अगर लगा दिया तो बाकी देखभाल है खेत वाली की तरीका से, क्योंकि खेत को तरीको एक अलग है। जब आपा छत पे बागवानी कर रहे हैं तो बाकी देखभाल है वह की तरीका सु खास करा, जिसों की गमला के मायने या ट्रे के मायने, कोई नर्सरी से आप पौधा भी लिया या लगा भी दिया, खास करके मौसम के अनुसार जो भी सब्जियां हैं, जो भी फूल है, जो भी फला की सब्जियां हैं लगा दी, अब नर्सरी से रोपाई के बाद की तरीका से देखभाल करवा की जरूरत है।
0: जी सर, सबसे पहले ज़रूरी होगा कि पौधों को पानी कैसे दें। कई बार ऐसे होता है कि ज़्यादा पानी देने से या बहुत कम पानी देने से भी दिक्कत हो जाती है। जैसे ज़्यादा पानी देने से उसमें कवक लग जाती है और पानी नहीं निकल पाता है, तो जड़ें जो है उसकी ग्रोथ नहीं कर पाती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहली ज़रूरी चीज़ ये है कि पौधों को पानी कितना दे और कब दे, इस चीज़ का जो है पता होना सबसे ज़रूरी है। जैसे कि गर्मियों के टाइम में सुबह और शाम के टाइम पानी देना ज़रूरी है, साथ ही जैसे सर्दियों में 2-3 दिन के अंतराल पर भी पानी दे सकते हैं। और पानी देने के लिए या तो ड्रिप इरिगेशन या प्लास्टिक की जो बोतल होती है उससे बूंद बूंद पानी देने का सबसे अच्छा तरीका है। और बरसात का मौसम हो तो ज़्यादा पानी अगर गमलों में हो तो उसको निकालने की भी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि पौधों की ग्रोथ अच्छे से बनी रहे। इसके साथ ही ज़रूरी है कि जैसे खाद जो उसमें यूज़ कर

0: करते हैं अपन, तो रासायनिक खाद का यूज नहीं करके घर पर ही बनी हुई खाद का हम यूज कर सकते हैं, जिसमें कि घर का निकला हुआ किचन वेस्ट हो गया, सब्जियों के छिलके हो गए, चाय पत्ती हो गई, पत्ते हो गए पेड़ पौधों के, इन सब को गोबर के साथ मिक्स करके एक ड्रम या गड्ढे में डालकर 2-3 महीनों तक छोड़ देना चाहिए, जिससे यह खुद ही कंपोस्ट बन जाएगा। और इसको पौधों में यूज करने से बहुत ही अच्छे परिणाम आते हैं और साथ ही साथ रासायनिक खाद की भी जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा एक चीज और है कि जैसे छत पर बागवानी करेंगे तो जरूरी यह है कि जैसे कि कीट और रोग आई जाते हैं तो उन चीजों का इलाज कैसे करें, तो कीट और रोगों के लिए भी हम जो है रासायनिक पेस्टिसाइड का यूज नहीं करके हम जैविक तरीके से ही उपाय अपनाते हैं, जैसे कि नीम की पत्तियों का रस हो गया, नीम की खली का घोल छिड़क सकते हैं, गौमूत्र, लहसुन और मिर्च के मिश्रण का स्प्रे किया जा सकता है, यदि कीड़े ज्यादा हो तो साबुन के पानी का भी हल्का छिड़काव किया जा सकता है, इससे भी कीट नियंत्रित होते हैं और फल सब्जियां पूरी तरह से सुरक्षित भी होते हैं। जैसे कि बाजार से लाई हुई सब्जियों में रसायन आदि का छिड़काव होता है जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है, और इसी तरीके से हम घर पर जैविक तरीके से छत पर बागवानी कर सकते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी है और पर्यावरण के लिए भी अच्छी है।
1: छत पर बागवानी क्या करा ये विषय पर बातचीत कर रहे हैं रेशमा यादव जी, एक सवाल करियो और आप तो लगभग सी पूरी जानकारी अच्छे तरीका से दे दी, फिर भी जो छत पर बागवानी कर रहा है वहां का फायदा थोड़ा सा समझा दियो ताकि भी चर्चा ने आगे बढ़ाऊं।
0: छत पर बागवानी करना आज के समय में एक बहुत बड़ी जरूरत सी बन गई है। तो छत पर बागवानी के हम फायदों की बात करें तो सबसे पहला फायदा ये है कि यह छोटी जगह में भी सुविधा देता है, और जैसे परिवार को ताजी फल सब्जियां आसानी से घर पर ही मिल जाती है। इसके साथ ही साथ पर्यावरण तो शुद्ध रहता ही है, छत का तापमान भी नियंत्रित रहता है, और यह छत पर बागवानी का जो विषय है वो बच्चों को प्रकृति से जोड़ने और खेती का अनुभव देने का एक बहुत अच्छा तरीका है। इसके साथ ही शहरों में जहाँ जमीन की कमी होती है वहाँ भी छत का उपयोग खेती के लिए एक अच्छा विकल्प है।
1: देखो बड़ी स्थिति में बात करा तो कई लोग शहर के मायने छत पर बागवानी करे है, फल फूल सब्जियां उगावे, लेकिन जो लोग सोच रिया अभी तक कर लिया खेती या बागवानी पे ही सब्जियां उगा लिया, खर्च ने लेर थोड़ा सा चिंतित रहे, तो कितो का खर्चो इनमें आ जावे और की तरीका से इन आगे मेंटेन रखवा की जरूरत पड़े, थोड़ो खर्च के बारे में बता दियो एक बार।
0: तो देखिए किसान भाई सोचते हैं कि छत पर बागवानी करना एक अलग विषय है, तो उनको एक भ्रम होता है कि इसमें बहुत ही बड़ा खर्चा आता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए जैसे शुरुआत में थोड़ा सा खर्च आता है जो किसमें आता है, जैसे नए गमले लाने पड़ते हैं, थोड़ी मिट्टी का जो कंपोस्ट का जो मिक्सर लाना पड़ता है उसमें थोड़ा सा खर्च आता है। उसके बाद तो अधिकांश चीजें घर पर ही आसानी से मिल जाती है, जैसे कि किचन वेस्ट से खाद हो गई, पुराने ड्रम, बोरी वगैरह ये सब घर पे ही मिल जाते हैं जिनको अपन गमलों की तरह यूज कर सकते हैं। इस तरह से छत पर बागवानी बहुत ही सस्ती, टिकाऊ और स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, और यह बिल्कुल भी महंगी नहीं है
1: और पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है।
0: पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है। इसके साथ ही साथ ये मतलब अपने स्वास्थ्य के लिए ऐसे अच्छी है कि जैसे कि शहरों में देखा जाए साथ ही साथ गांवों में भी, जैसे आजकल लोग बहुत ज्यादा बिजी होने लगे हैं, इस थोड़ा सा प्रकृति से जुड़ने का ये एक अच्छा अवसर है। इसके साथ ही इंसान जो है तनाव मुक्त भी रहता है।
1: बिल्कुल के बागो मतलब कि सब्जी बनाना कोई इच्छा होवे या समय होवे, एक बर्तन लेके जाओ, पेड़ा के बीच में
0: जी
1: बैठो,
0: जी
1: गमला सू 4 टमाटर 2 मिर्ची सारी चीजें सब निकाली, बटे की बटे काटी पीटी और प्रकृति से जुड़ता हुआ अच्छी तरह से शुद्ध गुणवत्ता वाली चीजें आपने घर पे ही उपलब्ध हो जाओ। बहुत ही बढ़िया जानकारी आप दे रिया हो। चलता चलता जो लोग या सोच रिया है कि बागवानी छत पे आप कर लिया और अभी तक शुरुआत कौन करी, एक सामान्य सी बात है माने लोगों ने कहीं आप संदेश देनी चाहो कि बिना देरी करिया हुआ गुणवत्ता वाली चीजें अगर चाहिए घर पे ही सब्जियां तैयार करनी है तो आप छत पर बागवानी करके सेहत ने भी अच्छी रख सको, पर्यावरण ने भी अच्छो रख सको और समय की भी बचत कर सको।
0: कि मैं तो यही कहना चाहूंगी कि आज की इस भीड़ भरी जिंदगी में जैसे कि लोगों को समय नहीं होता है बिल्कुल भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखने का, और जैसे कि प्रदूषण आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा है, तो जैसे घर पे बागवानी लगाने से एक तो पर्यावरण शुद्ध रहेगा, तो उनको ताजी ऑक्सीजन मिलेगी और इसके साथ ही साथ घर का तापमान तो नियंत्रित रहेगा ही रहेगा, और लोग जो है उस बागवानी को एक शौक के तरीके से अपनाते हैं, लेकिन वो उनके स्वास्थ्य के साथ साथ ही पर्यावरण के लिए भी बहुत ही लाभदायक होगा।
1: बिल्कुल,
0: मैं तो यही कहना चाहूंगी कि किसान भाई और जो भी मतलब शहरी परिवार है सब इसे आसानी से कर सकते हैं, तो मेरा कहना है कि इसे छोटे स्तर से शुरू करें और पौधों की संख्या धीरे धीरे बढ़ाए। याद रखिए, छत पर बगीचा, परिवार में तंदुरुस्ती और घर में खुशहाली। थोड़ी मेहनत और थोड़ी समझदारी और जैविक तरीके अपनाकर आप भी अपनी छत पर बगीचा उगा सकते हैं।
1: बिल्कुल रेशमा यादव जी, बहुत ही बढ़िया जानकारी, छत पर बागवानी कया करा। आप चोमूसु पधारिया, आप PhD स्कॉलर हैं, कार्यक्रम में आभा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ तो मैंने सुनी बहन, आप जानकारी ली छत पर बागवानी किया करा। हाँ रेशमा यादव जी तीचो की जानकारी दी है, आपने दौलत भाई तीचो की जानकारी ली, दोनों देवा घणु घणु धन्यवाद। और धन्यवाद स्वरूप, सुना एक चोको सो गीत
3: सुनाओ भाई सा।

0: भाई साहब घणो ही चोखो लोकगीत थे सुनाया, लेकिन अब लोकगीत भी आपा सुन लिया, जानकारी भी आपा ले लिया, लेकिन अब आपने कार्यक्रम को दूसरो छोर नेड़े आते जा रहे हो। मतलब घड़ी री सुइया आपा ने इशारों कर रही है कि चालो जी चालो, चाल बारो टेम हो चालियो है। तो आज के खेतीबाड़ी कार्यक्रम में इतो ही। आज के खेतीबाड़ी कार्यक्रम से थे आज्ञा दो मने यानी मनस्वनी ने
1: और विशाल गौड़ ने।
0: तो चाला और करा राम राम सा।
2: खेती बाड़ी।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे खेती बाड़ी कार्यक्रम, जिसका प्रसारण आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से किया गया।
1: मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मैं तो चला जिधर चले रास्ता।
2: अरे ऐसे कहाँ चल दिए?
1: चलना है तो आप भी चलिए आकाशवाणी जयपुर अजमेर के साथ, जो आपको चलना सिखाता है, रास्ता दिखलाता है और मंजिल भी बताता है।
2: तो फिर चलिए।
1: मैं तो चला।
0: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे संसद समीक्षा, जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा।
3: ये आकाशवाणी है। अब आप वैष्णवी से संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनुवारुल हक। लोकसभा की कार्यवाही आज भी विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित रही। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने आज सदन में फिर हंगामा किया, जिसे प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके। सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही सदन ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा के बिना पारित कर दिया। सदन में गतिरोध के लिए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के व्यवहार की आलोचना करते हुए कहा कि विपक्षी सदस्य लोग गृह मंत्री के नाम का नारा लगाकर सदन से चले जाते हैं, लेकिन जब गृह मंत्री अमित शाह सदन में चर्चा का जवाब देंगे तो विपक्ष सुन नहीं पाएगा। सदन की

कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने आगामी 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ का उल्लेख किया। फिर सदन ने कुछ क्षण मौन रखकर देश के स्वतंत्रता आंदोलन में बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद जब लोकसभा अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू कराया तब विपक्ष के सदस्य अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाने लगे और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की अपनी मांग दोहराते हुए नारा लगाने लगे। श्री बिड़ला ने भारत छोड़ो आंदोलन के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान का उल्लेख करते हुए विपक्षी सांसदों से उनसे प्रेरणा लेने को कहा। अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान को भारत ही नहीं पूरी दुनिया मानती है और उनसे प्रेरणा लेती है। उन्होंने कहा कि जब आप सब भी उनसे प्रेरणा ले और देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करने के लिए चर्चा संवाद करें तथा अपने विचारों को अभिव्यक्त करें। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है और उसे चलने देना चाहिए। श्री बिड़ला ने कहा कि बाबा साहेब आम्बेडकर का मानना था कि देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करना है तो चर्चा और संवाद ही इसका रास्ता है। उन्होंने कहा कि वे हर बार आप सबसे आग्रह करते हैं लेकिन उनका आचरण संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं होता है। अध्यक्ष ने कहा कि आपको इस पर विचार करना चाहिए। इसके बाद हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे सदन की बैठक शुरू हुई तो मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित कराने के लिए सदन की पटल पर रखा। इस दौरान विपक्ष के सदस्य अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर लगातार नारेबाजी कर रहे थे। हंगामे के बीच ही सदन ने विधेयक को चर्चा के बिना पारित कर दिया। राज्यसभा में ये विधेयक सोमवार को ही पारित हो चुका है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये लोग आज भी सवेरे से गृहमंत्री का नाम ले लेकर नारे लगा रहे हैं और हंगामा करके गायब हो जा रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह सुबह सुबह संसद में आते हैं और देर रात को ही वापस जाते हैं। वे दिन भर संसद में ही रहते हैं। श्री रिजिजू ने कहा कि जिस दिन यहाँ चर्चा होगी गृहमंत्री अमित शाह जब यहाँ जवाब देंगे तो आप लोग सुन नहीं पाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि नियम के अनुसार जो विधेयक होता है उसी से संबंधित मंत्री को सदन में आना होता है। उन्होंने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि आप यहाँ निर्देश नहीं दे सकते कि कौन से मंत्री आएंगे और किसको जवाब देना है, वे सरकार और आसन तय करते हैं। इसका पीठासीन दिलीप सैकिया ने विपक्षी दलों के सदस्यों से कार्यवाही चलने देने का आग्रह किया और कहा कि आप मन बनाकर आए हैं कि सदन चलने नहीं देंगे, ये सही नहीं है। इसके बाद उन्होंने कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे की स्थिति के कारण आज लगातार 15वें दिन प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके हैं। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 के कारणों तथा उद्देश्यों में कहा गया है कि एमएसएमई आर्थिक विकास के मुख्य कारक हैं, रोजगार सृजन करते हैं और नवाचार को बढ़ावा देते हैं। ऐसी इकाइयां सकल घरेलू उत्पाद और निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देती है। ये देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसमें कहा गया है कि पिछले कुछ समय के दौरान तकनीकी बदलाव, सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित प्रणालियों के बढ़ते प्रयोग और बदलते विधिक परिदृश्य के कारण मूल अधिनियम में बदलाव की आवश्यकता है। इस विधेयक के माध्यम से 2006 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान है। विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि एमएसएमई के निःशुल्क और स्वैच्छिक पंजीकरण के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म अधिसूचित किया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि एमएसएमई की तरलता के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए इन इकाइयों से वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद के मामले में केंद्र के अधीन सार्वजनिक उपक्रमों को उनके इनवॉइस के निस्तारण व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली प्लेटफॉर्म के माध्यम से करना होगा। विधेयक में इस बात के भी प्रावधान है कि राज्य सरकारें अपने सार्वजनिक उपक्रमों के लिए भी इस तरह के उपबंध करेंगी। इस दौरान सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित कई सांसदों के प्रश्नों के लिखित उत्तर दिए।

स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सदन को बताया कि इस साल 31 मई तक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के कारण राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 2000 से ज्यादा अस्पतालों को सूची से हटा दिया है और 1200 अन्य अस्पतालों को निलंबित कर दिया है। उन्होंने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि योजना के दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए 29 प्राथमिकी भी दर्ज की गई है और लगभग 303 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नियमों के उल्लंघन के कारण 2,359 अस्पतालों को सूची से हटाया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना में धोखाधड़ी के मामले में कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई जाती है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के अंतर्गत राष्ट्रीय धोखाधड़ी रोधी इकाई संदिग्ध दावों का पता लगाने के लिए AI और मशीन लर्निंग पर आधारित स्वचालित प्रणाली का इस्तेमाल करती है। मंत्री ने कहा कि संदिग्ध माने गए दावों के भुगतान से पहले जांच 31 जुलाई 2026 तक 676 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई है। आयुष्मान भारत योजना देश के आबादी के निचले 40% हिस्से को द्वितीय और तृतीय स्तर के अस्पतालों में भर्ती कराने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5,00,000 रुपए का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवरेज देती है। ये योजना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा रही है। श्री नड्डा ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान पात्र लाभार्थियों के लिए लगभग 4 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए, अस्पताल में भर्ती होने के लगभग 3 करोड़ मामलों को मंजूरी दी गई और योजना के अंतर्गत 5,000 से अधिक अस्पतालों को सूची में शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने इस योजना को लागू करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को साल के दौरान 8,400 करोड़ रुपए से अधिक जारी किए गए। एक अन्य प्रश्न के जवाब में श्री नड्डा ने कहा कि 31 जुलाई 2026 तक देश में लगभग 96 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते आभा बनाए गए थे, जिनमें से 5 करोड़ से अधिक खाते गुजरात में बनाए गए। उन्होंने कहा कि आभा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का एक अहम घटक है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक है पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण आज भी गतिरोध बना रहा। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी और हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। उच्च सदन की बैठक पूर्वाहन 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आगामी 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ का जिक्र करते हुए कहा कि करो या मरो के नारे के साथ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी के लिए जो संघर्ष किया उसकी वजह से ही आज हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि करो या मरो के आह्वान ने लाखों देशवासियों को सभी बाधाओं से ऊपर उठकर एकजुट होने और राष्ट्र की स्वतंत्रता के साझा लक्ष्य के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। सभापति ने कहा कि गंभीर दमन, जेल और अनेक कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद स्वतंत्रता सेनानियों ने अदम्य साहस, दृढ़ संकल्प और देश की आजादी के प्रति अटूट प्रतिबद्धता दिखाई। उनके निस्वार्थ बलिदान और दृढ़ इच्छा शक्ति ने स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत किया तथा 1947 में देश की आजादी का मार्ग प्रशस्त किया। बाद में सदस्यों ने स्वतंत्रता संग्राम के वीरों के सम्मान में कुछ क्षण के लिए मौन रख उन्हें श्रद्धांजलि दी। सभापति ने इसके बाद जैसे ही शून्यकाल की कार्यवाही शुरू की तभी विपक्षी सदस्यों ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मॉनसून सत्र के दौरान संसद में गृह मंत्री की लगातार अनुपस्थिति का मुद्दा उठाया। श्री खड़गे ने कहा कि सरकार सभापति की टिप्पणियों का सम्मान नहीं करके सदन का अपमान कर रही है। कल सभापति राधाकृष्णन ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से कहा था कि वे विपक्ष के भावनाओं को गृह मंत्री तक पहुंचाएं और सदन में उनकी मौजूदगी की मांग पर विचार करें। विपक्षी दल

0: 20 जुलाई को संसद की ओर मार्च कर रहे प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री से सदन में एक बयान देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि श्री रिजिजू ने कहा कि सभापति की ओर से इस मामले में कोई निर्देश नहीं दिया गया है और विपक्ष के नेता सदन को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब सत्र चलता है तब गृह मंत्री पूरे दिन सदन में मौजूद रहते हैं और मंत्री अपने मंत्रालयों के एजेंडे के अनुसार संसदीय कार्यवाही में हिस्सा लेते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष ये तय नहीं कर सकता कि कौन सा मंत्री कब सदन में आएगा। श्री रिजिजू ने कहा कि सभापति ने केवल टिप्पणी की थी लेकिन कोई निर्देश नहीं दिया था। संसदीय कार्य मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्य नारेबाजी करते हैं और फिर संसद से बाहर चले जाते हैं। उन्होंने इस व्यवहार की निंदा की। हंगामे के बीच ही सभापति ने सदस्यों से शून्यकाल में लोकहित के मुद्दे उठाने के लिए कहा। बीजू जनता दल के सुलता देव ने पखाला भात की विशिष्टता और उड़ीसा की परंपरा में इसके महत्व को रेखांकित करते हुए इस व्यंजन को GI टैग देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पखाला भात केवल एक भोजन नहीं बल्कि राज्य की संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने सरकार से इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने की मांग की। भाजपा के प्रकाश चिक बाराइक ने उत्तर बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में युवाओं की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए एक अत्याधुनिक स्टेडियम बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की कमी नहीं है लेकिन उन्हें उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण अपनी प्रतिभा को निखारने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भाजपा के अमरपाल मौर्य ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या, प्रयागराज और बुंदेलखंड क्षेत्र के धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए इन क्षेत्रों को जोड़ने वाले राम दर्शन रेल पथ गलियारे के निर्माण की मांग की। उन्होंने कहा कि अयोध्या, प्रयागराज और बुंदेलखंड क्षेत्र भारत की आध्यात्मिक विरासत और धार्मिक परंपराओं के प्रमुख केंद्र रहे हैं तथा इन क्षेत्रों का संबंध भगवान राम के जीवन और उनसे जुड़ी आस्थाओं से है। उन्होंने कहा कि यदि राम वन गमन मार्ग से जुड़े प्रमुख स्थानों को एक ही रेल गलियारे के माध्यम से जोड़ दिया जाए तो इससे श्रद्धालुओं को काफी सुविधा मिलेगी। जब ये सदस्य अपने मुद्दे उठा रहे थे तो विपक्षी सदस्य लगातार नारेबाजी और हंगामे कर रहे थे। हालांकि सभापति ने उनसे सदन की कार्यवाही चलने देने की कई बार अपील की लेकिन इस अपील का कोई असर न होते देख उन्होंने 11:30 पर बैठक को दोपहर 12 तक स्थगित करने की घोषणा की। दोपहर 12 बैठक पुनः शुरू होने पर सभापति राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू करने को कहा। उन्होंने समाजवादी पार्टी के रामजी लाल सुमन से पूरक प्रश्न पूछने को कहा। सुमन ने ट्रेनों में कवच और सिग्नल प्रणाली लगाए जाने से संबंधित विषय पर पूरक प्रश्न पूछने के बजाय कहा कि सदन में गतिरोध कायम है और विपक्ष अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा चाहता है। सभापति ने सुमन को अपनी बात पूरी करने का मौका दिए बिना ऑल इंडिया अन्ना DMK सदस्य डॉ. एम थंबी दुरे से आज की प्रश्नावली में सूचीबद्ध से प्रश्न से संबंधित पूरक प्रश्न पूछने के लिए कहा। थंबी दुरे ने पूरक प्रश्न पूछा और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका जवाब भी दिया लेकिन हंगामे की वजह से सदन में उनकी बात नहीं सुनी जा सकी। सभापति ने सदस्यों से शांत रहने और प्रश्नकाल चलने देने की अपील की लेकिन उनकी अपनी बात का असर न होते देख उन्होंने 12:04 पर बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: अभी आप सुन रहे थे संसद समीक्षा जिसका प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया गया। श्रोताओं अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत। फिल्म संगीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को राखी का नमस्कार। मौसम औसम भी है, बहुत खूबसूरत मौसम है, बारिश का मौसम है, सावन का महीना है, बादलों ने आसमान को घेरा है, हवाओं में मिट्टी की खुशबू है और दिल में बस एक ही उमंग, क्या यही है ना? यही सुहाने मौसम में याद और संगीत की फुहारों के साथ सुनते 1969 की फिल्म में आया सावन झूम की काको

सावन सिर्फ बारिश लेकर नहीं आता, ये तो पुराने प्यार, मीठी यादें, दिल की अनकही बातें भी साथ लेकर आता है। मौसम भी है सुहाना और गीत भी है पुराना, ये सावन में थोड़ा झूम लिया जाए।

सभी जगह ऐसा ही माहौल हो रहा है, बारिश हर जगह हो रही है और झूले भी पड़े हैं, घटाएं भी घिरी हुई है और दिल कह रहा है बस संगीत के साथ बहते जाओ और आया सावन झूम के गीत सुनते जाओ। सावन सिर्फ बारिश लेकर नहीं आता है तो मीठी यादें भी लेकर आता है। आइए अब आपको अगला गीत सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले हम बता देते हैं कि अभी आपने आया सावन झूम के फिल्म से गीत सुना था। आवाज़ें थी लता मंगेशकर और रफ़ी साहब की, बोल आनंद बख्शी के संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और अगले गाने की ओर बढ़ते हैं, अगला गाना जो आपको और भी इस मौसम के साथ, इस ऋतु के साथ आपके दिल को खुश कर देगा। जब मौसम करवट लेता है, हवाओं में खुशबू घुलती है और पेड़ों की डालियां झूमने लगती है, तो दिल तो बस यही कहता है ना कि ऋतु का बदलना सिर्फ मौसम का बदलना नहीं होता, ये तो दिल में उमंग, चेहरे पर मुस्कान और फिजाओं में संगीत भर देता है। सुखिंदर सिंह की आवाज़ में अभी आप ये गीत सुनेंगे, 1947 अर्थ फिल्म से, बोल जावेद अख्तर के, संगीत ए आर रहमान का।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये सफर यहीं संपन्न होता है। रात्रि 10:30 पर आप फिर से फिल्म संगीत सुन सकते हैं। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। 8:30 पर आप सुनेंगे स्पोर्ट्स स्क्रीन, 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार समाचार संध्या, रात्रि 9:00 न्यूज़ एट 9, 9:15 पर उर्दू में समाचार प्रसारित होंगे और रात्रि 9:30 पर हमारे दिल्ली केंद्र से ही करंट अफेयर्स कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा।
1: मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मैं तो चला जिधर चले रास्ता।
2: अरे ऐसे कहाँ चल दिए?
1: चलना है तो आप भी चलिए आकाशवाणी जयपुर अजमेर के साथ, जो आपको चलना सिखाता है, रास्ता दिखलाता है और मंजिल भी बताता है।
2: तो फिर चलिए।
1: मैं तो चला।
0: श्रोताओं, हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही देर में स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम प्रसारित होगा।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नज़र स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में तितली मांझी ने जीता रजत पदक। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में रक्षिता रामराज और अश्मिता चालिहा ने महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश किया। आर प्रज्ञानंद ने जीता सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्ज का खिताब। एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में मोहम्मद अशफाक ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई। AHF जूनियर एशिया कप के लिए भारतीय पुरुष टीम का ऐलान, अनमोल एक्का बने कप्तान। और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने खिलाड़ियों के चयन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, खिलाड़ी केंद्रित शासन और खेल तंत्र में संस्थागत सुधारों का आह्वान किया। भारोत्तोलन से, जहां तितली मांझी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए देश के नाम पदक किया है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज तितली मांझी ने महिलाओं के 45 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। प्रतियोगिता के पहले दिन तितली ने स्नैच में 65 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 80 किलोग्राम भार उठाकर कुल 145 किलोग्राम वजन के साथ ये पदक हासिल किया। और श्रोताओं, आपको बता दें कि इसी स्पर्धा में परिश्मिता गोगोई 141 किलोग्राम के कुल वजन के साथ चौथे स्थान पर रही। परिश्मिता स्नैच में 65 और क्लीन एंड जर्क में 76 किलोग्राम वजन ही उठा सकी। ये प्रतियोगिता 14 अगस्त तक खेली जाएगी और उम्मीद करें कि जितने भी भारतीय खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं वो अलग अलग स्पर्धाओं में पदक जीतें। और अब रुख कर लेते हैं बैडमिंटन कोर्ट की ओर, जहां कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में रक्षिता रामराज और अश्मिता चालिहा ने महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज रक्षिता ने तन्वी शर्मा को और अश्मिता ने हिना केची को हराया। अश्मिता और रक्षिता सेमीफाइनल में कल आमने सामने होंगी। सुनते हैं हमारे सहयोगी विशाल की रिपोर्ट।
1: विश्व में 50वें नंबर की खिलाड़ी अश्मिता ने टूर्नामेंट का अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर करते हुए क्वार्टर फाइनल के रोमांचक मुकाबले में जापान की शीर्ष वरीयता प्राप्त हिना अकेची को 20-22, 21-15, 21-19 से पराजित किया। हिना ने अच्छी शुरुआत करते हुए 7-5 की बढ़त बना ली, जिसके बाद अश्मिता ने स्कोर 7-7 से बराबर कर दिया। लेकिन भारतीय खिलाड़ी की कुछ गलतियों से जापान की खिलाड़ी ने इंटरवल तक 11-9 की बढ़त हासिल कर ली। अश्मिता ने हालांकि कड़ी चुनौती पेश की, उन्होंने 12-12 और फिर 15-15 पर स्कोर बराबर कर लिया। इसके बाद उन्होंने 17-15 और 18-16 से बढ़त भी बना ली। हालांकि हिना ने यहां एक बार फिर वापसी की और पहला गेम जीत लिया। दूसरे गेम में अश्मिता ने जोरदार वापसी की, स्कोर 7-7 से बराबर होने के बाद उन्होंने लगातार 6 अंक जीतकर 13-7 की बढ़त बना ली। हालांकि हिना ने अंतर को कम करके 14-16 कर दिया, लेकिन भारतीय खिलाड़ी ने संयम बनाए रखा और अगले 6 में से 5 अंक जीतकर मैच को निर्णायक गेम तक पहुंचा दिया। निर्णायक गेम भी कुछ इसी तरह चला, जिसमें अश्मिता ने 9-3 की बढ़त बनाई और इंटरवल तक 11-9 की बढ़त बरकरार रखी। उन्होंने इसे 18-11 तक जरूर पहुंचाया, लेकिन हिना ने फिर जोरदार वापसी की और लगातार 6 अंक जीतकर अंतर को 17-18 तक कम कर दिया। अश्मिता ने अंतिम क्षणों में अपना संयम बनाए रखा और यादगार जीत हासिल की। उधर रक्षिता ने एक गेम से पिछड़ने के बाद बेहतरीन वापसी करते हुए तीसरी वरीयता प्राप्त और अपनी ही देश की तन्वी शर्मा को 1 घंटे से अधिक समय तक चले मुकाबले में 18-21, 21-19, 21-18 से पराजित किया। तन्वी के खिलाफ ये उनकी चौथी जीत है। पहले गेम में रक्षिता ने 13-8 की बढ़त बनाई, लेकिन तन्वी ने शानदार वापसी की और अगले 9 में से 8 अंक हासिल किए और स्कोर को 8-13 से 16-14 तक ले जाने के बाद गेम अपने नाम कर लिया। दूसरे और तीसरे गेम में भी दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। दोनों ने एक दूसरे से आगे निकलने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन तीसरे और निर्णायक गेम के आखिर में तन्वी की 3 गलतियां उन्हें भारी पड़ गईं। रक्षिता ने इसका फायदा उठाया और तीसरा गेम और मैच अपने नाम कर लिया। हालांकि कृष्ण प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्ण मूर्ति रॉय की भारतीय पुरुष डबल्स जोड़ी मलेशिया के मान वेई चोंग और सो वोई यिक से 7-21, 8-21 से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गई। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
0: आज का मुकाबला श्रोताओं काफी दिलचस्प रहा। तन्वी शर्मा पर सबकी निगाहें थी, लेकिन आज रक्षिता से हारकर वो टूर्नामेंट से बाहर हो गई। हाल ही में उन्होंने ताइपे ओपन का खिताब भी अपने नाम किया था, तो ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि इस प्रतियोगिता में भी उनका बेहतरीन प्रदर्शन रहेगा, लेकिन रक्षिता ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई। और अगर हम रक्षिता की बात करें तो 2024 में स्लोवानिया ओपन BWF इंटरनेशनल खिताब उन्होंने अपने नाम किया है, और वियतनाम इंटरनेशनल चैलेंजेस में भी उनका प्रदर्शन काफ़ी बेहतरीन रहा है। और अगर उनकी प्रतिद्वंदी की बात की जाए जो कि अश्मिता चालिहा है, जिन्होंने 2018 में टाटा ओपन इंडिया इंटरनेशनल चैलेंजर्स में महिला सिंगल्स का खिताब जीता था। इसके अलावा दुबई इंटरनेशनल चैलेंजर्स में भी महिला सिंगल्स में उन्होंने जीत दर्ज की, और 2019 के दक्षिण एशियाई खेल में सिंगल्स और टीम स्पर्धा दोनों में स्वर्ण पदक उन्होंने जीता। मालदीव इंटरनेशनल चैलेंजर जो कि 2023 में हुआ था, उसमें भी महिला सिंगल्स का खिताब उन्होंने अपने नाम किया। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा खिलाड़ी जीत दर्ज करता है और फाइनल में अपनी जगह बनाता है। और अब बात करते हैं शह और मात का खेल शतरंज पर। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन ने ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्ज का खिताब अपने नाम किया। फाइनल में प्रज्ञानंदन ने एक राउंड बाकी रहते ही जावोखीर सिंदारोव को हराया। आइए सुनते हैं खिताबी मुकाबले पर ये रिपोर्ट।
2: प्रज्ञानंदन और उज्बेकिस्तान की जावोखीर सिंदारोव

0: बीच आखिरी मुकाबले का अंत ड्रॉ पर होने के साथ ही भारतीय ग्रैंड मास्टर का खिताब पक्का हो गया। 20 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी ने कुल 35 में से 23 अंक हासिल कर चैंपियनशिप अपने नाम की। सिंधारोव ने 22 पॉइंट के साथ दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि वेस्ली सो 20.5 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहे। लेवन एरोनियन चौथे स्थान पर रहे और फेबियानो करुआना, लीनियर डोमिंगवेज और जॉर्डन वैन फॉरेस्ट 17 पॉइंट के साथ संयुक्त रूप से 5वें स्थान पर रहे। इस जीत से प्रज्ञान आनंद सिंह फील्ड कप के पहले ग्रैंड चेस टूर स्टैंडिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। हालांकि फेबियानो अभी भी ओवरऑल ग्रैंड चेस टूर स्टैंडिंग में सबसे आगे हैं। प्रज्ञान आनंद ने 5 दिन के इस इवेंट में शुरू से आखिर तक बढ़त बनाए रखी। सिंधारोव ने आखिरी दौर में कड़ी चुनौती पेश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए और 1.5 पॉइंट के अंतर से उपविजेता रहे। मैच के बाद प्रज्ञान आनंद ने कहा कि इस प्रतियोगिता से मेरे गेम में सुधार हुआ है।
1: Feels great. And when you see the score, it's like 1.5 round to spare. Everything looks smooth, but wasn't the case. It was crazy. I mean, kudos to Javakiri. Kept the fight till the end. Yeah, he was also fighting really well. So, I mean, just basically what I said yesterday, not to do anything stupid myself. But then I managed to do it against Avander in the second game, where I was just, I had so much control and I was just winning. But then I managed to basically not take the draw, and then I lost the game, which is exactly what I wanted to avoid. I mean, even though I lost that game, I felt my game quality. Okay. Yeah, I was just trying to calm myself, and I also wanted to like win it separately. I wanted to win the rapid and split separately, which I think I managed. So that's also good.
0: टूर्नामेंट में 10 बेहतरीन ग्रैंड मास्टर शामिल हुए थे। 5 दिन के खेल में खिलाड़ियों ने 9 रैपिड राउंड और 18 ब्लिट्ज राउंड खेले। इस दौरान कुल मिलाकर 135 गेम हुए, जिनमें सिंगफील्ड कप और GCT ग्रैंड फाइनल से पहले महत्वपूर्ण टूर प्वाइंट दांव पर थे। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
2: और श्रोताओं, आपको बता दें कि ये साल प्रज्ञानानंद के लिए बेहतरीन रहा है। इस वर्ष ही जून में उन्होंने नॉर्वे चेस खिताब जीतकर पहले भारतीय बने थे जिन्होंने ये खिताब अपने नाम किया था और ऐतिहासिक प्रदर्शन किया था। और अब चलते हैं एथलेटिक्स की ओर। अमेरिका के यूजीन में आयोजित एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में मोहम्मद अशफाक ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने पुरुषों की 400 मीटर दौड़ में अंडर 20 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर चैंपियनशिप के अगले दौर में क्वालिफाई किया। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
3: 19 वर्षीय अशफाक पहले दौर की हीट 5 वर्ग में 45.81 सेकंड के साथ दूसरे स्थान पर रहे। अमेरिका के जेडन डी लियोन 45.63 सेकंड के साथ शीर्ष स्थान पर रहे। अशफाक ने चौथे स्थान पर रहते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई। इस दौरान अशफाक ने इस वर्ष अप्रैल में बनाए गए अपने ही पिछले राष्ट्रीय रिकॉर्ड 46.05 सेकंड को भी बेहतर किया। महिलाओं की चक्का फेंक के फाइनल में 18 वर्षीय कम्बोज 53.24 मीटर के थ्रो के साथ छठे स्थान पर रही। चीन की सू यिक्सन पहले और अमेरिका की जैसलीन मैसी दूसरे स्थान पर रही। पुरुषों की ऊंची कूद में बसंत ने क्वालिफाइंग राउंड में 2.14 मीटर की कूद लगाकर 5वां और कुल मिलाकर 11वां स्थान हासिल करके फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। शशांक कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
2: अश्रोता, आपको बता दें कि तनु चौधरी अपने हीट में 5वें और कुल मिलाकर 33वें स्थान पर रहने के बाद महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ के सेमीफाइनल में जगह बनाने में असफल रहीं। वहीं अमित कुमार ने पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ में 8वां और अंतिम स्थान हासिल किया। पी रोशन और धनुष राज दोनों ही पुरुषों की ट्रिपल जंप के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में असफल रहे। और अब बात हॉकी की कर लेते हैं। हॉकी इंडिया ने AHF जूनियर एशिया कप के लिए आज भारतीय पुरुष टीम का ऐलान कर दिया है। टीम की कमान अनमोल एक्का के हाथों में सौंपी गई है। यह प्रतियोगिता चीन के मोकी में 30 अगस्त से 13 सितंबर तक खेली जाएगी। टूर्नामेंट के लिए 18 खिलाड़ियों का चुनाव किया गया है, जबकि 2 वैकल्पिक प्लेयर्स को भी टीम में रखा गया है। सुनते हैं किन खिलाड़ियों को टीम में जगह मिली है।
4: डिफेंडर अनमोल एक्का की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने हाल ही में बेल्जियम का एक शानदार एक्सपोजर दौरा पूरा किया, जहां टीम की भिड़त मजबूत इंटरनेशनल टीमों से हुई थी। इस दौरे से खिलाड़ियों को मैच का अनुभव और अहम सीख मिली, जिससे टीम अपनी प्रगति का आकलन कर सकी, अपने कॉम्बिनेशन को बेहतर बना सकी और AHF जूनियर एशिया कप से पहले अपनी तैयारियों को और मजबूत कर सकी। टीम बेंगलुरु में साई सेंटर पर मलेशियाई अंडर 21 टीम के साथ फ्रेंडली मैच खेलकर और भी ज्यादा प्रतिस्पर्धी अनुभव हासिल कर रही है। टीम के चयन पर बात करते हुए कोच सोयस ने कहा कि ये टूर्नामेंट एशिया की प्रमुख जूनियर हॉकी प्रतियोगिताओं में से एक है जो महाद्वीप की शीर्ष उभरती टीमों को एक बेहद प्रतिस्पर्धी माहौल में एक

0: साथ लाती है। ये प्रतियोगिता भारत की युवा टीम को एशिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों के खिलाफ खुद को परखने और अपनी मजबूत छाप छोड़ने का मौका देगा।
1: खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने खिलाड़ियों के चयन में अधिक पारदर्शिता, खिलाड़ी केंद्रित शासन और देश के खेल तंत्र में संस्थागत सुधारों का आह्वान किया। आज नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय खेल महासंघ सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा कि सभी हितधारकों के लिए खिलाड़ियों के हित और कल्याण सर्वोपरि होना चाहिए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि किसी भी खिलाड़ी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। डोपिंग के मुद्दे पर डॉक्टर मांडविया ने भारतीय खेलों से इस खतरे को खत्म करने के लिए एक व्यापक रणनीति का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कार्रवाई केवल खिलाड़ियों तक सीमित नहीं होनी चाहिए और निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, सुविधादाताओं और उपयोगकर्ताओं सहित पूरी श्रृंखला से एक पारदर्शी और मजबूत तंत्र के माध्यम से निपटा जाना चाहिए। खेल मंत्री ने भारत के स्वदेशी कोचिंग तंत्र को मजबूत करने और विदेशी प्रशिक्षकों पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के अनुपालन, सुशासन प्रथाओं और एशियाई खेल 2026, लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 और राष्ट्रमंडल खेल 2030 के लिए भारत की तैयारियों की समीक्षा की गई। और अब बात गोल्फ पर। स्नेहा सिंह ने तमिलनाडु के होसुर में हीरो महिला प्रो गोल्फ टूर के 11वें चरण का खिताब अपने नाम किया। स्नेहा ने 6 शॉट की बढ़त गंवाने के बाद प्लेऑफ में वापसी करते हुए वाणी कपूर को हराया। स्नेहा ने दूसरे दिन 10 अंडर का कार्ड खेला और अंतिम दिन 5 ओवर 76 का कार्ड खेला। अब कार्यक्रम में बात उस खिलाड़ी की जिसने अपने स्विंग गेंदबाजी से विश्व के कई बल्लेबाजों को छकाया है। धारदार गेंदबाज और भारत के लिए हैट्रिक लेने वाले दीपक चहर का आज जन्मदिन है। 2018 में भारतीय टीम के लिए डेब्यू करने वाले चहर ने 13 एक दिवसीय में 16 विकेट लिए हैं और 2 अर्धशतक लगाते हुए 203 रन बनाए हैं। वहीं 25 टी20 में उन्होंने 31 विकेट झटके हैं। चहर ने 2016 से अब तक IPL में 96 विकेट अपने नाम किए। दीपक ने पुरुष टी20 क्रिकेट का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए नवंबर 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ नागपुर में मात्र 7 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए थे।
2: So much riding on this ball. It's a hat-trick ball. He gets a wicket with the best figures ever in T20 cricket. And he does! It's a hat-trick. It's the best figures ever in T20 internationals. For Deepak Chahar, he's finished 6-7. The first Indian to take a hat-trick, he set all kinds of landmarks. Well done, Deepak Chahar.
1: और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्सकैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पारित। इसका उद्देश्य त्वरित भुगतान और विवादों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान के साथ संबंध केवल आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन की मांग फिर दोहराई। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पर पिछले 10 वर्ष में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, केरलम और उड़ीसा में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और उज्बेकिस्तान में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की तितली मांझी ने रजत पदक जीता। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम

0: उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने आज इस विधेयक को पारित किया। एक रिपोर्ट।
1: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने सदन को संचालित करने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों में एक बार फिर कामकाज में बाधा आई। विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही भोजनावकाश से पहले ही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के हंगामे के चलते दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं हो सका। इससे पहले भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर दोनों सदनों स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। दोनों सदनों की कार्यवाही जल्दी ही स्थगित हो जाने के कारण गैर सरकारी सदस्यों के विधायी कार्य भी नहीं लिए जा सके। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने राज्यों के मुख्य सचिवों और आपदा प्रबंधन विभागों से आपदा प्रभावित और संवेदनशील क्षेत्रों में नए सामुदायिक रेडियो केंद्रों को बढ़ावा देने को कहा है। लोकसभा में आज सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपात स्थितियों के दौरान स्थानीय भाषाओं में समय पर और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने में सामुदायिक रेडियो केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के संबंध आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। लोकसभा में आज डॉ. जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान अब भी सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की नीति पर कायम है। विदेश मंत्री ने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने कई राजनयिक कदम भी उठाए, इनमें सिंधु जल संधि को स्थगित रखना, अटारी सीमा चौकी को बंद करना, वीजा संबंधी प्रतिबंध लगाना तथा दोनों देशों के उच्चायोगों में राजनयिक और आधिकारिक कर्मचारियों की संख्या कम करना शामिल है। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीकी सांसदों की आपत्तियां खारिज कर दी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है।
3: जहाँ तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उस पे निर्णय लेती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं।
0: श्री जायसवाल ने भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन तथा निर्बाध व्यापार का लगातार समर्थन करता है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाता सम्मेलन पर कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी।
3: भारत सरकार का इस प्रेस वार्ता में कोई भूमिका नहीं थी। यह प्रेस वार्ता एक निजी मीडिया संस्था द्वारा आयोजित किया गया था। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि सरकार उस मंच से कहे गए जो भी शब्द थे उसका समर्थन नहीं करती है, खासकर वो शब्द जो वहाँ के सरकार के बारे में कही गई।
0: प्रवक्ता ने पाकिस्तान और सोमालिया के बीच हुए हाल ही में रक्षा समझौते पर कहा कि भारत इन घटनाक्रमों पर लगातार नजर रखे हुए है। उन्होंने बताया कि भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन आयोजित करने का भारत इच्छुक है। श्री जायसवाल ने पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते पर कहा कि भारत इस घटनाक्रम पर करीबी नजर रखे हुए है। पाकिस्तान और सोमालिया के बीच हाल में हुए रक्षा समझौते पर उन्होंने कहा कि भारत इन घटनाक्रमों पर लगातार नजर बनाए हुए है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पर पिछले 10 वर्ष में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का सकल व्यापार किया गया है। सार्वजनिक खरीद में प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता, दक्षता और सुशासन के माध्यम से बदलाव लाने के लिए 9 अगस्त 2016 को जेम शुरू किया गया था। जेम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने नई दिल्ली में बताया कि जेम प्लेटफॉर्म पर कारोबार 2016-17 में 422 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है।
4: 422 करोड़ की शुरुआत थी हमारी 16-17 में और आज हम 20 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार पोर्टल के थ्रू करा पाए हैं। तो और इसमें 25 लाख सेलर्स हमारे साथ जुड़े हैं। किसी भी समय में करीब 4 लाख सेलर हमारे साथ व्यापार करते रहते हैं। हर दिन करीब 1000 करोड़ से ऊपर का व्यापार होता है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 PhD शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। भोपाल में 5 अगस्त से जारी ब्रिक्स कल्चर ट्रैक 2026 के कार्यक्रमों के क्रम में आज 2 दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव का समापन हो रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: भोपाल में 5 अगस्त से जारी ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक 2026 के कार्यक्रमों के क्रम में आज 2 दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव का समापन हो रहा है। समापन समारोह में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि संस्कृति विभिन्न देशों और समाजों को जोड़ने का सबसे सशक्त माध्यम है। उन्होंने साझा संस्कृति, विरासत, आपसी विश्वास और सहयोग की भावना को आगे बढ़ाने में ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। कार्यक्रम में संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल सहित ब्रिक्स सदस्य के मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के सदस्य शामिल थे। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से मैं विपिन मिश्रा।
0: उड़ीसा के भुवनेश्वर में आज 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। बैठक में सर्वसम्मति से भुवनेश्वर घोषणा पत्र अपनाया गया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि घोषणा पत्र समावेशी, मजबूत और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था विकसित करने के लिए ब्रिक्स देशों की प्रतिबद्धता दोहराता है। भारत और श्रीलंका ने विद्युत क्षेत्र में सहयोग पर आज नई दिल्ली में समीक्षा बैठक की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने किया। श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ऊर्जा मंत्री अनुर करुण थिलाके ने किया। 2 दिवसीय ब्रिक्स वेब्स बाजार 2026 का मुंबई में आज समापन हो गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में ब्रिक्स के 20 सदस्य और भागीदारी देशों के 900 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया और 275 से अधिक व्यावसायिक बैठकें की गईं। एक रिपोर्ट।
6: मुंबई में आज ब्रिक्स वेव्स बाजार 2026 का समापन कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग घोषणाओं के साथ हुआ। NFDC के प्रबंध निदेशक प्रकाश मकदूम ने कहा कि इस आयोजन ने ब्रिक्स देशों के बीच रचनात्मक सहयोग की अपार संभावनाओं को प्रदर्शित किया। इस दौरान NFDC ने ब्राजील की रियो फिल्मे के साथ ऑडियो विजुअल सहयोग बढ़ाने के लिए आशय पत्र का आदान प्रदान किया, जबकि NFDC और राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय ने रूस के गॉस फिल्मो फंड के साथ सहयोग जारी रखने की घोषणा की। दक्षिण अफ्रीका, रूस, थाईलैंड और कजाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने ग्लोबल साउथ फिल्म फेस्टिवल 2027 की भी घोषणा की। स्वीटी जैन, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: झारखंड में JPSC और JSSC सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। एक रिपोर्ट।
7: छात्रों का आंदोलन आज भी जारी रहा। विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्ष ने भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी का मुद्दा उठाते हुए सरकार से परीक्षाएं रद्द करने और पूरे मामले की अदालत की निगरानी में CBI जांच कराने की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि इस विषय पर सरकार सदन में सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। इस बीच रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलनरत छात्रों से मिलने आज शाम प्रशासनिक अधिकारियों की टीम पहुंची। प्रशासन ने बताया कि टीम ने धरना स्थल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उधर सरकार के साथ प्रस्तावित वार्ता के लिए छात्रों ने 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल की अंतिम सूची भी जारी कर दी है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल उड़ीसा, राजस्थान और चंडीगढ़ में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, केरलम, माहे और कर्नाटक सहित पूर्वोत्तर भारत में भी भारी वर्षा, गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की है। उड़ीसा में बाढ़ प्रभावित लोग बाढ़ से हुए नुकसान से उबरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मौसम विभाग ने मयूरभंज

0: के लिए रेड अलर्ट और कई अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा में एक बार फिर भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने राज्य के लिए रेड वार्निंग जारी की है। विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटे में भारी बारिश होगी और ये सिलसिला 3 दिनों तक जारी रह सकती है। सालंदी और जालका नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक और केंदुझर जिलों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। इस बीच बाढ़ से प्रभावित कई परिवार अभी भी राहत सामग्री और मवेशियों के चारे के लिए जूझ रहे हैं, जबकि फसलों को हुए भारी नुकसान ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि केरलम के 4 जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है।
2: केरल के उत्तरी जिलों कासरगोड, कन्नूर, वायनाड और कोझिकोड के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के 4 अन्य जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट है। कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की आशंका है, जबकि शेष 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी है। राज्य के सभी जिलों में पिछले 1 सप्ताह से तेज बारिश हो रही है। शनिवार के लिए 10 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। हालांकि रविवार से राज्य में वर्षा में कमी आने का अनुमान है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: राजधानी दिल्ली में आज सवेरे से कुछ जगहों पर हल्की और कुछ जगहों पर तेज बारिश हो रही है।
3: राष्ट्रीय राजधानी में दिन के समय कई हिस्सों में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हुई। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में न्यूनतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा। तेज बारिश के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ और कई इलाकों में लोगों को यातायात जाम का सामना करना पड़ा। इसके अलावा मौसम विभाग ने दिल्ली में कल भी हल्की से मध्यम बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। भानु के साथ ईशानी यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज तितली मांझी ने महिलाओं के 45 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया। तितली ने स्नैच में 65 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 80 किलोग्राम भार उठाकर कुल 145 किलोग्राम वजन उठाया और ये पदक जीता। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पारित। इसका उद्देश्य त्वरित भुगतान और विवादों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान के साथ संबंध केवल आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन की मांग फिर दोहराई। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पर पिछले 10 वर्ष में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, केरलम और उड़ीसा में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और उज्बेकिस्तान में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की तितली मांझी ने रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. Parliament clears MSME Development Amendment Bill to ensure faster payments and quicker dispute resolution. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar says relations with Pakistan can only move ahead in an environment free of terror, hostility and violence. New Delhi reiterates its call for safe and unhindered navigation in international waters. Government e-marketplace completes 10 years with cumulative procurement crossing 20 lakh crore rupee mark. Alert issued for very heavy rain in Haryana, Chandigarh, Delhi, Kerala and Odisha. And in Asian Youth and Junior Weightlifting Championships, Titli Maji clinches silver medal in women's 45 kg category. And now the news in detail. The Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026 has been passed by the Parliament, with the Lok Sabha approving it today. The Rajya Sabha had passed the bill on Monday. The bill aims to address payment delays and simplify dispute resolution. The legislation provides that every central public sector enterprise must settle all invoices for procurement of goods or services from MSMEs on the Trade Receivables Discounting System. As per the bill, if mediation fails in case of dispute, then the reference for arbitration must be made within 30 days from the date of termination of mediation. Both Houses of Parliament today witnessed opposition's uproar over several issues, including the alleged police action during students' protest

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। पार्लियामेंट ने एमएसएमई तरक्याती बिल को मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद तेज तर अदायगी और तनाजात के जल्द इजाले को यकीनी बनाना है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में दहशतगर्दी, मुकासमत और तशद्दुद से पाक माहौल में ही पेशरफ्त हो सकती है। भारत ने बैनुल अक्वामी समंदर में महफूज और बिला रोक टोक जहाजरानी के अपने अज़्म को दोहराया है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं, जिसके दौरान मजमूई खरीदारी 20 लाख करोड़ रुपए मालियत से तजावुज कर गई है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, केरलम और ओडिशा में बहुत शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और एशियाई यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप्स में भारत की तितली माझी ने उज्बेकिस्तान में खवातीन के 45 किलोग्राम के जुमरे में चांदी का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। इंतहाई छोटी छोटी और दरमियानी दर्जे की सनअतों की फरोग के तरमीमी बिल 2026 को आज लोकसभा में मंजूरी के साथ पार्लियामेंट ने मंजूर कर लिया। इस बिल को राज्यसभा में पीर के रोज मंजूर कर लिया गया था। इस बारे में पेश है एक रिपोर्ट।
1: पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई में नीट मामले पर तालिबान

0: अलर्ट जारी किया गया है। ये अजला आज दोपहर तक ऑरेंज अलर्ट के तहत थे। दीगर चार अजला में भी शदीद बारिश के सबब ऑरेंज अलर्ट जारी है। केरलम के बकिया छह अजला में येलो अलर्ट नाफिज है। रियासत के तमाम अजला में गुज़िश्ता एक हफ्ते से बारिश के सबब अलर्ट जारी किए जा चुके हैं। सनीचर के रोज के लिए 10 अजला में येलो अलर्ट जारी किए गए हैं। बारिश की शिद्दत में इतवार से कमी आने का इम्कान है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पल्लारूथी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
1: उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में नौजवानों और जूनियर एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने शानदार शुरुआत की है। भारत की वेटलिफ्टर तितली माझी ने 45 किलोग्राम जुमरे में चांदी का तमगा जीता है। उन्होंने स्नैच में 65 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 80 किलोग्राम वजन उठाया। इस तरह उन्होंने कुल 145 किलोग्राम वजन उठाकर तमगा अपने नाम किया। इसी मुकाबले में भारत की परिश्मिता गोगोई ने चौथा मुकाम हासिल किया है। ये चैंपियनशिप 14 अगस्त तक जारी रहेगी। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट ने एमएसएमई तरक्याती तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद तेज तर अदायगी और तनाज़ात के जल्द इजाले को यकीनी बनाना है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में पेशरफ्त, दहशतगर्दी, मुखासमत और तशद्दुद से पाक माहौल में ही हो सकती है। भारत ने बैनुल अक्वामी समंदर में महफूज और बिला रुकावट जहाज रानी के अपने अज़्म को दोहराया है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं, जिसके दौरान मजमूई खरीदारी 20 लाख करोड़ रुपए मालियत से तजावुज़ कर गई है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, केरलम और ओडिशा में बहुत शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और एशियाई यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत की तितली माझी ने उज़्बेकिस्तान में खवातीन के 45 किलोग्राम के जुमरे में चांदी का तमगा जीता है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.5 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर।

0: सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहां और भी हैं। सामईन खैर मकदम, इस्तकबाल इस खूबसूरत शेर के साथ आप सभी का इस खूबसूरत बज़्म में, जिसका नाम है गुलिस्तां। मैं हूं आपके साथ रहमान शेख। आपने ट्यून किया है 101.2 FM। सामईन, कई इम्तिहां आते हैं ज़िंदगी में, लेकिन उनसे मोहब्बत किस तरह से की जाए, उन इम्तिहानों को मोहब्बत में कैसे बदला जाए, ये हमें तहजीब और तमीज़ से मिलता है। आपने ट्यून किया है 101.2 FM, उर्दू की बज़्म है गुलिस्तां। मैं हूँ आपके साथ रहमान शेख। यूँ तो हम उर्दू की इस बज़्म में आपके लिए लेकर आते हैं उर्दू से मुतालिक कई खूबसूरत खूबसूरत बातें, तो आज की जो हमारी खूबसूरत बातें हैं, जो हमारे सेगमेंट हैं, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। आज का हमारा पहला सेगमेंट है सामईन, बातें उर्दू अदब की। उसमें हम बातें करेंगे बातें उर्दू अदब की, कि किस तरह से उर्दू हमें अदब की चीज़ें सिखाती है, सखावत की चीज़ें सिखाती है, और हमारी जो ज़बान है उसको खूबसूरत बनाती है। और उसके अलावा हमारा जो दूसरा सेगमेंट है उसमें हम सुनेंगे कलाम शायर। कलाम शायर में हमारे साथ होंगे हमारे शहर जयपुर के नौजवान शायर जनाब मुईन शेख। तो मुईन की शायरी हम सुनेंगे, साथ ही साथ आपके लिए मौसिकी का नजराना भी पेश किया जाएगा सामईन। तो आइए शुरुआत करते हैं इस बज़्म की, और सबसे पहले आप सभी की नज़र किए देते हैं जनाब मुईन शेख का कलाम शायर में ये खूबसूरत कलाम। लुत्फ उठाइए मुईन शेख के इस कलाम का।
1: आदाब सामईन, मैं मुईन शेख आप सबके बीच अपने चंद अशार और कुछ गज़लों को लेकर आपके बीच हाजिर हुआ हूँ। गज़ल का मतला है, अपने सफ़र का आगाज़ इस शेर के साथ करता हूँ। गज़ल का मतला है, थके ज़रूर हैं पर हारे नहीं हैं, थके ज़रूर हैं पर हारे नहीं हैं, कश्ती से दूर अब किनारे नहीं हैं, थके ज़रूर हैं पर हारे नहीं हैं, कश्ती से दूर अब किनारे नहीं हैं। और शेर देखें कि कमज़ोर बनाते हैं आदमी को और भी, कमज़ोर बनाते हैं आदमी को और भी, अच्छा है हमारे साथ सहारे नहीं हैं, कमज़ोर बनाते हैं आदमी को और भी, अच्छा है हमारे साथ सहारे नहीं हैं। और शेर देखें कि हमने गुजारे हैं सो हम जानते हैं, हमने गुजारे हैं सो हम जानते हैं, तुमने वो दिन अभी गुजारे नहीं हैं, हमने गुजारे हैं सो हम जानते हैं, तुमने वो दिन अभी गुजारे नहीं हैं। और एक ताज़ा गज़ल, उसका मतला है, अदब व एहतराम ख़त्म हो गया, अदब व एहतराम ख़त्म हो गया, बड़े बुज़ुर्गों का काम ख़त्म हो गया, अदब व एहतराम ख़त्म हो गया, बड़े बुज़ुर्गों का काम ख़त्म हो गया, लहजों में इतनी तलखियां हैं कि अब, लहजों में इतनी तलखियां हैं कि अब, गुफ्तगू होती है कलाम ख़त्म हो गया, लहजों में इतनी तलखियां हैं कि अब, गुफ्तगू होती है कलाम ख़त्म हो गया। और ये शेर बतौर ख़ास, ये जो मैं है ना इसके चलते, ये जो मैं है ना इसके चलते, सलाह मशवरे का काम ख़त्म हो गया, ये जो मैं है ना इसके चलते, सलाह मशवरे का काम ख़त्म हो गया। और शेर देखें कि शुमार था कभी जो आला दर्जे पर, शुमार था कभी जो आला दर्जे पर फहरिस्त में से वो नाम ख़त्म हो गया, शुमार था कभी जो आला दर्जे पर फहरिस्त में से वो नाम ख़त्म हो गया। ग़ज़ल का मक़ता है कि शायद मरकर ही अब मैसर हो मोइन, शायद मरकर ही अब मैसर हो मोइन, दुनिया से जो आराम ख़त्म हो गया, शायद मरकर ही अब मैसर हो मोइन, दुनिया से जो आराम ख़त्म हो गया। और ये ग़ज़ल बतौर ख़ास ग़ज़ल का मक़ता है, बुज़ुर्गों की दुआएं और नसीहत मिल गई है, बुज़ुर्गों की दुआएं और नसीहत मिल गई है, मेरी ग़ज़ल को नई सूरत मिल गई है, बुज़ुर्गों की दुआएं और नसीहत मिल गई है, मेरी ग़ज़ल को नई सूरत मिल गई है। और ये शेर बतौर ख़ास, काबिल नहीं थे जो किसी भी ओहदे के, काबिल

0: नहीं थे जो किसी भी ओहदे के, अफसोस उन जैसों को हुकूमत मिल गई है। काबिल नहीं थे जो किसी भी ओहदे के, अफसोस उन जैसों को हुकूमत मिल गई है, अफसोस उन जैसों को हुकूमत मिल गई है। शेर देखें कि उसकी खामोशी इस बात का सबूत है, उसकी खामोशी इस बात का सबूत है, उसे उसके लफ्ज़ों की कीमत मिल गई है। उसकी खामोशी इस बात का सबूत है, उसे उसके लफ्ज़ों की कीमत मिल गई है। और शेर देखें कि दो मतलबी साथ हैं एक ही मतलब से, दो मतलबी साथ हैं एक ही मतलब से, शायद दोनों की कोई ज़रूरत मिल गई है। दो मतलबी साथ हैं एक ही मतलब से, शायद दोनों की कोई ज़रूरत मिल गई है। और ये गज़ल भी समाप्त करें कि गज़ल का मतला है, मतलब के हैं सब यार सारे, मतलब के हैं सब यार सारे, मैं निभा चुका हूँ किरदार सारे। मतलब के हैं सब यार सारे, मैं निभा चुका हूँ किरदार सारे। और शेर देखें कि जीते जी पूछा नहीं किसी ने, जीते जी पूछा नहीं किसी ने, मर गया तो निकल आए हकदार सारे। जीते जी पूछा नहीं किसी ने, मर गया तो निकल आए हकदार सारे। और शेर है, मेरे बस में कुछ नहीं था, मेरे बस में कुछ नहीं था, तेरे पास थे इख्तियार सारे। मेरे बस में कुछ नहीं था, तेरे पास थे इख्तियार सारे। और शेर है कि खूब दोस्ती निभाई मेरे दोस्तों ने, खूब दोस्ती निभाई मेरे दोस्तों ने, मैं इस पार वो उस पार सारे। खूब दोस्ती निभाई मेरे दोस्तों ने, मैं इस पार वो उस पार सारे, सच छुपा लेते हैं ज़माने से, सच छुपा लेते हैं ज़माने से, कितने झूठे हैं ये अखबार सारे। सच छुपा लेते हैं ज़माने से, कितने झूठे हैं ये अखबार सारे। और ये गज़ल भी समाप्त करें कि गज़ल का मतला है, बेवफाओं से वफादारी क्यों करें हम, बेवफाओं से वफादारी क्यों करें हम, एक तेरी ही तरफदारी क्यों करें हम, बेवफाओं से वफादारी क्यों करें हम, एक तेरी ही तरफदारी क्यों करें हम। शेर बतौर ख़ास, जब सारे हक़ हैं मयस्सर उसको, जब सारे हक़ हैं मयस्सर उसको, दिखावे को सरदारी क्यों करें हम, जब सारे हक़ हैं मयस्सर उसको, दिखावे को सरदारी क्यों करें हम, क्या होगा क्या नहीं ये सोचकर, क्या होगा क्या नहीं ये सोचकर, दिल को भारी क्यों करें हम, क्या होगा क्या नहीं ये सोचकर, दिल को भारी क्यों करें हम। कोई बात, शेर देखें कि कोई बात हमारी क्यों करो तुम, कोई बात हमारी क्यों करो तुम, हर बात तुम्हारी क्यों करें हम, कोई बात हमारी क्यों करो तुम, हर बात तुम्हारी क्यों करें हम। नहीं दे रहा दिल इजाज़त जिसकी, नहीं दे रहा दिल इजाज़त जिसकी, भला ऐसी कोई तैयारी क्यों करें हम। नहीं दे रहा दिल इजाज़त जिसकी, भला ऐसी कोई तैयारी क्यों करें हम। और ये कुछ अशआर हैं, दिल की दुनिया पूरी तरह बेजार थी, दिल की दुनिया पूरी तरह बेजार थी, मगर उसके चेहरे पर हंसी बरकरार थी, दिल की दुनिया पूरी तरह बेजार थी, मगर उसके चेहरे पर हंसी बरकरार थी। घोर दिया गला उसने अपनी मुफलिसी के चलते, घोर दिया गला उसने अपनी मुफलिसी के चलते, वरना यूं तो उसकी ख्वाहिशें हजार थी। घोर दिया गला उसने अपनी मुफलिसी के चलते, वरना यूं तो उसकी ख्वाहिशें हजार थीं। और शेर देखें कि वक्त रहते अगर संभल जाते, वक्त रहते अगर संभल जाते, दिन अपने भी कुछ बदल जाते। वक्त रहते अगर संभल जाते, दिन अपने भी कुछ बदल जाते। राह की ठोकरों ने संभलने न दिया, राह की ठोकरों ने संभलने न दिया, वरना कहीं के कहीं निकल जाते। राह की ठोकरों ने संभलने न दिया, वरना कहीं के कहीं निकल जाते। और शेर है कि कुछ नया कहते कुछ नया लिखते, कुछ नया कहते कुछ नया लिखते, तुस्सा होते तो हम तुस्सा लिखते। कुछ नया कहते कुछ नया लिखते, तुस्सा होते तो हम तुस्सा लिखते। जानते थे तेरी मजबूरियों को हम, जानते थे तेरी मजबूरियों को हम, फिर कैसे तुझको बेवफा लिखते। जानते थे तेरी मजबूरियों को हम, फिर कैसे तुझको बेवफा लिखते, फिर कैसे तुझको बेवफा लिखते। और शेर है कि इस गज़ल ताज़ा गज़ल, ये एक बात उस तक पहुँचानी है, ये एक बात उस तक पहुँचानी है, उसके बगैर तो क्या जिंदगानी है। ये एक बात उस तक पहुँचानी है, उसके बगैर तो क्या जिंदगानी है। और शेर देखें कि मैं इस बात को लेकर परेशान हूँ, मैं इस बात को लेकर परेशान हूँ कि मुझे किस बात की परेशानी है। मैं इस बात को लेकर परेशान हूँ कि मुझे किस बात की परेशानी है। और शेर बतौर ख़ास, ये मकाम यूं ही हासिल नहीं हुआ, ये मकाम यूं ही हासिल नहीं हुआ, इसके लिए ज़माने की खाक छानी है। ये मकाम यूं ही हासिल नहीं हुआ, इसके लिए ज़माने की खाक छानी है। और शेर देखें कि मैं इन रास्तों से खूब वाकिफ़ हूँ, मैं इन रास्तों से खूब वाकिफ़ हूँ, ये सड़कें मेरी जानी पहचानी हैं। मैं इन रास्तों से खूब वाकिफ़ हूँ, ये सड़कें मेरी जानी पहचानी है। और शेर का मकता है कि गज़ल का मकता है कि मेरी इस हालत के पीछे मोइन, मेरी इस हालत के पीछे मोइन, अपनों का करम यारों की मेहरबानी है, अपनों का करम यारों की मेहरबानी है। और गज़ल देखें कि अपना भी घर ठिकाना था, अपना भी घर ठिकाना था, ऐसा भी एक ज़माना था। अपना भी घर ठिकाना था, ऐसा भी एक ज़माना था। पहरे तो मुझ पर लगे थे, पहरे तो मुझ पर लगे थे, तेरा तो आना जाना था। पहरे तो मुझ पर लगे थे, तेरा तो आना जाना था। कमी थी तो एक तेरी थी, कमी थी तो एक तेरी थी, मौसम भी अब के सुहाना था। कमी थी तो एक तेरी थी, मौसम भी अब के सुहाना था। मैं घर की बड़ी बेटी थी, मैं घर की बड़ी बेटी थी, हालात ऐसे थे कमी कमाना था। मैं घर की बड़ी बेटी थी, हालात ऐसे थे कमाना था। और शेर है कि सफ़र गर मुकद्दर है तो हम सफ़र भी मिले, सफ़र गर मुकद्दर है तो हम सफ़र भी मिले, मेरे हाथों की लकीरों से मेरा मुकद्दर भी मिले, सफ़र गर मुकद्दर है तो हम सफ़र भी मिले, मेरे हाथों की लकीरों से मेरा मुकद्दर भी मिले। एक तुझ पर आकर रुक गया मैं, एक तुझ पर आकर रुक गया मैं, वरना लोग तो कई तुझसे बेहतर भी मिले। एक तुझ पर आकर रुक गया मैं, वरना लोग तो कई तुझसे बेहतर भी मिले। आदाब सामे।
1: वाह क्या कहने, बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन कलाम मोइन शेख की जबां से भी आप लुत्फ उठा रहे थे शायरी का, अदब का, गज़ल का। उम्मीद है आपको ये शायरी पसंद आई होगी सामाईन। बेहद शुक्रिया जनाब मोइन शेख साहब कि आप ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियो में आए और गुलिस्तां की इस बज़्म को आपने रौनक बख्शी। जी हाँ सामाईन, अब आगे बढ़ते हैं और आपके लिए पेश किए देता हूँ मौसिकी का ये खूबसूरत नजराना।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गुलिस्ता कार्यक्रम, जिसका प्रसारण आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से किया गया। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत में पहला गीत सावन को आने दो फिल्म से, आवाज़ है यशुदास की, बोल लिखे हैं पी पंकज ने और संगीत से सजाया राजकमल ने।

तो पागल है फिल्म से अभी आपने लता मंगेशकर और उदित नारायण के स्वर में ये गीत सुना। आइए अगला गीत आपको हम सुनवाते हैं, बागी फिल्म से। आवाजें हैं अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति की।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में। फिल्म का नाम है अनुरोध। बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, अभी आपने गीत सुना अजनबी फिल्म से। आवाज़ें थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। बोल लिखे आनंद बख्शी ने, संगीत से सजाया आर डी बर्मन ने। और फिल्म संगीत के आखिर में सुनिए किशोर कुमार और आशा भोसले की। फिल्म का नाम नमक हलाल।

0: नमक हलाल फिल्म से अभी आपने गीत सुना, किशोर कुमार और आशा भोसले के स्वर में, बोल अनजान के थे, संगीत था बॉबी लहरी का। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये सफ़र अब यहीं संपन्न होता है, राखी को दीजिए अनुमति। श्रोताओं, हमारा अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से होगा, आप सुनेंगे समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। संसद ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने आज इस विधेयक को पारित किया। एक रिपोर्ट।
2: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने सदन संचालित करने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। लोकसभा में आज डॉ. जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान अब भी सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की नीति पर कायम है। विदेश मंत्री ने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने कई राजनयिक कदम भी उठाए। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीकी सांसदों की आपत्तियां खारिज कर दी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है।
3: जहाँ तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन तथा निर्बाध व्यापार का लगातार समर्थन करता है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाता सम्मेलन पर कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम पर पिछले 10 वर्षों में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का सकल व्यापार किया गया। सार्वजनिक खरीद में प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता, दक्षता और सुशासन के माध्यम से मैं

0: लाभ लाने के लिए 9 अगस्त 2016 को जैम शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 पीएचडी शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री आईआईटी दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। राजस्थान के जयपुर में भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की 16वीं बैठक आज सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की। बैठक में ब्रिक्स देशों के व्यापार मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व व्यापार संगठन के नियमों पर आधारित निष्पक्ष और विकासोन्मुख व्यापार व्यवस्था का समर्थन करता है। उन्होंने विकासशील देशों के खाद्य सुरक्षा हितों की रक्षा पर भी जोर दिया। मौसम विभाग ने कल उड़ीसा, राजस्थान और चंडीगढ़ में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, केरल, माही और कर्नाटक सहित पूर्वोत्तर भारत में भी भारी बारिश, गरज और बिजली कड़कने की आशंका व्यक्त की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.5 मीटर यानी 603 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 101.2 मेगा हर्ट्स तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। श्रोताओं, रात्रि के 11:05 हुए हैं। हमारी प्रसारण सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल प्रातः 5:55 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।